0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने को हैं। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 6:10 और 16 सेकेंड। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता तुलसी के राम, वाचन स्वर और आलेख महेश वर्मा का।
2: तुलसी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वे कालजयी व्यक्तित्व के रूप में अमर हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने समझने वाला बहुत बड़ा वर्ग वो है जो भक्ति रस में आखंड निमग्न होकर उनकी चौपाइयों को हृदय की गहराइयों से आत्मसात करने को तत्पर रहता है। सदियों से रामकथा वाचन की लोकश्रुत शैली द्वारा रामकथा को लोक प्रसिद्धि के नए आयाम प्रदान किए हैं हमारे तुलसीदास जी ने। भक्त कवि तुलसी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, और समस्त जग में सीताराम के दर्शन किए, उन्हीं की लीला का गुणगान किया है। राम कथा को सरल ढंग से कहने की उनकी अनूठी कला ने वाल्मीकि रामायण से भी अधिक ख्याति अर्जित की है। तुलसीदास के रामचरितमानस में राम का चरित्र और उनके आदर्शों का वर्णन विस्तार से किया गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन के हर पहलू में उच्चतम नैतिक मानकों का पालन किया है। तो आइए राम के आदर्श और उनके चरित्र को रामचरितमानस के कुछ उद्धरणों से समझते हैं। पहला है त्याग और बलिदान। राम का वनवास उनके त्याग और बलिदान की मिसाल है। पिता के वचन का पालन करने के लिए उन्होंने राज्य और सुख सुविधाओं का त्याग कर वनवास स्वीकार किया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहों पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की ये प्रथा सदा से चली आई है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टूटना चाहिए। दूसरा, करुणा और दया। राम का चरित्र करुणा और दया से परिपूर्ण है। उन्होंने हमेशा अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा और दया का व्यवहार किया है। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अर्थात राम का चित्त कोमल है और वो अत्यंत दीनों पर दया करने वाले हैं, वो बिना ही कारण कृपालु हैं। तीसरा लक्षण जो राम को मनुष्य के सर्वोच्च लक्षणों में ले जाता है वो है मित्रता और स्नेह। राम का स्नेह और मित्रता के प्रति आदर भी उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। उन्होंने सुग्रीव, विभीषण और हनुमान के प्रति जो स्नेह और मित्रता दिखाई वो अद्वितीय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। अर्थात राम को केवल प्रेम ही प्यारा है और हर कोई जान ले जो जानने का इच्छुक हो। उसके अतिरिक्त राम आदर्श और न्यायप्रिय राजा के रूप में भी थे। राजा राम जिनके राज्य को राम राज्य के रूप में जाना जाता है वो आदर्श शासक के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माना और न्याय और सत्य का पालन करते हुए शासन किया। राम राज्य का वर्णन इस प्रकार है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में ना कोई शारीरिक दैविक या भौतिक कष्ट था, सबो सुख शांति थे। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि राम ने अपने शासन में हर किसी को न्याय प्रदान किया। राम को मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया है। उनका गुणगान पाप का नाशक है। विषम परिस्थितियों में कुंठाओं तनावपूर्ण माहौल में सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, रामचरितमानस इसका प्रेरक उदाहरण है। प्रकृति और जीवन की समरसता को स्थापित करने का आधार है राम। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को विभिन्न पहलुओं को इतने सुंदर और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राम कथा को संपूर्ण समाज के लिए ग्राह्य बनाकर तुलसीदास अमर हो गए और आज 500 वर्ष बाद भी घर घर में रामचरितमानस या राम की कथा कही जाती है। तुलसी के राम और उनके आदर्श हमें नैतिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सत्य, धर्म, करुणा, स्नेह और न्याय जैसे आदर्शों पर चलकर हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जय श्री राम।
0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन जिसका शीर्षक था तुलसी के राम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में श्रोता आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम रामचरितमानस बालकंड भाग 94।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचान कर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

0: दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुश्तबा। Prime Minister Narendra Modi says a strong maritime capability

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत अर्चना आचार्य द्वारा गाए गए भजन। संगत कलाकार में सरोद पर संगत दे रहे थे अकिल अहमद, सितार पर जाकिर धौलपुरी, हारमोनियम पर परदीप्ता महाराणा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आज मैं हूं आपके साथ कार्यक्रम में आपकी दोस्त आरती। दोस्तों कहते हैं कि जिस तरह की सोच होती है ना वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनती है। तो अगर हर सुबह हम एक सकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करें तो मुश्किलें जो हैं वो आसान लगने लगती है। हर दिन आप देखेंगे कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक शिकायतों का तो दूसरा उम्मीदों का। तो जो लोग उम्मीदों का रास्ता चुनते हैं वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला भी रखते हैं। तो आप क्यों ना आज ही से एक अपने आप से वादा करें कि चाहे हालात कैसे भी हों हम मुस्कुराकर उनका सामना करेंगे।

दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। पर देखिए, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कभी आपकी परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है पॉजिटिव सोच का कि अगर परेशानी आती भी है तो हमें उसमें समाधान ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर कोई काम पहली बार में सफल नहीं होता है तो आपको हार नहीं माननी है। आपको बस ये करना है कि जो आपका तरीका है उसको आपको थोड़ा सा बदलना है कि आप किस तरह से उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका मन शांत होता है तभी आप कोई कार्य जो है वो आसानी से कर पाते हैं। तो हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप सकारात्मक होते हैं तभी आप किसी समस्या का हल निकाल पाते हैं।

दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि हम कभी कभार दूसरों की बातों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम खुद पर ही विश्वास करना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक बात आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचूंगा। यकीन मानिए, ये छोटी सी जो आदत है, ये आपके आत्मविश्वास को, जो कहते हैं ना, एक और नई ऊंचाई की ओर पहुंचा देती है।

दोस्तों कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक प्यारी सी मुस्कान, अपनों का साथ और एक कप चाय और मनपसंद गीत भी पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही अगले खूबसूरत से गीत की ओर।

तो दोस्तों अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। सभी को मेरा नमस्कार और आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और एक ज़रूरी बात, हमेशा पॉजिटिव रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं

0: को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था। वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है। और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इन

0: आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
4: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.
3: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
4: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है. यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है. हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है.
3: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
5: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personnel and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the cheetahs project. Officials informed her that India currently has 52 cheetahs, of which 49 are in the Kuno National Park, while 3 have been shifted to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. She was also briefed about the monitoring and tracking system used for the animals. Prime Minister Narendra Modi launched India's ambitious cheetah reintroduction project in 2022 by releasing 8 cheetahs into Kuno National Park on his birthday. Subsequently, more cheetahs were brought from South Africa and Botswana. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
3: India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
6: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
3: The National Testing Agency or NTA will commence the UGC NET June 2026 examination from today. We have a report.
7: The national level eligibility test will be conducted in computer-based test CBT mode until 30th of this month in two shifts each day. The UGC NET is conducted for candidates aspiring to qualify for the Junior Research Fellowship JRF, assistant professor positions and admission to PhD courses. The NTA has advised candidates to download their admit cards and carefully verify

0: भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उनसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वजीर आजम ने ये राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोज शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
1: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अल-अक़वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहाँ चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कूनो में चीता कमान व कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबादकारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जुनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: کانفرنس میں سبھی ارکان آج دنیا کو درپیش سلامتی کے غیر روایتی چیلنجز کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے. ساتھ ہی وہ قومی سلامتی کو درپیش خطرات کی نوعیت پر بات چیت کریں گے اور سلامتی کے ابھرتے ہوئے خطرات میں نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی توجہ مرکوز کریں گے. وفود سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل خطرات اور مصنوعی ذہانت سے پیدا ہونے والے خطرات پر بھی غور و خوض کریں گے. سبھی رکن ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفد کے سربراہان انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال پر سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپس کی حالیہ میٹنگ کے نتائج کا جائزہ بھی لیں گے. بھارت کی صدارت کا مرکزی موضوع لچک پذیری، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کو فروغ دینا ہے، جس کی وزیر اعظم نریندر مودی کے عوام پر مرکوز ویژن کی عکاسی ہوتی ہے، جسے 2025 کی ریو سمٹ میں پیش کیا گیا تھا. چین نے تصدیق کی ہے کہ اس کے وزیر خارجہ وانگ ای اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے آج سے یو جی سی نیٹ 2026 کا امتحان شروع کرائے گی. قومی سطح کی اہلیت کا ٹیسٹ ہر روز دو شفٹس میں اس ماہ کی 30 تاریخ تک کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ میں کرایا جائے گا. یو جی سی نیٹ امتحان ان امیدواروں کے لیے کرایا جائے گا جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ، اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن اور پی ایچ ڈی کورسز کے داخلے کے لیے کوالیفائی کرنے کی خواہش مند ہیں. این ٹی اے نے سبھی امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کریں اور امتحان کی سبھی تفصیلات کے پورے دھیان سے تصدیق کریں. اس نے کہا ہے کہ امیدواروں کو امتحان سے پہلے اپنے امتحان کی تاریخ، شفٹ، وقت اور امتحان کے مرکز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے. مزید یہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا پی ڈبلیو بی ڈی امیدواروں کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقررہ امتحانات کے مراکز کا پہلے سے دورہ کریں تاکہ مقام اور دستیاب سہولیات سے واقفیت حاصل کی جا سکے. امتحان کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کا سوال نامہ افشا ہوا تھا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں این ٹی اے نے کہا ہے کہ نیٹ کا امتحان جامع سیکیورٹی اور نگرانی کے تحت کامیابی کے ساتھ منعقد کرایا گیا. اس نے مزید کہا کہ طلبہ کے لیے اس طرح کی غلط معلومات جان بوجھ کر پھیلانا ایک سنگین جرم ہے. سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت سے متعلق معاملات کے تصدیق نامے اور دوبارہ جانچ کے نتائج جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ان نتائج کا اعلان مرحلے وار کیا جا رہا ہے، جن میں سے 87% سے زیادہ درخواستوں کے نتائج کا اعلان کل کر دیا گیا. بقیہ درخواستوں کے نتائج دیگر مرحلوں میں ظاہر کر دیے جائیں گے اور امید ہے کہ یہ عمل جلد ہی مکمل ہو جائے گا. درخواست کس مرحلے میں ہے اس کی معلومات results.digilocker.gov.in پر کی جا سکتی ہے. سی بی ایس ای نے طلبہ کو یقین دلایا ہے کہ ہر ایک درخواست ایک بڑے شفاف اور قریبی نظر رکھنے والے نظام سے گزاری گئی ہے. طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ افواہوں یا غیر تصدیق شدہ سوشل میڈیا پوسٹ پر دھیان نہ دیں اور وہ صحیح معلومات کے لیے سی بی ایس ای کے سرکاری بیانات پر ہی بھروسہ کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2026 کے پدم انعامات سول ایوارڈز کی کل دوسری تقریب میں عطا کریں گی. اس موقع پر ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کے حصے کے طور پر آپ کے لیے 15 خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں.
4: ہم لکھ کے گیا ایسا کرتے کرتے لیکھک کا ایک درجہ مل گیا.
5: سونا گھاٹی کی پہاڑی، پہاڑی کو دیکھا تو اس پہاڑی پر ایک بھی پیڑ نہیں تھا، ورکش بھین پہاڑی ہو گئی تھی، جھاڑیاں کچھ بچی تھی اور وہاں پر 8000 سے زیادہ ہم نے جل سمرچنائیں بنائی.
6: سماج چیتنا کے لیے ہم سوچا، سماج جاگرن کے لیے، آدمی کے لیے ہم سوچا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے.
7: میرے من مایا کہ ہم ان کو آتم نربھر کرنا ہے تو ان کو ساکشرتا بنانا ہے، ان کو شکشا دینا ہے.
0: آپ اس گفتگو کا آج اور کل 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن آفیشیل یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں. 19واں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول مف 2026 کل شام ایک شاندار تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तला तो नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाती जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमेरिका के नायब सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेरी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामलेगारों से बात करते हुए जेरी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क़यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योमी योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा ज़रूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजन और बामकसद ज़िंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तहानात का आगाज आज से कराएगी। और अमरीकी सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है, वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
8: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं शास्त्र संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर गंगा में अर्चना सिंह का राग तोड़ी।

अभी आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुन रहे थे, जिसमें आपने अर्चना सिंह से सुना राग तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम आर गेस्ट, जिसमें डॉक्टर मुदिता अग्रवाल, डीन स्कूल ऑफ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बता रही हैं योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में। होस्ट हैं नीतीश अरोड़ा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: ਸਨ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ।
1: श्रोताओं, अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेदिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ. जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम। ये कार्यक्रम तो वैसे हम लेकर आते हैं आपके लिए, जहां माइक हमारे हाथ में होता है पर रिमोट आप सभी के हाथों में होता है। जी हाँ, आपके संदेश आपके ईमेल के जरिए हम तक पहुंचते हैं और आपके चुनिंदा जो गीत होते हैं, आपके पसंद के जो नगमे होते हैं, वो हम लेकर आते हैं। तो आइए सुनते हैं ये नगमा आपकी पसंद का और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार। और जिन श्रोताओं ने हमें देर से सुनना शुरू करा है उनको हम बता देते हैं कि हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं इस मेल के माध्यम से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपके ईमेल और संदेशों को शामिल करते हैं, और आपकी पसंद के सदाबहार और मनभावन फिल्म गीत

सुनवाते हैं आपकी भावनाएं, आपकी यादें और आपके प्रिय गीत ही इस कार्यक्रम की पहचान है दोस्तों। तो आइए इस संगीत, फिल्म संगीत के इस प्यारे से सफर में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुछ प्यारे हुए चुने हुए गीत जो आपकी ही पसंद।

खूबसूरती उसे हर दिल के करीब बना देती है। दोस्तों, हर श्रोता की अपनी एक अलग पसंद होती है। किसी को मधुर प्रेम गीत पसंद है तो कोई प्रेरणादायक नगमों का दीवाना होता है। किसी को पुराने सदाबहार गीत सुकून दे जाते हैं तो कोई नए दौर के संगीत में अपनी भावनाएं तलाशता है। और इन्हीं पसंदीदा गीतों को समर्पित है हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के गीत और नगमे। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आता है, पता लगता है कि आपकी पसंद यानी हमारे श्रोताओं की पसंद। मेल के जरिए, संदेशों के जरिए हम सुनवाते हैं आपकी फरमाइश के मनचाहे गीत। तो हमें ढेरों आपके मैसेजेस आ गए हैं, मेल आ गए हैं, और मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी आपसे कि आप एक ही मैसेज भेजेंगे तो आपकी जो फरमाइश है हम तक पहुंच जाती है, आपका नाम शामिल कर देंगे। आप यदि बार बार मेल करते हैं तो बाकी श्रोताओं के नाम शामिल नहीं हो पाते। यहाँ बहुत सारे मेल आ जाते हैं और पढ़ना संभव नहीं होता और सबके साथ न्याय करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि आपके मैसेजेस हमने शामिल नहीं किए। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने बहुत सारे हमें मेल कर दिए, एक के बाद एक इनके करीबन 10 मैसेजेस हमें आ गए हैं। तो देखिए, एक मेल भी भेजेंगे तो आपके मैसेजेस हम ज़रूर शामिल करेंगे। और हमारे ये कार्यक्रम आपके लिए ही है ख़ास तौर पर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि माइक तो हमारे पास है लेकिन रिमोट आपके पास है। आपके पसंदीदा गीत ही, आपकी फरमाइश, आपके नगमे ही हम सुनवाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और ये मैसेज आया है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, पीएस नवाकर और तुषार करागले जी का। और साथ ही हमें मैसेज मिला है घनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और उनका समस्त परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का भी हमें मैसेज मिला है। और साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी ने भी हमें संदेश भेजा है। सुनील पाठक जी भी हमें मेल करा, ये है, उन्होंने मेल करा अनारकली बाजार जगराव से। साथ ही वाइट फील्ड बेंगलुरु से हमें मैसेज आया है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव और संस्कृति पौरुष और समस्त परिवार का। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से उनाप सिंह, भारत सिंह, रविंद्र सिंह, लवली बना और समस्त राजपूताना परिवार का। और साथ ही पूनम गंगरेजा जी का मैसेज हमें मिला है जलालाबाद वेस्ट से। और बुद्धिराज खोरवाल जी, आपका भी मैसेज हमने शामिल कर लिया है, लेकिन आपके भी मैसेज बहुत सारे हमें मेल आए हैं उत्तम नगर दिल्ली से। तो आपसे यही गुजारिश है, तो आप एक ही मेल हमें करें तो आप सभी के मेल हम शामिल कर देंगे। हमारा कार्यक्रम ही आपके लिए है। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और समस्त परिवार का। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। तो लीजिए, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपके हमें ढेरों ईमेल आने शुरू हो गए हैं। ये जो फिल्म संगीत का कार्यक्रम है, ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये हमारी भावनाओं, यादों और जीवन के अनगिनत पलों के साथी भी होते हैं। कभी कोई गीत हमें बचपन की गलियों में ले जाता है, तो कभी किसी अपनों की यादों में को ताज़ा कर देता है। संगीत की यही

श्रोताओं, हमारे आपके पास बहुत सारे हमारे पास आपके बहुत सारे मेल आ चुके हैं, और जैसा कि हमने बताया कि जो हम गीत संगीत लेकर आते हैं वो आपकी पसंद के होते हैं। संगीत की दुनिया में हर गीत की अपनी एक कहानी होती है दोस्तों। कुछ गीत हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, तो कुछ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं, तो कुछ हमारे मन की अनकही भावनाओं को शब्द दे जाते हैं। यही कारण है कि फिल्म गीत पीढ़ियों से श्रोताओं के दिलों में अपनी एक विशेष जगह बनाए हुए हैं, और जब इन गीतों का चयन स्वयं श्रोता यानी आप लोग करते हैं तो कार्यक्रम और भी खास बन जाता है। आपकी पसंद, आपकी भावना, आपके संदेश इस प्रस्तुति को एक अनोखा स्वरूप दे जाते हैं हमें। तो इसीलिए आपकी जो पसंद है हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और हमारे पास ये मैसेज आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़ ऋतु सिंह का, और ये कहते हैं कि नमस्कार, आपकी प्रस्तुति में सदाबहार गीत बज रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ईमेल शामिल करने के लिए। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज आया है मुलामपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन जी का, और उसके अलावा हमें हरजिंदर सिंह भाटिया जी के बहुत सारे मेल्स आ गए हैं, और आपका भी हमने नाम कितनी बार शामिल कर लिया है। तो कृपया करके आप सभी एक ही मेल करें, सभी मेल हमारे तक पहुंचते हैं। ये मैसेज आया है गांव चौधरीवास जिला से राजू अग्रवाल, केशव, विवेक का, और साथ में ही मैसेज है दीपक वर्मा जी का, पूनम वर्मा, ज्योति और समस्त परिवार का, पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अजीत, आयुष और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। मानपुर साबिल जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, अताउर रहमान और हबीबुर रहमान का हमें मैसेज आया है। इसके अलावा उत्तम सिंह जांघेल जी का मैसेज आया, कह रहे हैं कुसुम जी गाने सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया गीत चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा गौरव मदान जी का मैसेज आया है मोती नगर नई दिल्ली से,

जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्टा और रोजी पर्ल डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा का भी हमें मैसेज मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज आया है सेक्टर कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बॉय हिमांश का। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया का भी हमें मैसेज मिला है। और साथ ही ये मैसेज आया है कमल सहानी पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से, संदीप मकर, ज्योति, मन्नत और समस्त परिवार का। तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का एक और प्यारा सा गीत।

बहुत सारे श्रोताओं के, आप सभी के हमें ईमेल मिल रहे हैं और ये मैसेज आया है झारखंड गुमला से एसएम जावेद शगुफ्ता और अंजुम जी का। इसके साथ ये मैसेज आया है, अगला मैसेज है सहारनपुर आशा नारंग सोनाली और सुरेंद्र सुरेश नारंग जी का सहारनपुर से। और ये मैसेज है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ अर्चना ताई हीरामंड शिंदे और प्रणय जी का। कभी रेडियो श्रोता संघ डोडली लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया अजय देव तामूरिया का मैसेज आया है और साथ में राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और समस्त परिवार। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा का हमें मैसेज मिला है और आगे बढ़ते हैं। हमें मैसेज आया श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायब और लड्डू। ये मैसेज हमें आया है मधु किरण जी का, ये पता नहीं लग रहा कि इन्होंने कहाँ से भेजा है। साथ ही श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो का भी हमने मैसेज ले लिया है, ये दोबारा आपने भेजा है तो कृपया करके एक मैसेज एक टाइम पर ही भेजें। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन शहनाज नवेद हसन रसीद सुहेल हसन अनब अब्बासी और यशरफ अब्बासी का हमें मैसेज आया है। साथ ही ये मैसेज हमें मिला है पूनम गंगरेजा जी का और समस्त परिवार का जलालाबाद वेस्ट से। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड का भी हमें मैसेज मिला है और ये मैसेज आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत। ये कह रहे हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह, आपने भी अपनी गीत की फरमाइश की है। साथ ही राजू अग्रवाल केशव चरणदास रेखा आप हमें मैसेज कर रहे हैं गांव चौधरी बस्ती जिला हिसार हरियाणा से। वटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का भी मैसेज हमें मिला है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित जी संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है और आपने भी अपनी पसंद की फरमाइश की है। साथ ही ये मैसेज आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा और लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा पापा जी नाराज चंद मल्होत्रा शिवजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुगू भाविक सिक्का और समस्त परिवार का। तो लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों हमें मैसेज आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्कीन और समस्त परिवार का। साथ ही हमें मैसेज आया जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा और समस्त परिवार का। भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन चंपा देवांगन और समस्त परिवार का। मध्य प्रदेश जिला खरगोन से भी हमें मैसेज मिला है और इसके अलावा हमें मैसेज आया है प्रकाश गोगिया जी का। किशनगंज बिहार से भी हमें मैसेज आया है और डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी सदानंद कुमार गौरव और आरव और अर्पिता का मैसेज हमें मिला है। मधुकिरण जी का भी मैसेज हमें मिला है और एन इट्टू मल्होत्रा खैर बाजार पानीपत से आपका मैसेज हमें मिला है। और साथ ही ये मैसेज आया है सनावत से शेख मूसा अशोक वर्मा राम कुमार बुड़ाना का। इसके अलावा हमें मैसेज मिला है संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम दिशांत कुमार और अर्पिता का। और दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी शन्नो साबरी मुदस्सफिर साबरी और समस्त परिवार का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत और संगीत। और ये मेल आया है हमें बिलाईगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल और समस्त परिवार का। साथ ही हमें मैसेज आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और समस्त परिवार का। बुलंद शहर से, उत्तर प्रदेश, ग्राम दुल्हापुर, जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पलारी से भी हमें मैसेज आया है प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और समस्त परिवार का। रघुनाथपुरा जिला, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। ये मैसेज आया है स्कूल के पीछे चौधरीवाद से दावत राम, कमला देवी, माया देवी, प्रेम प्यारी और गुरु प्यारी का। कह रहे हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। शाहजी नगर देवनूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से भी हमें मैसेज आया है संतोष भाकड़े और समस्त परिवार का। तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये फरमाइश गीत।

आपके बहुत सारे मेल आ रहे हैं, और ये मेल आया है हमें महाराष्ट्र से रुपेश संघाई और समस्त परिवार का। साथ ही हमें मैसेज मिला है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़गे और उनके समस्त परिवार का। इसके अलावा सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, रोहिणी दिल्ली से इन्होंने मैसेज किया है। इसके अलावा हमें ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कोठारी, उमाकांत कोठारी, कमलेश और पुत्र वधु निशा कोठारी और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। उसके अलावा चंपाकली से सतप्रकाश सोनाठी का भी मैसेज आया है। इसके अलावा हमें मैसेज आया है दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा और समस्त परिवार के। इसके अलावा रोहिणी से भी हमें मैसेज आया है एसपी गोयल का। ये मैसेज आया है हमें प्रेम का, इन्होंने भेजा है शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और समस्त परिवार का मेल हमें मिला है। और रोहिणी से विदिता गोयल का भी हमें मैसेज आया है। एमडी मजहर का भी हमें मेल आया है। और आपने फरमाइश की अपने पसंदीदा गीत की जो आप सुन रहे हैं।

दोस्तों आपके ढेरों मेल आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे मेल संदेश हम शामिल कर लें। ये मैसेज आया है किशन वजनान जी का और ये कह रहे हैं कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत पसंद आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया किशन वंजानी, स्वाति और समस्त परिवार का रेलवे आनंद विहार, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से भेज रहे हैं ये मैसेज। इसके अलावा ये मैसेज आया है हमें सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान और समस्त परिवार का। पंकज शर्मा जी का मैसेज आया है, ये कहाँ से भेजा ये नहीं पता चल पाया है, और लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास, मानिकपुर, उज्जवल दास और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा ये मैसेज आया है रेणु गोयल रोहिणी से, और इसके अलावा मैसेज आया आनंद पर्व दिल्ली से लखपत राज वेद प्रकाश सुबेदार अमर सिंह जी का, और ये फरमाइश की है महाराष्ट्र से रूपेश संघई जी ने और सुनना चाहे अपने पसंद का गीत। इसके अलावा महाराष्ट्र यवतमाल विदर्भ से भी हमें मैसेज आया है संतोष जी का, और सत्य प्रकाश गोयल, रेणु गोयल रोहिणी नई दिल्ली से, और आप सभी का हमें मैसेज मिला है और सुन रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के प्यारे प्यारे नगमे और गीत। और ये मैसेज आया है गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार और समस्त परिवार का। साथ ही हमें मैसेज आया कृष्ण वजनानी जी का भी, इसमें हमें शामिल कर लिया आपको। और ये मैसेज आया है पंकज शर्मा जी का, और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें आपने बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों की फरमाइश की है। साथ ही ये मैसेज आया है बिलाईगढ़ से रोशन लाल दिवांगन और समस्त दिवांगन परिवार का। और फारूक अली खान का मैसेज आया है, ये मैसेज कर रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। और साथ ही छत्तीसगढ़ पलारी से भी प्रकाश वर्मा और प्रिंस वर्मा और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। तो लीजिए सुनते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपकी पसंद आपका कार्यक्रम। आपकी पसंद कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। आशा है कि आपकी पसंद के गीतों से सजी ये संगीतमय प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और आपको गुनगुनाने पर मजबूर किया होगा। और हमने कोशिश की है कि आपके सभी नगमों को गीतों को शामिल किया जाए। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो हमें माफ़ कीजिएगा और आपके हर पल को संगीतमय बनाने के लिए हम हाजिर हो जाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम को लेकर। तो इसी के साथ मुझे यानी कुसुम पवार को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: श्रोताओं, अभी सुन रहे थे आपकी पसंद कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the President toured the park's Cheetah Management Area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर लिख लीजिए। हमारा नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
0: इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए ना आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर सहेज कर रखना चाहिए।

हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सके। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।

बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया। और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था। जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था। देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते,
प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे। इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया और देव से कहा कि इसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था। तब उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया। देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

0: हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955।
0: तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आप सुनेंगे अंशु थपलियाल नवानी से राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आपने सुना अंशु थपलियाल नवानी से राग मियां की तोड़ी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की

अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बित्सेक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: और सभी सुनने वालों को और मंजुला तुम्हें भी मेरा यानी रश्मि कुकरेती का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
1: और मंजुला सोचो अगर धरती की सांसों की आवाज होती तो वो कैसी होती? शायद बारिश की बूंदों जैसी।
0: बिल्कुल।
1: और पत्तों की सरसराहट जैसी या फिर पक्षियों की मधुर आवाज जैसी। क्योंकि आज है विश्व रेन फॉरेस्ट डे।
0: अच्छा।
1: और रेन फॉरेस्ट जो है वो न केवल हमें स्वच्छ हवा देते हैं बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं और वनस्पतियों का घर भी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा तुम्हारी हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा रश्मि जी। और अब आज का सवाल आप सबके लिए, अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेज दीजिए जो है fmgoldga@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर अपने घर का एक खूबसूरत सा कोना?
1: बिल्कुल हमें जरूर बताइए। और चलिए हरियाली की ओर और चलिए सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर जिसकी शुरुआत हम करते हैं इस सवाल के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यह कार्यक्रम जिसका नाम है
0: घर आंगन।
1: जी।

0: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी शतरंज। और कहते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, अगर हौसला हो तो कैमरे की एक नजर भी आपको दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा सकती है।
1: और मंजुला, आज बात एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला की हो रही है, और असम की बेटी गीतिका तालुकदार की, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। गीतिका तालुकदार फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट बन गई है। और ये उपलब्धि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश, खासकर पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत गर्व का ये पल है।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, गीतिका इसके पहले भी रूस 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप कवर कर चुकी हैं, और अब 2026 में लगातार तीसरी बार उन्हें फीफा से आधिकारिक मान्यता मिली है। उनकी तस्वीरें सिर्फ मैच नहीं दिखाती, बल्कि खिलाड़ियों की भावनाएं, दर्शकों का जुनून और खेल की आत्मा को कैद करती है। गीतिका ने ओलंपिक, विमेंस, फीफा वर्ल्ड कप और कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को भी अपने कैमरे में उतारा है।
1: और देखिए, जो ये फोटो, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आज भी महिलाओं की संख्या थोड़ी सी कम है, पर जो गीतिका तालुकदार है ना, उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से ये साबित कर दिया है कि सपनों को सच करने के लिए चाहिए सिर्फ जुनून। और हम सलाम करते हैं देश की इस बेटी को, जिसने असम से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी पहचान बनाई है।

0: अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को फिल्म चक दे इंडिया। और रश्मि जी, आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी लेखनी में महिलाओं का बहुत ही सुंदर रोल होता था। सिर्फ कविता और गीतों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने समाज, रिश्तों और सबसे बढ़कर महिलाओं के मन को बहुत ही गहराई से समझा। उनकी कहानियों की महिलाएं शांत जरूर थी, लेकिन कमजोर कभी नहीं। उस दौर में जब महिलाओं की आवाज अक्सर घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई, टैगोर ने अपनी रचनाओं में उन्हें सोचने, सवाल करने और अपनी पहचान बनाने का साहस दिया।
1: जी बिल्कुल सही कहा मंजुला। और अगर आप पढ़ें स्थिर पत्र, जो इसकी नायिका है मृणाल, इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो एक ऐसी महिला है जो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखती है। उसका विद्रोह ऊंची आवाज में नहीं है, बल्कि उसके अपने फैसले में दिखाई देता है। वो समाज से ये भी कहती है कि एक स्त्री सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं है, वो है एक स्वतंत्र व्यक्तित्व।
0: और चोखेर बाली की विनोदनी भी टैगोर की बेहद प्रभावशाली महिला पात्रों में से एक है। उसके भीतर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुद्धिमत्ता है। टैगोर ने उनके माध्यम से उस समाज पर सवाल उठाया जो महिलाओं की भावनाओं के समझने की बजाय उन्हें नियमों में बांध देता था। और घरे बायरे की विमला, उसके बारे में आप बताइए रश्मि जी।
1: हाँ बिल्कुल, वो है प्रेम, कर्तव्य और अपनी पहचान के बीच उलझी संवेदनशील स्त्री। उसके भीतर अपने अस्तित्व को समझने की एक बेचैनी है और यही उसे बेहद मानवीय बना देती है। देखिए, नष्ट नीड की जो चारुलता है उसको कोई भुला सकता है मंजुला? नहीं ना। और घर में सब कुछ होते हुए भी उसका एक अकेलापन है, उसकी अधूरी इच्छाएं हैं और उसके भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है ना, वो सच में दिल को छू जाती है। टैगोर ने ये दिखाया है कि स्त्री का सबसे बड़ा दर्द अक्सर वही होता है ना मंजुला, जिसे कोई भी देख नहीं
0: बहुत
1: पाता।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही। और रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने महिलाओं को देवी बनाकर दूर नहीं रखा, उन्होंने उन्हें इंसान की तरह लिखा, संवेदनशील, मजबूत, सपने देखने वाली और अपनी पहचान खोजने वाली। उनकी लेखनी आज भी हमें एक एहसास कराती है कि महिला को की असली ताकत उसकी आवाज, उसकी सोच और उसके

0: और ये गीत आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म से, और सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। और इस गीत में भी एक प्रश्न था मंजुला, उन्होंने पूछा कि घटा से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है, और तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही सवाल था ना, जरा दोहराओ। तो
1: मैं फिर से आज का सवाल दोहराऊंगी कि सबके लिए अगर आपको 2 दिन की छुट्टी मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें इस मेल आईडी पर भेजें, fmgoldg@gmail.com। वो कौन सी जगह होगी, पहाड़, समंदर, जंगल या फिर आपके घर का एक आरामदायक कोना?
0: हाँ, एक बार फिर ईमेल आईडी बता दूं, fmgoldg@gmail.com, यानी घर आंगन, fmgoldg@gmail.com। जल्दी से भेज डालिए अपने सवाल, अपने जवाब, और हम आपको सुनवाएंगे जल्द ही।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पुल जो सीमेंट, लोहे या पत्थर से नहीं बना है बल्कि पेड़ों की जीवित जड़ों से तैयार किया गया है। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में ये हकीकत है। मेघालय को यूं ही बादलों का घर नहीं कहा गया है दोस्तों, यहाँ प्रकृति और इंसान का रिश्ता सदियों पुराना है। खासकर खासी और जयंतिया पहाड़ियों में ऐसे अद्भुत लिविंग रूट ब्रिजेज मिलते हैं जिन्हें बनाया नहीं जाता बल्कि उगाया जाता है।
0: क्या बात है, इन पुलों को तैयार करने के लिए रबड़ फिग या भारतीय रबड़ के पेड़ की मजबूत जड़ों को वर्षों तक सही दिशा में बढ़ाया जाता है, और बांस और लकड़ी की सहायता से जड़ों को नदी या खाई के ऊपर फैलाया जाता है, जो ये धीरे धीरे जड़ें आपस में गुथ कर इतना मजबूत पुल बन जाती हैं कि दर्जनों लोग एक साथ उस पर चल सकते हैं।
1: और इन पुलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं। जहां पे आम रेगुलर पुलों को लगातार मरम्मत की जरूरत पड़ती है, वहीं ये जीवित पुल प्रकृति के साथ मिलकर खुद को और भी सुदृढ़ बनाते रहते हैं।
0: और जो मेघालय का प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है ना मंजुला, वो जो है नोगरियाट में है और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जो पुल है ये 2 मंजिलों वाला है और प्रकृति और मानवीय धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। और वहीं कई ऐसे पुल भी हैं जो 100 से 200 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जीवन का अहम हिस्सा आज भी है।
1: बिल्कुल, और इन जीवित पुलों को संरक्षित और दुनिया के सामने उसकी महत्ता को पहुंचाने में पर्यावरणविद हेली वॉर का योगदान बहुत

0: बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने वर्षों तक इन पुलों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए काम किया। प्रकृति संरक्षण के प्रति उनके इसी समर्पण के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
1: तो अगली बार जब आप किसी पुल से गुजरे ना, तो मेघालय के उस अनोखे पुलों को जरूर याद कीजिएगा जिन्हें इंसानों ने बनाया नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और प्रकृति के सहयोग से उगाया है। वाकई में मंजुला, मुझे लगता है प्रकृति सबसे बेहतर और सबसे खूबसूरत इंजीनियर है ना। बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आदमी और इंसान फिल्म से।
1: और जो सवाल तुमने मंजुला पूछा था ना कि कहाँ जाना चाहते हो, एक जवाब आ गया है। इदरीस सैफी कह रहे हैं कि लद्दाख जाना चाहते हैं। उन्होंने कारण नहीं बताया, पर मुझे लगता है कि जो वहाँ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ पे पेंगोंग झील है, नुब्रा वैली है, और जो बौद्ध संस्कृति और मठ है, और तारों भरा आसमान है, और फोटोग्राफी का तो वो स्वर्ग है। शायद इसीलिए वो कह रहे हैं, क्योंकि आप भी गई है लद्दाख और मैं भी गई हूँ लद्दाख। बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत ही खूबसूरत है, और जो वहाँ का नजारा है आपको रियल नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम किसी फिल्म में देख रहे हैं वो सारे सीन, तो शायद यही वजह रही।
1: तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाकी श्रोता भी लिखकर भेजेंगे, हमें मेल करेंगे fmgoldga@gmail.com पर, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे।
0: और तब तक बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमारे भारतीय परंपरा के साथ जुड़ी है। साड़ियाँ, साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है रश्मि जी, बल्कि भारत की जीवित विरासत है। इसके धागों में इतिहास है, रंगों में संस्कृति है, और हर बुनाई में सदियों पुरानी कहानियां छिपी है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही साड़ियों की जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अपने भीतर एक अनोखी कहानी भी समेटे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी से। नौवारी यानी 9 गज लंबी साड़ी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका ड्रेपिंग स्टाइल जो धोती की तरह पहना जाता है, और कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के दौर में महिलाओं को घुड़सवारी, युद्ध कला और दैनिक कार्यों में सुविधा मिले, इसलिए ये शैली लोकप्रिय हुई, और यही वजह है कि नौवारी साड़ी सिर्फ परिधान

0: सम्मान नहीं बल्कि महिलाओं की शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है।
1: और जो ये विषय तुमने लिया है, मैं समझ गई मंजिला, बहुत खूबसूरत तुमने ये जो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, और ये साड़ी जो पहनी हुई है ये है मूगा सिल्क की, बहुत सुंदर है। और जो असम की साड़ी है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक जो समय के साथ और निखरती है। ये सिल्क बहुत टिकाऊ होती है और असम की जलवायु में तैयार होने वाला ये रेशम दुनिया भर में अद्वितीय माना जाता है। कई परिवारों में तो ना मंजुला, जो मूंगा सिल्क की साड़ियां होती है ना, वो पीढ़ियों तक संभाल कर रखी जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये साड़ी भी जो मैंने अभी पहन रखी हुई है, मेरी मम्मी का है। और असम की ही एक और खास पहचान है एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। इसमें रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। और इसी तरह कमल के डंठल्स के रेशे से तैयार की जाने वाली लोटस सिल्क साड़ियां आज सस्टेनेबल और क्रुएल्टी फ्री फैशन का शानदार उदाहरण बन चुकी है। तो प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और सौंदर्य का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है।
1: कितना सुंदर विचार है ये कि सौंदर्य भी है और हम संवेदनशील भी है प्रकृति के प्रति। और क्यों ना हम दूसरी साड़ियों की बात करें। बात करें भाई साड़ियों की, क्वीन जो है बनारसी साड़ी की, भाई ये वाराणसी की जो कला है उसमें महीन जरी होती है, जो बूटे होते हैं, भव्य कलाकारी होती है, इसीलिए तो बनारसी साड़ी आज भी दुनिया भर की भारतीय हस्तशिल्प की पहचान मानी जाती है। और यही वजह है कि आज भी अनगिनत जो दुल्हन बनती है ना, उनकी पहली पसंद अगर पूछोगे तो वो कहेंगी भाई बनारसी साड़ी होनी चाहिए। और साथ में गुजरात की बांधनी साड़ी, उसके रंग बिरंगे बिंदु डिजाइन जो है वो उत्सव का प्रतीक होते हैं। और कश्मीर की कानी सिल्क साड़ी अपनी महीन बुनाई और शाही अंदाज के लिए विशेष पहचान रखती है।
0: बिल्कुल सही। अगर आप बिहार की बात करें तो भागलपुरी सिल्क साड़ी भी अपने प्राकृतिक चमक और विश्व लोक कला को अपने रंग और आकृतियों के माध्यम से जीवंत कर देती है। वैसे साड़ियों की ये सूची और भी लंबी है। भारत के हर कोने में एक नई बुनावट, एक नया रंग, एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है।
1: लेकिन आज के लिए भाई बस करो, क्योंकि इन धागों में इतिहास है, रंगों में पहचान है, और हर साड़ी कहती है भारत की एक नई जगह की कहानी बताती है और संस्कृति की खुशबू बताती है और परंपरा का श्रृंगार 6 गज में लिपटा है पूरे देश का प्यार।
2: चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे,

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म बहारों के सपने, और एक मेल लगता है और आ गया जो रश्मि जी पढ़ने वाली
1: है। ये एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, चरणदास जी, ये बता रहे हैं शिमला जाने के उन्हें अच्छा लगता है, और वो एक बात बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं मंजुला। वो कह रहे हैं क्यों ना पेड़ पौधे लगाए जाएं और पूरी धरती को सुंदर बनाया जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, और वैसे तो मैं शिमला जाना चाहता हूँ पर शिमला जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा, उन्होंने दोनों बातें कही, उन्हें शिमला जाना भी है और उनका ये कहना है कि अगर हम पेड़ पौधे ढेर सारे लगाए तो हर शहर शिमला बन जाएगा।
1: और राजू अग्रवाल चौधरी हिसार से हैं, ये भी जुड़े हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे कि अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं गृहिणी, अरे वो तो बस एक हाउसवाइफ है, लेकिन क्या ये गृहिणी केवल घर संभालने वाली महिला होती है? शायद नहीं,
1: बिल्कुल नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माता है। किसी भी देश की पहली पाठशाला वो उसका घर ही होता है, और उठ उस पाठशाला की पहली शिक्षिका माँ होती है। वही बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, संवेदनशीलता और संस्कारों का पाठ पढ़ाती है। एक डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक या नेता बनने से हर व्यक्ति एक परिवार का सदस्य होता है उसके पहले, और उसके व्यक्तित्व की नींव घर में ही रखी जाती है।
1: जी, जो गृहिणी होती है वो दोस्तों भोजन ही नहीं बनाती, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, घर ही नहीं सजाती बल्कि रिश्तों को भी सहेजती है। वो केवल बजट ही नहीं बनाती बल्कि सीमित संसाधनों में संतुलन और प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मैं तो कहूंगी सबसे अच्छी मैनेजर जो होती है वो घर की जो गृहिणी होती है, वो छोटा सा जिसे कहते हैं ना एक पूरा घर, हाउस होल्ड मैनेज करती है। देखो उसको ना कोई वेतन होता है ना कोई छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी उसका योगदान जो है वो अनमोल है। उसके श्रम और त्याग और समर्पण का कोई मूल्य ही नहीं है, वो किसी आंकड़े में मापा ही नहीं जा सकता। वो तो अपने परिवार के माध्यम में, सच कहूं, समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देती है। दोस्तों
0: बिल्कुल सही कहा, और आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें उन लाखों गृहिणियों को भी सम्मान देना चाहिए जो बिना किसी पहचान या फिर प्रशंसा की उपेक्षा के प्रतिदिन राष्ट्र निर्माण में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रही हैं।
1: तो जब अगली बार आप किसी महिला को कहें ना सिर्फ हाउसवाइफ या कहते सुने तो याद रखिए कि वो केवल गृहिणी नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माता है, और सच बताऊं वो घर का आधार है। और जैसे खुशबू बिखेरती है ना, वो ऐसे खुशबू बिखेरती है पूरे घर में जैसे हो कोई रजनीगंधा।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी रजनीगंधा। और लग रहा है कि आप फिर से एक मेल पढ़
1: रही हैं। बिल्कुल, एक और संदेश आया है हमारे पास पूनम का मुंबई से। वो कह रही है मैं फूलों की घाटी जाना चाहती हूँ। तो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और इसमें यहाँ मंजुला बहुत दुर्लभ और सुंदर फूल रहते हैं और बर्फीली चोटियाँ, हरी भरी वादियाँ, वाह शांत वातावरण है। कहती है कि यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद है, यहाँ पहुँचने के लिए ट्रैक करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, जी जी मैं जा चुकी हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
1: भाई रास्ते में झरने हैं, नदियाँ हैं, मनमोहन दृश्य है। तो हम तो कहते हैं आप जरूर जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। और कहीं कुछ मंजुला और कुछ कहना चाह रही हैं?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे आप लोग और भी मेल भेजिए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए कि 2 दिन की छुट्टी के बाद आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। हमारा मेल आईडी नोट कीजिए, fmgoldga@gmail.com। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो हमारे सबसे जुड़ी हुई है। हम अक्सर अपने जीवन में तनाव, चिंता और थकान के का कारण काम के दबाव को समझते हैं, समय की कमी को समझते हैं या परिस्थितियों को मानते हैं। लेकिन रश्मि जी, कई बार असली कारण हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक लोग, हानिकारक आदतें और टॉक्सिक विचार होते हैं जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम करते हैं।
1: मुझे लगता है उनकी तरफ तुम देखा ही मत करो, है ना। क्योंकि कभी ऐसा सामना भी हो ना जो इस प्रकार के लोग मिले, तो उनसे संबंध तोड़ना हमेशा संभव तो नहीं होता, लेकिन स्वस्थ दूरी बना लें और अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए और सीमाएं तय कीजिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसी तरह कुछ आदतें भी हमारी जीवन में जो है वो टॉक्सिसिटी का काम करती है। हर समय अपनी तुलना दूसरों से ना करें, सोशल मीडिया पे ना रहें। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे विचार। कई बार हमारा सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं होते हैं। मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सब विचार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब भी ऐसे विचार आए उन्हें चुनौती दीजिए, अपने आप से वही बातें कीजिए जो अपने किसी प्रिय मित्र से करते हैं।
1: जी बिल्कुल। एक बात याद रखिए कि बगीचे में जो है स्वस्थ पौधे उगाने के लिए उसके लिए नए बीज लगाना पड़ता है, खरपतवार हटानी पड़ती है। तो जो जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें जोड़नी पड़ती हैं। और साथ ही ये भी सोचिए कि स्पर्धा जो है वो अपने आप से करें, अपने आलोचक खुद बनिए। और जो दूसरे अगर कभी आलोचना करें तो उसे भी स्वस्थ आलोचना मानकर अपने में सुधार करने की जरूर कोशिश करें। क्यों मंजुला?
0: बिल्कुल सही। तो आइए छोटा सा संकल्प लें कि ऐसी आदतों से हम दूरी बनाएंगे और पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता, वो हमेशा बना के रखेंगे।
1: जी

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से, खूबसूरत सा गीत।
1: और यहाँ तीन देवियां हैं और स्टूडियो में दो देवियां हैं।
0: बिल्कुल सही। और अभी इन देवी को एक और मेल आया है हमारे पास। वंदना जी लिख रही हैं, संदेश आया है उनका न्यू दिल्ली से कि उनको रणथंभौर नेशनल पार्क जाने की बहुत इच्छा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपकी इच्छा पूरी हो बहुत ही जल्द। और ये मेरा भी फेवरेट है, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जहाँ बाघों को उनके प्राकृतिक आवास देखने में रोमांच मिलता है।
1: जी, वहाँ पर देखिए बाघ तो है ही, साथ में सांभर, चीतल और नील गाय भी हैं। और भाई सफारी का जो रोमांच है वो तो भाई जीप और कैंटर सफारी के दौरान जंगल, झीलों और वन्य जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है। और जो किला है ना रणथंभौर किला, वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मंजुला, बहुत खूबसूरत जगह है रणथंभौर। और फोटोग्राफी का तो क्या कहने भाई, मजेदार फोटोग्राफी, प्रकृति का आनंद।
0: और टाइम आपके लिए सबसे अच्छा अक्टूबर से लेके फरवरी तक रहेगा, क्योंकि उस वक्त ठंड में जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी।
1: जी बिल्कुल, जब जंगल की खामोशी में बाघ की हार सुनाई दे तब समझो रणथंभौर ने अपना असली जादू दिखाया है ना। तो वो किस्मत वाले होते हैं जो जिनको वहां बाघ देखने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल, तो चलिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात कुछ ब्यूटी की। सौंदर्य का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि स्वस्थ रहना भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो त्वचा, बालों और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
1: जी आइए जानते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ आम जो टॉक्सिक इंग्रीडिएंट्स

0: एम्फीबियंस होते हैं, उन्हें पहचानने के आसान तरीके क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं पैराबीन्स की। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उत्पाद लंबे समय तक खराब ना हो। लेबल पर मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन जैसे नाम दिखें दोस्तों शैम्पू में, तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए।
1: और दूसरा है सल्फेट्स। ये शैम्पू और फेस वॉश में झाग बनाने के लिए डाले जाते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट यानी SLS, संवेदनशील त्वचा को रूखा बना सकते हैं। और तीसरा नाम है जो नाम नहीं है बल्कि उस पर लिखा होगा अगर आपके बॉटल्स पे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और आर्टिफिशियल कलर्स। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्रेग्रेंस, परफ्यूम या आर्टिफिशियल कलर्स जैसे साधारण शब्दों के पीछे दर्जनों केमिकल्स छिपे हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाले उत्पादों को सोच समझ के चुनना चाहिए।
0: जी, जो भी खरीदें पढ़ें जरूर कि क्या उसमें है, मौजूद चीजें क्या है। एक और ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है मिनरल ऑयल या लिक्विड पैराफिन। ये पेट्रोलियम से प्राप्त एक सस्ता तेल होता है दोस्तों, जिसे कई क्रीम, लोशन और हेयर ऑयल में भी मात्रा बढ़ाने और लागत कम रखने के लिए मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक डाइज भी होते हैं, जो भी भाई मैं तो कहूंगी चिंता का विषय ही रहेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है मंजुला कि इन्हें पहचाने कैसे?
1: बहुत ही आसान है कि खरीदारी करते समय ब्रांड या विज्ञापन पर नहीं बल्कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर ध्यान दें। तो याद रखिए, जागरूक उपभोक्ता बनना ही सबसे बड़ा सौंदर्य मंत्र है। सुंदरता तभी सार्थक है जब उसके साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा भी जुड़ी हो।
0: हाँ, और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, मेरे साथ परेशानी ये होती है कि चश्मा नहीं होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाती इंग्रेडिएंट। ज्यादातर दोस्तों ये इंग्रेडिएंट बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखे होते हैं, तो सही तरीका ये होता है कि अपने मोबाइल कैमरा से उसकी फोटो खींच लीजिए और उन्हें एनलार्ज करके पढ़ लीजिए, भाई कहीं इसमें पैराबीन तो नहीं है, सल्फेट तो नहीं है, जो है ये मिनरल ऑयल तो नहीं है, ये सब देखिए, ये सब पढ़ लीजिए। जागरूक उपभोक्ता बनेंगे तो ये सबसे बड़ा सौंदर्य का मंत्र है ना।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म है अपना देश। इसी के साथ हमारा आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेति को इजाजत और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण

0: restrooms at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict. The incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है हमारे लाइव रेडियो कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की रहना तवर प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश, फिर शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़ी है,
3: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: तो प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए रैना तवर का, और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ के इस विशेष फिल्मी कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के इस आधे घंटे के सफर में हम ले चलेंगे आपको 70 की दशक की एक बेहतरीन लोकप्रिय फिल्म जिसका और जिसकी कहानी, जिसके संवाद, जिसके गीत और उसकी आइकॉनिक किरदारों के लिए जो आज भी आपके दिलों में राज करती है। जी हाँ, खैर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी फिल्मों की बातें होंगी और उसके साथ आप इस ये 70 की दशक की जो फिल्म की बात कर रही हूँ इसमें देखिए मैं हूँ तो आपको कुछ तो कहना होगा, तो यानी कि मैं आपको दूंगी एक हिंट और आपको पहचानना होगा कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं और इस फिल्म में कौन कौन थे, वो भी हम आपको बता देते हैं, हिंट भी दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। जी, इसके साथ एक हिंट ये है कि 1976 में रिलीज हुई थी फिल्म और इसमें जो किरदार थे, जो सुपरस्टार थे, वो मनोज कुमार और खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी जी और दमदार अभिनेता प्राण साहब भी थे। तो टाइप कीजिए फटाफट ipradiodelhi@gmail.com क्योंकि हमें रहेगा आपके मैसेज का इंतजार। जो सबसे पहले हमें मैसेज करके भेजेगा वो हमारा आज का इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता होगा। फेवरेट हमारे आप सभी हैं, मगर जो सबसे पहले भेजेगा वो जो गेस करके हमें बताएगा तो मजा आएगा, है ना। तो चलिए जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ ipradiodelhi@gmail.com। जल्दी से टाइप कीजिए, अपना जवाब भेजिए, हमें रहेगा आपके जवाब का इंतजार। और हम सुनते हैं उसी से जुड़ा ये वाला गीत।
6: यो यो
7: अरे मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
8: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
6: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
9: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
6: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
9: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
1: देखा कितनी सारी बातें हो रही हैं और आप हमें मैसेज करके भेज रहे हैं, हमें फटाफट से गेस कीजिएगा और बताइएगा कि क्या हम किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सा गीत है, कौन सा गाना है। और हम इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का ipradio@delhi.gmail.com पर फटाफट से हमें मैसेज करके जवाब दीजिए कि किस फिल्म की हम आज बात कर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ रहना तवर और कार्यक्रम है एक ही फिल्म से।
7: अरे तेरे प्रेमी तो इधर है हम। अरे हमें पिला प्रेम से जितनी पिलानी हो।
6: या

जी हाँ, प्रेम करो बड़ा बुरा। और ये जो गाना था, ये जो गीत है श्रोताओं, अभी आपने जो सुना, ये है लता मंगेशकर की आवाज़ का खूबसूरत नगमा। तो बहुत सारे जो मैसेज हमें आ रहे हैं, सबसे पहले जिसने हमें ये सही जवाब दिया मैसेज करके, वो हमारे आज के फेवरेट श्रोता कौन है? जवाब है जी डीबी राणा नेहरू, बिहार से, दिल्ली से। उन्होंने हमें मैसेज किया और एकदम सही बताया कि हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है 10 नंबरी। जी हाँ, 10 नंबरी। और सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे, और सभी श्रोता को निराश बिल्कुल ना हुए, क्योंकि सभी हमारे दिल के बेहद करीब हैं। बस ये तो एक छोटा सा बहाना है, आपसे कुछ तो करवाना है ना, रहना है तो कुछ तो कहना है। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं 1976 में रिलीज हुई एक लोकप्रिय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म 10 नंबरी की, जिसे मदन मोहल्ला द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस फिल्म के कई हिस्सों में मनोज कुमार साहब ने ही खुद निर्देशित किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म का नाम 10 नंबरी उस समय काफी चर्चा में रहा? पुलिस की भाषा में 10 नंबरी उस अपराध को कहा जाता है जिसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में, यानी कि 10 नंबर पे रखा जाता है। और इस फिल्म में मनोज कुमार का किरदार इसी टैग के साथ बड़ा होता है और अंडरवर्ल्ड का नाम डॉन बन जाता है।

बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, इस तरह से जुड़े रहिएगा ipradiodelhi@gmail.com। आप सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, मैं हूँ आपके साथ रैना तवर। और बहुत सारे मैसेज, बिट्टू गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी का हमें मैसेज आया है, राधेश्याम देवांगन, देवांगन जी का, जगदीश देवांगन जी का, चंपा जी का, इंदिरापुर नगर भवन पुर से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी का भी, स्वर्ण सिंह जी का, अजीत भावसर का भी।

जी हाँ, दुनिया एक नंबरी और मैं 10 नंबरी। वाह, इस फिल्म के कई दृश्य उत्तर भारत की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माए गए। हालांकि उस दौर में तकनीकी सुविधाएं कम थी, फिर भी फिल्म के दृश्य और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को बहुत पसंद आए। मनोज कुमार ज्यादातर देशभक्ति फिल्मों में किरदार निभाते थे, जिसके वजह से वो भारत कुमार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। इस फिल्म में निभाया किरदार बिल्कुल विपरीत था। लेकिन कहते हैं ना, किरदार कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर अदाकार अच्छे हों, किरदार निभाने वाले अच्छे हों, तो वो दिल पे छाप छोड़ ही जाते हैं, जैसे मनोज कुमार साहब ने इस फिल्म में छोड़ दिया, यानी कि दर्शकों का मन मोह लिया। और हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, जैसे कि छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश सिंह, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी जी का हमें मैसेज आया है, और उसके बाद सुनील पाठक जी का मैसेज आया है। हमारे पास कमल पाठक, कमल होत्रा, अनारकली बाजार पंजाब से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। और नमस्कार जी, अनिल मोहन जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, और शानदार प्रस्तुति, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहाड़गंज

तानी ढांगड़ा से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और संगीत सुहानी यानी कि नवाब खान से का भी मैसेज आया वार्ली मुंबई से, नवाब जी का, इशरत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें मैसेज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जो कि है एक ही फिल्म से।

क्या बात है, लता मंगेशकर की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे हैं। और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं हूँ आपके साथ रहना था। और आज की हमारी जो फिल्म है वो है 10 नंबरी। तो श्रोताओं, इस फिल्म का जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल द्वारा रचित था, और इस गीत के मजरूम सुल्तान जी ने लिखे थे। और इस कहा जाता है कि ये मुकेश जी एक अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि मुकेश जी की ने भी इनमें गीत दिए हैं। और कहा जाता है कि मुकेश जी की जो आखिरी फिल्मों में से एक ये फिल्म थी जिसमें दिग्गज गायक मुकेश जी ने मनोज कुमार के लिए गानों में अपनी आवाज़ दी। और हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं का मैसेज आया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप हमसे जुड़ें ताकि हमें भी लगे कि हम प्रोग्राम्स आपके लिए लाए हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं। और कोई भी प्रतिक्रिया आप सुझाव हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ये हम अपने इसमें शामिल करेंगे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसविंदर जस्सी, सीता और गीता हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी तरह से अजीत भास्कर ने जी हमें मैसेज किया है पिपरिया।

से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और समडील नवपारा से मुकेश कुमार, श्रद्धा गुप्ता दीति, राधे गुप्ता दीपक और अंकुर राघव ने मैसेज किया है। सतीश अनेजा ने विमल अनेजा जी ने चंडीगढ़ से हमें मैसेज किया है और प्यार भरा नमस्कार सभी को। पीएस नावकर जी लिख रहे हैं, निर्मला नवावकर, पीएस नवावकर और नलवेश्वर नलवेश महाराज से, विशाल नवावकर और मलकापुर महाराज से, सोपानतान पे बहुत सारे मैसेज हमें आए। वंडीखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, टिंग पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा और सुनिए हमारा अगला ये नगमा इसी फिल्म से।

0: और बहुत सारे मैसेज हमें आए बागपत से, उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार जी का मैसेज आया। जिन जिन के मैसेज अगर आ रहे हैं और मैं नाम ना पढ़ पाऊँ तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार ज़रूर शामिल करूँगी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला जी का हमें मैसेज आया है, हीरामणि जी का मैसेज आया है हमें। उसी तरीके से हमारे पास नागर कोहला जिला राजनांदा छत्तीसगढ़ से बबलू जामुन, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या का मैसेज आया है। और इसी तरीके से हमारे पास नवाब खान जी का मैसेज आया है और इश्तेहाब सागिर का जो मैसेज आया है हमें वारली मुंबई से, बहुत सारे मैसेज आए हैं हमें। और इसी तरीके से आपने प्यार हमें भेजा, मसरूर हसन जी का मैसेज हमें आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। संदीप मक्कर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत भावसकर जी, प्रकाश वर्मा जी का। और इसी तरीके से संदीप मक्कर जी का मैसेज, भागवत वर्मा जी का, शांति लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा और संतोष खाड़से का मैसेज हमें आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से सोमदत्त जी का भी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए हमारे पास। और हम इस फिल्म में बात कर रहे हैं 10 नंबरी के बारे में, तो प्राण साहब ने इस फिल्म में जो किरदार निभाया है वो पूरी फिल्म में कहते ना कि एक अलग ही जान उन्होंने डाल दी। और उन्होंने इस फिल्म में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए कई अलग अलग रूप और वेशभूषाएं बदली, जिसे दर्शकों ने बहुत ही पसंद किया। और लगभग 1 करोड़ का बजट में ये बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस में करीब 4.5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई थी। और देखिए 1976 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक ये फिल्म रही।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है।
2: अच्छा,
1: मुझे भूख

0: लगती।
1: बापरे,
0: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

बहुत सारे मैसेज हमें आए, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूर, अविराज, और इसी तरीके से एके फिल्म से बबलेश पवार के इसी मैसेज हमें बहुत मैसेज आए हैं, और इसी तरीके से देव शंकर जी तमोरिया का मैसेज आया है, अजीत भास्कर का, अनिल मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र दर्क सुथकर का जी का मैसेज आया है, हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार मनोज जी का भी मैसेज हमें आया है, और संजय ढींगिया जी का, उषा मोहन जी का, धर्मेंद्र छिप्पा जी का, रोशन देवगन, धर्मेंद्र छिप्पा, संतोष जी, स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज आने का, इसी तरीके से हिरमानी वर्मा जी, हीरामणि जी का, और इसी तरह से हमें प्रोग्राम में अपने प्रतिक्रियाएं भेजते रहिएगा और हमें हमें याद कीजिएगा, क्योंकि तो दोस्तों समय बहुत कम रह गया है, तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि आप सुनते रहें आप आपका अपना ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इस कार्यक्रम को मैं लेती हूँ यहीं समाप्ति, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून, और जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी एक सभ्य और नेक नागरिक बने, कैसे कि अगर कहीं मेट्रो में आप जा रहे हैं तो सीट बुजुर्गों को ज़रूर दें और जो ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर दें, तो रहना तवर को लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे नई फिल्म नए गीत के साथ, और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, गम बहुत है जमाने में यारो, ये गम बहुत है जमाने में यारो, खुश रहना एक बहाना ही है, एक बहाना ही है खुश रहने के लिए, काफी है दोस्तों, तो सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है, जिसमें उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर मंगोलिया के अपने हम मनसब के साथ इकतसादी राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने के मामले पर बातचीत करने वाले हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज आसाम और मेघालय में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप में अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है, जिसमें समाजी बहबूद, बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है। रियासती सरकार के मुलाजमीन के महंगाई भत्ते में 20% का इजाफा किया गया है। रियासत के वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के पहले बजट में ये ऐलान किया। इस तरह मजमुई महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार समाजी बहबूद की सभी मौजूदा स्कीमें जारी रखेगी। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि रियासती सरकार के स्कूलों और सरकार की इमदाद से चलने वाले स्कूलों में लड़कियों को 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जनाब स्वपन दास गुप्ता ने असेंबली में यह ऐलान भी किया कि सरकार मुख्तलिफ खाली ओहदों के लिए 1,00,000 अफराद की भर्ती करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सरकार खातून उम्मीदवारों के लिए 33% खाली ओहदे रिजर्व करेगी। रियासत के वजीर खजाना ने MLA के मकामी एरिया तरक्याती फंड को 70,00,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस फोर्स में 20,000 सीटों पर तकरूरी की जाएगी। शुमाली बंगाल में एम्स अस्पताल और कैंसर अस्पताल कायम किया जाएगा। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज से नई दिल्ली में हो रही है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा आज दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। वो उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल के साथ साथ कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेज़ी के साथ बदलती हुई नौयत पर भी गौर खोज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर और वफूद के सरबरा दहशतगर्दी से निमटने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रिक्स के मुश्तरका वर्किंग ग्रुपों की हालिया मीटिंगों के नतीजों का जायज़ा भी लेंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मवासलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मामला भी जेरे गौर आया था। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग के बैन अल-अक़वामी दिन की अजीम कामयाबी इस हकीकत की अक्कासी करती है कि योग से न सिर्फ दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जिस्मानी तंदुरुस्ती बरकरार रखने में मदद मिल रही है, बल्कि इससे उन्हें एतमाद के साथ मुस्बत जिंदगी जीने की तरगीब भी हासिल हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग जहन को पूरी तरह सुकून और तस्कीन देने का अहम वसीला है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया कबीले के अरकान से मुलाकात की।

0: ने प्रोजेक्ट चीता में उनके रोल को सराहा और कहा कि मकामी बिरादरियों की सरगर्म शमूलियत चीतों को महफूज रखने के प्रोग्राम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रही है। इससे कबल सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क में एक सफारी पर गईं और चीतों की बहाली के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतालिका एहलकारों ने सदर जमहूरिया को बताया कि सरदस भारत में 52 चीते हैं और उनमें से 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं। 3 चीतों को जंगली जानवरों की गांधी सागर पनाहगाह में मुंतकिल किया गया है। प्रोजेक्ट चीते का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। उस वक्त नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते वहां लाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नाशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर दो मुल्कों के सरकारी दौरे के पहले मरहले में मंगोलिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो भारत और मंगोलिया के दरमियान खसूसी साझेदारी को आगे बढ़ाने की खातिर मुफीद तबादला ख्याल और बातचीत के मुंतजर हैं। अपने इस दौरे में वजीर खारजा मंगोलिया के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और अपने हमनसब के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दूसरे मरहले में बुध को 2 दिन के दौरे पर जनूबी कोरिया जाएंगे। वो अपने हम मनसब चो ह्यून के साथ तबादले ख्याल करेंगे और जुमेरात को जेजू के मकाम पर अमन खुशहाली से मुतालिक जेजू फोरम में क्लीदी खिताब करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने मशहूर मारूफ जरई साइंसदान और पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता सरदारा सिंह जोहल से आज लुधियाना में मुलाकात की और पंजाब के जरई बहरान पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग के बाद जनाब नबीन ने कहा कि एक ऐसी शख्सियत से बातचीत उनके लिए बायस इफ्तिखार है जिसने ज़राअत के शोबे में गैर मामूली तआवुन किया। उन्होंने कहा कि जनाब सरदारा सिंह के साथ बातचीत के दौरान उन्हें ज़रई मामलात पर अहम मालूमात हासिल हुई और उन्हें एतमाद है कि उनके नज़रियात और मशवरे मुल्क के लिए सूदमंद साबित होंगे।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: इत्तेहाद और नशरियात और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर ममलुकत डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के 2 रोजा दौरे के तहत भोपाल पहुंचेंगे। डॉक्टर मुरुगन आज शाम भोपाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां से वो रियासती गेस्ट हाउस की जानिब रवाना होंगे जहां वो भोपाल जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग करेंगे। कल वो देवास जिले के कनोड तहसील के दोकाकुई गांव जाएंगे जहां वो एम्पिलैड स्कीम के तहत मंजूर शुदा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। उमूर खारजा से मुतालिक पार्लिमानी कायम कमेटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 दिन का मुतालियाती दौरा शुरू कर दिया है। इसका मकसद किलीदी सरहदी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी मामलात का जायजा लेना है। मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर इस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हमारे नवानिगार ने बताया है कि ये कमेटी सरहदी बंदोबस्त और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का बरसरे मौका जायजा लेने के लिए इस महीने की 25 तारीख तक जम्मू श्रीनगर करगिल और लेह का दौरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज आसाम और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल कर्नाटक तेलंगाना गोवा ओडिशा और शिमाल मशरक हिस्सों में कहीं कहीं कल तक शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंडमान निकोबार जजायर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। IMD के मुताबिक छत्तीसगढ़ मशरकी मध्य प्रदेश मशरकी उत्तर प्रदेश विदर्भ और तेलंगाना में कल तक गर्मी का जोर जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज सुबह वैंकूवर में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 से हराकर वर्ल्ड कप में अपनी अव्वलीन कामयाबी हासिल की है। लिवरपूल के सरकर्दा खिलाड़ी मोहम्मद साहले ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ ही मिस्र की टीम ग्रुप जी में सरे फहरिस्त आ गई है। इससे कबल आज फ्लोरिडा में ग्रुप एच के एक मैच में केप वर्डे और यूरुग्वे का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। आज के मैचों में ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 शुरू होगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया है जिसमें समाजी बहबूद बुनियादी ढांचे के फरोग और रोजगार पर तवज्जो मरकूज की गई है। खवातीन के लिए मखसूस कई स्कीमों का ऐलान भी किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री

0: मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 18 सेकंड। स्वागत है आप सभी का हमारी सभा में, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम, जी हाँ, जिसका आपके साथ हमें भी बेसब्री से रहता है इंतजार। कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और आज आपके साथ इस सफर में आपकी रेडियो हम सफर हूँ मैं सोनाली। तो बस कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार, और आपके समक्ष पेश कर रही हूँ ये गाना, और आप मुझे बताएं कि आज के हमारे कलाकार कौन है। और आपको बस इतना बता दूं कि ये जो कलाकार हैं ये आपको पर्दे पर नजर नहीं आएंगे, ये पर्दे के पीछे के हैं, और ये पर्दे के पीछे के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो बस इतनी हिंट मुझे लगता है बहुत है। अब आप लोग मुझे बताइएगा इस गाने को सुनकर कि ये हम किस कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं फिल्म दादी माँ से ये गीत। और हमने आपसे पूछा था कि हमारे आज के कलाकार कौन हैं, तो देखिए बस हमें इंतज़ार है आप लोगों की जवाब का। बस आपको बता दें कि हमारे जो आज के कलाकार हैं वो बेहतरीन निर्माता और निर्देशक रहे हैं, और उन्हीं की फिल्मों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये फिल्म में अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और मन्ना डे के साथ इनके युगल सिनेमा में ये गीत था। और हम आपको बता दें, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ निर्माता या निर्देशक कहकर नहीं पुकारा जा सकता। एलवी प्रसाद, जी हाँ, हमारे आज के कलाकार एलवी प्रसाद ऐसा ही एक नाम है। 17 जनवरी 1908 को आंध्र प्रदेश के सोमवर

सोमवर रुपाड़ गांव में जन्मे लक्ष्मीवर प्रसाद राव सपनों की तलाश में मुंबई पहुंचे। संघर्ष इतना था कि कई बार भूखे दिन भी उन्होंने देखे, लेकिन सिनेमा से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। दोस्तों, आपको बता दें, यही वह कलाकार थे जिन्होंने भारत की पहली हिंदी बोलती फिल्म आलम आरा, पहली तेलुगु बोलती फिल्म भक्त प्रहलाद और पहली तमिल बोलती फिल्म कालिदास में अभिनय किया। आगे चलकर यही युवक भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित नामों में शामिल हुआ, जिनका नाम है एलवी प्रसाद, जो है हमारे आज के कलाकार। तो देखिए, हमने बात की, आपको बता दिया, तो बस आप भी हमारे साथ रहें और आइए सुनते हैं उनकी ही फिल्म का एक और गाना। और ये जो फिल्म मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये फिल्म है मिलन। और मिलन के तो खैर बहुत सारे गाने हमने लगातार सुने हैं, पर ये जो गाना है ये थोड़ा सा अलग हटके है। तो आइए सुनते हैं एलवी प्रसाद द्वारा निर्मित ये फिल्म मिलन का ये गीत।

जी हाँ, यही था फिल्म मिलन का गाना। और हमारे आज के कलाकार हैं, जैसे हमने आपको बताया, निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद। तो हम बात कर रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के बारे में। एलवी प्रसाद की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। परिवार, रिश्ते और जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ उनकी कहानियों का हिस्सा बनती थी। मसलन जो फिल्में हैं जैसे शारदा, छोटी बहन, बेटी बेटे और दादी माँ, जैसी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ घर आंगन की खुशबू भी महसूस होती थी। तो ये हैं हमारे आज के कलाकार। और देखिए, हमारे दोस्तों ने हमें बिल्कुल बखूबी बता दिया है कि हमारे आज के कलाकार कौन है। तो हमारे साथ कौन है ये? जी, ये पंकज शर्मा जी हैं और इनके साथ हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, शशि बल्ला जगमोहन प्रजापति, आमिर, रमेश कुमार, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर हमारे साथ हैं हमारे और भी दूसरे श्रोता, उनके नाम आपको बता दें। फारूक अली खान हैं, ये कस्बा गुन्नौर यूपी से हैं और इन्हें ये वाला गाना बहुत पसंद आया, तो है सवरिया ना ही खबरिया। शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। और देखिए, फिर हैं हमारे साथ तुलसी मस्कीन जी, ये लिख रहे हैं, होस्ट सोनाली जी नमस्कार, एक ही कलाकार में आज एलवी प्रसाद जी के बारे में जानकारी, बहुत उम्दा शो में पेशकश, गीत एक से एक सुपर लवली सॉन्ग, हम हो गए परदेसी। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है, शुक्रिया, आपको भी पसंद आया इसके लिए। ये है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी, दिल्ली से। तुलसी मस्कीन जी, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना। और फिर धर्मेंद्र छिपा जी हैं और इन्होंने इन्हें अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, धन्यवाद, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं। इनके साथ हैं कपिल चीपा, पूजा परिहार। फिर हैं अनिल मोहन जी, ये हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। उषा मोहन टिल्लू नायक हैं और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलवी प्रसाद जी की, तो जिस तरह से हमने बात की उनकी फिल्मों की, तो आइए सुनते हैं एक और गाना, फिर बताते हैं हमने इसे कौन सी फिल्म से लिया है। अगर आप भी जानते हो तो आप भी हमें बताइए ना कि ये जो गाना मैं आपके लिए अब लेकर आई हूँ, ये कौन सी फिल्म का है।

फिल्म बेटी बेटी से आप ये सुन रहे थे गाना, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर की। और देखिए, हमारे दोस्तों को ये चीज़ ना पता हो, ऐसा कभी हो सकता है, तो ये हमें बिल्कुल सही चीज़ लिखी है अमीना साबिर हुसैन मिरासी मोहम्मद बेगम ने, गांव घिटोरनी नई दिल्ली से, और बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही लिखा है। और फिर ये हमारे साथ हैं, जी हाँ, ये हमारे दोस्त कौन से हमारे साथ हैं, ये हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए। फिर ये हैं बिल्कुल तुलसी मस्किन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये फिल्म बेटे बेटे का है और गायक स्वर भी आपने बता दिया, रफ़ी जी और सुमन कल्याणपुर। और फिर हमारे साथ हमारे और भी दोस्त जुड़े हैं, जैसे हैं हमारे साथ घनेसर गोट कराची से अमर चानेसर गोट कराची से अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, शंकर गुल शर्मा। मैडम जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वेरी नाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग कलेक्शन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। फिर ये संदीप मक्कर हैं और इनके साथ हैं ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर, कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से। सुदर्शन मुखी जी, आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, फिल्म बेटी बेटी, धन्यवाद। और ये अमर रमेश कुमार खत्री, जी हाँ, आपने भी, अच्छा हमने आपको बता तो दिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिल्म बेटी बेटी। और ये है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इन्हें ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं निर्माता, निर्देशक और कलाकार एक्टर एल वी प्रसाद की।

तो निर्देशक के साथ ही ना एलवी प्रसाद एक दूरदर्शी निर्माता भी थे। जैसे उनकी फिल्म है ससुराल, हमराही, मिलन, राजा और रंक, खिलौना, जीने की राह और बिदाई। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। उनकी फिल्मों के पात्र और रिश्ते दर्शकों को अपने लगते थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सफलता भी थी। तो अभी हमने बात की है उनकी राजा और रंक फिल्म की। तो देखिए, अगर हम आपको उस फिल्म के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उनकी जो एक मास्टरपीस है खिलौना, खिलौना मतलब संजीव कुमार का गजब का अभिनय और साथ में मुमताज़ की मासूमियत। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने एक्टिंग के साथ साथ निर्माता, निर्देशक और एक ऐसी फिल्म सारे दर्शकों को दी जो आज भी एक मील का पत्थर, एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। खिलौना के बारे में आपसे अलग से किस दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम आपको एलवी प्रसाद जी द्वारा जो निर्मित फिल्म है खिलौना, उसका एक गाना जरूर यहाँ पर सुनाएंगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म खिलौना का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में। तो ये तो फिल्म खिलौना का टाइटल सॉन्ग था। हम बात कर रहे हैं प्रसाद साहब के निर्माता और निर्देशक के रूप में जिन्होंने फिल्म बॉलीवुड को दी उसके बारे में। उनकी एक और फिल्म की अभी हमने बात की थी, फिल्म थी ससुराल। अब ससुराल में आपको याद होगा एक बहुत प्यारा सा गाना है और ये फिल्म आया है किस पर, राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी पर। तो आइए वो गाना सुनते हैं और फिर हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे।

भाई आप लोगों की भी प्यारी प्यारी बातों को किसी की नजर ना लगे, कितने प्यार से आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए आप लोगों को खिलौना का गाना पसंद आया, इसके लिए बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह जी, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, और ये हमारे साथ गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से जुड़े हैं। फिर देखिए यहाँ पर है ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता हागोने, कुमारी प्रियाली हागोने और पार्थ हागोने, और ये हमें लिख रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से, शुक्रिया। और ये हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी, और जी है इनको भी हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है। ये हैं इनके साथ हैं संदीप गुगलानी नूतन और इनके बाकी दोस्त भी हैं। फिर हमारे साथ हैं संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दोस्तों एलवी प्रसाद साहब के बारे में बातें बहुत हैं, और हम उनके बारे में आपको इतना बता दें कि बाकी दोस्तों के नाम भी मैं शुमार करूँगी, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि सिर्फ ना प्रसाद साहब ने फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि भारतीय सिनेमा के तकनीकी विकास में भी बड़ी भूमिका निभाई। प्रसाद प्रोडक्शंस, प्रसाद स्टूडियो और प्रसाद फिल्म लैब के माध्यम से उन्होंने फिल्म उद्योग को नई दिशा दी। उनके योगदान के लिए उन्हें 1982 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको फिल्म हमराही का एक गीत दे रही हूँ, आप इसे सुनिए और फिर हम आगे बात करेंगे।

फिल्म हमराही की आपको सिर्फ मैंने एक झलक सुनाई इस गीत की, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी कमी ज़रूर लगेगी। फिल्म है एक दूजे के लिए, जिसे 1981 में आई थी और इसके निर्माता थे हमारे आज के कलाकार एलवी प्रसाद। तो हम चलते चलते आपको वो गाना सुनाते हैं और बस फिर इस कार्यक्रम को हम किसी और दिन एलवी प्रसाद से आपकी बातों के साथ और आगे बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत।

आप सभी को भी मेरा सलाम, क्योंकि अब मैं आपसे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। चलते चलते अपने सारे दोस्तों को बता दूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, सुदर्शन मुखी जी जुड़े हैं, राजेश सेन, प्रवीण हागुनी, अनिल मोहन जी, स्वर्ण सिंह, पंकज शर्मा जी, फागुराम यादव, प्रकाश वर्मा, निसार अली जी, इसाक मोहम्मद साहब, पी एस नावकर साहब, देवशंकर तामूरिया, उदय भान पाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। आप लोग रहते हैं हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इस गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए आज किस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी वीव 366.3 मीटर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में हम आपके लिए लेकर आएंगे पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास पर केंद्रित रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था। आइए सुनते हैं ये विशेष प्रस्तुति।
1: महाकाल नगरी उज्जैनी की सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संवाहक पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था का पुनः प्रसारण। आलेख अशोक अग्रोही, प्रस्तुतकर्ता डॉ. संजय सिंह वर्मा।

मैं उज्जैनी बोल रही हूँ, मालवा के गौरवशाली अतीत की साक्षी। साहित्य संस्कृति की प्राचीन परंपरा को अपनी गोद में संजोए विक्रमादित्य के विक्रम की शौर्य स्थली और कालिदास की कविता भूमि। मेरे आंचल से प्रवाहित क्षिप्रा नदी ने संस्कृति और आध्यात्म की वो धारा प्रवाहित की जिसके स्मरण भर से ही मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है।

0: और मैं उज्जैनी का गौरवशाली इतिहास हूं। मैंने वीर विक्रमादित्य के शासन का स्वर्ण काल देखा है। मैं उसकी अनुपम न्याय व्यवस्था और पराक्रम का साक्षी हूं। मैंने प्राचीन वैभव देखा है तो वर्तमान के स्वाभिमान का एक ऐसा सूर्य भी देखा है जो कभी अस्त नहीं हुआ।
1: हां, मैंने भी देखा है उस सूर्य को। उसका उदय 2 मार्च 1902 को मेरी ही मिट्टी से हुआ था। उज्जैनी के गौरवशाली अतीत को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले विक्रमादित्य के शौर्य

0: और कालिदास की कल्पना को पुनर्जीवित करने वाले उस सूर्य का नाम था पंडित सूर्य नारायण व्यास।
1: महर्षि सांदीपनि के वंश में उदित उस सूर्य का नाम सूर्य नारायण व्यास ही था। इस सूर्य की ओर जिसने भी देखा, एक नई दृष्टि से देखा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है,
2: व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया। उन कठिन दिनों से निकलकर उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया, वह इस बात का साक्षी है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर ले, संकल्प कर ले, तो कोई बाधा उसके मार्ग में आ नहीं सकती।
0: प्रख्यात इतिहासकार G.S. करंदीकर उन्हें जीवित विश्वकोश मानते थे। उनके स्वर में स्वर मिलाते पंडित जी के शिष्य प्रोफेसर घनश्याम पांडे।
3: व्यास जी जो ज्ञान अगाध था, वो ज्योतिषाचार्य के अतिरिक्त बड़े साहित्यकार, मुक्तक कविताएं और इतिहास के बड़े ज्ञाता थे। उनकी कहानियां बहुत ही रोचक होती थी, ज्यादातर पौराणिक कहानियां, तत्कालीन राजाओं के संबंध में बहुत सी कहानियां वह बताया करते थे।
0: पंडित सूर्य नारायण व्यास का शैशव पंचमुखी हनुमान जी के देवालय और महाकाल मंदिर के प्रांगण में व्यतीत हुआ। उनके पिता श्री नारायण व्यास स्वयं संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे, इसलिए संस्कृत और ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान उन्होंने अपने ऋषितुल्य पिता से ही प्राप्त किया। आगे की शिक्षा उन्होंने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रहण की।
1: जिस समय व्यास जी युवा हुए, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। एक योद्धा की तरह व्यास जी भी इस संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने क्रांतिकारी लेख लिखे, पर्चे बांटे, पोस्टर छापे और राष्ट्र यज्ञ कैलेंडर प्रकाशित किया। बाद में सेठ गढ़ोदिया डकैती कांड के प्रमुख क्रांतिकारी अभियुक्तों को अपने घर में छुपाया।
0: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद कई बार आकर व्यास जी से मिलते रहे। उन्हीं दिनों भगत सिंह ने जेल में आयरिश क्रांतिकारी डैनियल डैनब्रीन की संघर्ष कथा का अनुवाद किया। व्यास जी ने उसे छपवाकर वितरित कराया। काकोरी कांड के वीरों की सहायता के लिए उन्होंने घर घर जाकर धन एकत्रित किया। अंग्रेजी राज ने उन्हें ऐसे लोगों की सूची में शामिल कर लिया जिनसे सरकार को भय था।
1: क्रांतिकारी कॉमरेड रामचंद्र सोनी।
4: क्रांतिकारियों के साथ में तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि जो ठाकुर निरंजन सिंह जो थे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे क्या, और उनको कैसे उन्होंने उस वक्त रखा, अब इसी से आप पता लगा लीजिए।
0: सन 1942 के आंदोलन के प्रभाव से वे भी अछूते ना रह सके। उन्होंने अपने घर भारती भवन से 42 मीटर बैंड का एक गुप्त रेडियो आरंभ कर अपनी तरफ से भी क्रांति घोष कर दिया।
5: हमें भी अगर अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है तो हर तरह की कुर्बानी देनी होगी। इस समय हम न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई, अगर कुछ है तो वो है हिंदुस्तानी। आइए घर से बाहर निकलिए और शामिल हो जाइए आजादी की इस जंग में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: व्यास जी का क्रांतिकारी पक्ष जितना प्रभावशाली था, साहित्य पक्ष उससे भी अनूठा। देश की सीमाएं पार कर उनकी ख्याति यूरोप तक पहुंच चुकी थी। 1937 में जब वे इंग्लैंड पहुंचे,

0: ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने महल में उनका स्वागत किया। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई। यूरोप की इस यात्रा के संस्मरण उन्होंने अपनी पुस्तक सागर प्रवास में लिखे हैं। पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन इसे यात्रा साहित्य में मील का पत्थर मानते हैं।
1: हम धन्य हैं कि सुरनारायण जी व्यास इतनी बड़ी निधि हमको दे गए, जिसके बल पर उज्जैन सारे राष्ट्र में नहीं है, सारे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकेगा। उस पर गौरव से हम गौरवान्वित होंगे, सारा विश्व गौरवान्वित होगा।
2: व्यास जी ने 18 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था। 1942 में उन्होंने मासिक पत्रिका विक्रम का प्रकाशन आरंभ किया और 1958 तक उसे चलाया। अकेले विक्रम में व्यास उवाच और बिंदु बिंदु विचार शीर्षक से उन्होंने 2538 पृष्ठों के संपादकीय लिखे।
0: व्यास जी गुजराती, मराठी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी के मर्मज्ञ थे। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों का सृजन और असंख्य ग्रंथों का संपादन किया। वे एक श्रेष्ठ व्यंग्यकार, कवि, निबंधकार, इतिहासकार तो थे ही, प्रखर पत्रकार और संपादक भी थे। भारतीय ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रभाकर क्षोत्रिय।
3: विक्रम का जो संपादकीय है, एक तरफ वो बोल्शेविक क्रांति की बात भी करते हैं, देशी राजाओं की बात करते हैं, देश में महंगाई की बात करते हैं, अंग्रेजी तंत्र की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, तत्कालीन जो स्थितियां हैं उसकी, यानी इतने पक्ष हैं उसके संपादकीय। आखिरकार 6-8 हजार पृष्ठों में, और पढ़े ज्यादा दोहराया नहीं हमने।
2: वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता।
4: संपादक के लिए जो बड़ा कर्तव्य होता है, उसका एक समाज का जो आईना है वो दिखाया जा सके जनता को, और उस समय में जब स्वतंत्रता की प्रारंभिक किरणें आई और उसके बाद किस तरह से देश में जिस तरह से प्रगति हो रही थी, समाज में कुरीतियां रही, विश्वास रहे, गुलामी की एक मानसिकता रही, उससे उभारने के लिए पंडित सूर्य

0: दास समारोह की नींव रखी। इस समारोह को लेकर पंडित जी बहुत संवेदनशील थे।
1: पंडित जी, लगता है आप आज के समारोह से खुश नहीं हैं।
2: खुश तो हूँ, पर पूरी तरह से नहीं।
1: पर वो क्यों?
2: मैं इसे और बड़े स्तर पर आयोजित करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से मैं लोगों में देश के गौरव का भाव जगाना चाहता हूँ।
1: वो कैसे?
2: देखो, ऐसा है, हमारी आजादी की लड़ाई में जिन नेताओं ने भाग लिया है उनमें से अधिकतर विदेशों से पढ़कर आए हैं।
1: हाँ।
2: इसलिए वे भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला से अनभिज्ञ हैं। वे शेक्सपियर तो करते हैं किंतु कालिदास को नहीं जानते हैं।
1: सही बात है।
2: मैं चाहता हूँ कि कालिदास और विक्रमादित्य के माध्यम से वे अपने भारत के गौरवशाली अतीत को जानें और उस पर गर्व करें।
1: पंडित जी, अब आपके मन में क्या है?
2: हम अपने स्तर पर तो कालिदास समारोह मनाते ही हैं, परंतु हमारे प्रयासों से अब चीन और रूस में भी ये समारोह हो रहे हैं।
1: अच्छा।
2: और मैं चाहता हूँ हमारे देश में हर वर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया जाए। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इसका धूमधाम से आयोजन हो।
1: ये तो बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी आपने।
2: और इसलिए हम चाहते हैं कि अगले वर्ष इसके उद्घाटन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया जाए।
1: बिल्कुल सही।
3: व्यास जी के विचार का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कालिदास समारोह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए।
0: परिणाम ये हुआ कि व्यास जी द्वारा 1928 में उज्जैनी में शुरू किए गए कालिदास समारोह ने 1958 तक आते आते केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कालिदास समारोह का रूप ले लिया। 1958 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था,
4: महाकवि कालिदास की बात करने के बाद कालिदास समारोह का आयोजन करना और इस बात की चिंता करना कि प्रतिवर्ष उज्जैनी में वो समारोह मनाया जाए, इसके लिए किसी सूर्य नारायण व्यास की आवश्यकता थी।

0: उज्जैन के लेखक और पत्रकार डॉक्टर शिव शर्मा।
1: महाकवि कालिदास को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उनकी स्मृति को अक्षुण बनाने के लिए। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एक संगारिक कवि कालिदास, जो उन दिनों में उपेक्षित हुआ करते थे, उनका अलग जगाया। वो बताया कि ये विश्व की महान धरोहर महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं।
2: व्यास जी के प्रयासों से सोवियत रूस में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट निकला। बाद में उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में भी 1958 में महाकवि कालिदास पर डाक टिकट जारी हुआ।
0: व्यास जी की प्रेरणा से प्रकाश पिक्चर्स ने 1942 में पृथ्वीराज कपूर को लेकर सम्राट विक्रमादित्य फीचर फिल्म का निर्माण किया। इसके अलावा भारत भूषण और निरूपा राय को लेकर उन्होंने कवि कालिदास फिल्म का निर्माण कराया। इन दोनों फिल्मों को दर्शकों ने इतना सराहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने गोल्डन और कवि कालिदास ने सिल्वर जुबली मनाई।
3: आगे तुमको मित्र मिलेगी कुरुक्षेत्र की भूमि विशाल, महाभारत के महायुद्ध की जहाँ जली थी एक दिन ज्वाल, कोटि कोटि जहाँ बरस पड़े थे विपुल पर अर्जुन के बाण, कमल दलों पर बरसे ज्यों तेरी बरखा के अगणित बाण।
0: फिल्म कवि कालिदास के आरंभ में ही निर्माता ने व्यास जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
4: उजिंद फिल्म अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्य

0: सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है।
1: व्यास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक तरफ जहां उन्होंने चिंतनपूर्ण लेख लिखे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हास्य व्यंग की गुदगुदाने वाली अनूठी रचनाओं का भी सृजन किया। ये उनके व्यक्तित्व की विविधता ही थी कि जहां उन्होंने कालिदास और विक्रम पर गंभीर शोध करने वाली संस्था कालिदास परिषद की स्थापना की, तो वहीं उन्होंने हास्य व्यंग के हर वर्ष होने वाले टेपा सम्मेलन को भी जन्म दिया।
2: व्यासाचार्य के उपनाम से उनका पहला व्यंग संग्रह तूतू मैं 1935 में प्रेमचंद ने प्रकाशित किया। इसी नाम से उनके अन्य कई संग्रह प्रकाशित हुए। उनकी व्यंग रचनाएं श्वान प्रबंध, एक और डॉक्टरेट और वसीयतनामा हिंदी व्यंग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। व्यंगकार पिलकेंद्र अरोड़ा।
3: कई व्यंग इतने पठनीय हैं और कालजयी हैं कि उन्हें बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। जैसे मूर्ति का मसला या आंखों देखी मौत, डॉक्टरेट की डकार, एक उनका व्यंग है मेरी साहित्यिक यात्रा। ये ऐसे व्यंग है कि उनको बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। ये उनके सारे व्यंग शाश्वत थे, यानी वर्ष 1936 में जो व्यंग प्रासंगिक और रंजक थे, वे आज भी उतने ही रंजक और उतने ही प्रासंगिक हैं।
2: अटल बिहारी वाजपेयी उनकी व्यंग प्रतिभा से बहुत प्रभावित रहे।
4: उनके गंभीर लेखन के बारे में, चिंतन के बारे में लोग जानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यंगकार के नाते वो किस तरह से चोट कर सकते थे मगर उस चोट को सहलाते भी जाते थे, ये कला उन्हीं में थी। और सिनॉप्सिस का मैं एक अंश पढ़कर आपको सुनाता हूँ। गधे का ऐतिहासिक सांस्कृतिक अध्ययन, और फिर ब्रैकेट में नीचे लिखा है समाजवादी दृष्टिकोण से।
2: यूं तो पंडित जी ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है, किंतु काव्यानंद उनका स्थायी भाव था। वे केवल रसानंद की प्राप्ति के लिए कविताएं लिखते थे। सभी कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में उनकी कविताएं चाव से सुनी जाती थीं।
5: काव्य रसिक श्रोताओं, काव्य पाठ के लिए अब मैं ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिसे आपने जब भी सुना है दिल खोल कर सराहा है। तालियों से स्वागत कीजिए पंडित सूर्य नारायण व्यास का।
6: भाइयों और बहनों, पिछले दिनों हमारे पड़ोसी देश चीन ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण किया। इसी पर प्रस्तुत कर रहा हूं यह सिंहनाद। सावधान, सिद्धांतहीन विश्वासहीन ओ चीन, शुद्ध बुद्ध के अनुयायी तुम करते कुटिल मलिन। निकट नाश को किया निमंत्रित, हिम को आज तपाया, राष्ट्र सिंह को भरी नींद से छेड़ा और जगाया। हिमगिरी की चोटी पर चढ़कर आज हमें ललकारा, भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा। भारत के सिंहों जागो, यह है हिमशैल हमारा।
2: व्यास जी जीवन में कभी सम्मान के पीछे नहीं भागे, किंतु ये उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था कि उनके जीवन में सम्मान की कभी कमी नहीं रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति और विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट से अलंकृत किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया। 1958 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।
7: पंडित जी, अरे पंडित जी, मैंने सुना है कि सरकार सभी स्वतंत्रता सेनानियों की सूची बना रही है। सुना है इनको ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और सभी को पेंशन दी जाएगी।
8: अच्छी बात है।
7: क्या आप अपना नाम क्यों नहीं लिखवा देते, आपको भी?
8: अरे वो तो ठीक है, पर हमने आजादी के आंदोलन में इन सब के लिए भाग नहीं लिया था। ये हमारी

0: आजादी की लड़ाई थी, हमें आजादी मिल गई, अब ये सब किस लिए? मेरा मन नहीं मानता, मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है।
1: अरे पंडित जी,
0: हाँ, आत्मविश्वास ही सदैव मेरा प्रेरक रहा है। संघर्ष और संकट में भी इसने सदा मेरा साथ दिया है, यह अब भी मेरे साथ है।
1: पंडित जी, सारी दुनिया पुरस्कारों सम्मानों के पीछे भागती है, और एक आप है कि आपने मिला हुआ पद्म भूषण सम्मान लौटा दिया, आप समझते क्या हैं?
0: देखो मित्र, आप तो जानते हैं कि मान सम्मान प्रतिष्ठा से मैं सदैव दूर भागता रहा हूँ, पर वो मिलती रही है। उससे अंतर में आनंद अवश्य हुआ, पर उसे मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
1: अरे पंडित जी
0: सुनो, रही बात पद्म भूषण सम्मान लौटाने की, तो सुनो, ये सम्मान मुझे हिंदी और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए दिया गया था, पर अब जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग ही नहीं हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने सम्मान लौटा दिया। सीधी सी बात है।
2: व्यास जी का ज्योतिष ज्ञान भी सर्वविदित था। इसका ज्ञान उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। अपने समय में वे ज्योतिष के सर्वोच्च न्यायालय और ज्योतिष सूर्य कहलाते थे। देश की स्वतंत्रता से पहले वे 144 राज्यों के सम्मानित राज्य ज्योतिषी भी रहे। पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी।
3: प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उसकी दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत उन्होंने प्रणयन किया, विस्तार किया और उसको शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित किया।
2: पद्म भूषण शिवमंगल सिंह सुमन मानते हैं कि विश्व में भारत के ज्योतिष को स्थापित करने का पूरा श्रेय व्यास जी को जाता है।
4: भारतवर्ष में काल की गणना यहीं से हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो यह कर्क रेखा गुजरती है, जो ग्रीनविच का महत्व था वही महाकाल का महत्व था, और इसमें तानिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसका सारा श्रेय सुनाम धन्य सुनान जी व्यास को।
5: पंडित जी जीवन भर समाज और साहित्य की सेवा करते रहे। अपने घर परिवार के लिए वे समय ही नहीं निकाल पाए। उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी व्यास ने अपने पुत्रों को पंडित व्यास जी की धरोहर संजोकर रखने के लिए प्रेरित किया। उनके सबसे छोटे पुत्र राजशेखर व्यास उनकी धरोहर के सच्चे उत्तराधिकारी बने।
6: दार्शनिक और दृष्टा तो थे ही, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, विद्वान थे अपने युग के। उन्हें मालूम था हमारा देश तो आजाद होना है, और इसकी वे भविष्यवाणी कर चुके थे आज अखबार में 1924 में कि 47 में भारत आजाद होगा। पर वे जानते थे कि हमारे सारे राजनेता विदेशों से पढ़कर आए और उन सबकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई है, इसलिए वे शेक्सपियर तो कहते हैं मानसिक गुलामी से शायद ही मुक्त हो, सांस्कृतिक दासता से शायद ही मुक्त हो। इसलिए वर्ष 28 से पंडित जी ने इस राष्ट्र को कालिदास एक चरित्र दिया, रंगमंच की आधारशिला दी और उज्जैनी में अखिल भारतीय कालिदास समारोह शुरू किया हमें मानसिक दासता से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक यही बात मुझे लगती उनके विक्रम के साथ है। हमें अंग्रेजी इतिहासकारों ने पढ़ाया कि हम गुलाम, शोषित, पीड़ित, पराभूत, हारे थके जुआरी रहे हैं, लूटे पीटे लोग। हम 1857 के गदर में हारे, हम अंग्रेजों से हारे, हम मुगलों से हारे। नहीं, पंडित जी ने कहा कि हमारे पास एक चरित्र है विक्रम, जो हमारे पराक्रम का प्रतीक है। और उन्होंने विक्रम के नाम पर मंदिर और मठ नहीं बनवाए, उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय का निर्माण करा, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाई, विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया, विक्रम पत्र का संपादन किया और हमारे सोए हुए पराक्रम को जगाने का उपक्रम किया। मुझे बराबर लगता है कि आत्मविश्वास से हीन एक पूरी की पूरी पीढ़ी को उन्होंने आत्मविश्वास से भरपूर जीवन देने के लिए विक्रम का नाम लिया।
5: पंडित जी के व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय और आजादी के बाद देश के शीर्ष नेताओं, राजनेताओं, विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों और कलाकारों

0: 22 जून 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर एक डाक टिकट जारी किया।
1: जहां तक व्यास जी का प्रश्न है, ज्ञान और कर्म दोनों का पूर्व समन्वय था। व्यास जी केवल वहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और भी संस्थाओं का निर्माण किया। वे स्वयं में एक संस्था थे, उनकी संस्थाएं आज भी उनके नाम की कीर्ति पताका फहराती हुई अपना असर डाल रही है।
2: समस्त विश्व को साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष के ज्ञान का प्रकाश देने वाला ये सूर्य 22 जून 1976 को अस्त हो गया। चौंका देने वाली बात यह रही कि ज्योतिष के महापंडित इस कवि ने अपनी मृत्यु का पूरा दृश्य अपने लेख आंखों देखी मौत में बरसों पहले प्रस्तुत कर दिया था। मृत्यु के पूरे भाव 11 वर्ष पहले अपनी एक कविता नाविक में पहले ही व्यक्त कर दिए थे।
3: नाविक मेरे हृदय सिंधु में उमड़ रही है लहरे, तू ले जाता है कुछ निकट है, मैं जाता हूँ गहरे। पथ में अगणित भंवर पड़े हैं, आंधी और तूफान, रहने दे जीवन नौका को, अब मत लगा सहारा। इस जगत में एकाकी है जीवन सखे हमारा, इस जगत में एकाकी है जीवन सखे हमारा।
0: कहने को तो मेरे यानी उज्जैनी के प्रांगण में उदय हुआ साहित्य, संस्कृति और ज्योतिष का ये सूर्य अस्त हो गया है, किंतु इसके प्रकाश में मालवा में शिक्षा, संस्कृति और संगीत के जिन गौरवशाली स्तंभों का निर्माण हुआ है, वे युग युगांतर तक इनका गौरव गान करते रहेंगे।
2: मालवा की धरा पर इस सूर्य के प्रकाश में वैभव, पराक्रम और स्वाभिमान के जो पृष्ठ लिखे गए, वे इसके स्वर्णिम इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो गए। स्वाभिमान का ये सूर्य सदा अमर रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे महाकाल नगरी उज्जैनी की सांस्कृतिक चेतना के सशक्त संवाहक पद्मभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रस्तुत रूपक हमने सूरज को चलते फिरते देखा था का पुनः प्रसारण। वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, नाट्यांश कलाकार मिलिंद देश पांडे, अभिनय श्रीवास्तव, नवीन कुमार गुप्ता और दीपा चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, सहायक हरदीप सिंह, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। आकाशवाणी इंदौर के सहयोग से केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण जून 2018 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया था।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे विशेष रूपक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे उर्दू विभाग का कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: लिख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ।
1: ये आपका जो पहला इश्क था वो शायरी से था।
0: जी, इब्तिदा शायरी से थी।
1: इस पर हम शायरी से इश्क पर और दूसरे किस्म के भी इश्कों पे हो सकता है बात करें अगर मौका रहे तो।
0: जी
1: लेकिन आपने जिक्र किया जिन दो शख्सियात का जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया
0: जी
1: आलमी सतह पे जानती है, वो हैं काजी अब्दुल वदूद और
0: कलीम
1: कलीमुद्दीन
0: उद्दीन
1: अहमद
0: अहमद साहब
1: साहब।
0: जी।
1: इन दोनों के बारे में कहा जाता है खुश्क मिजाज थे और बहुत बहुत लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे। आपका तजुर्बा कैसा रहा था इन दोनों
0: जी,
1: शख्सियात का?
0: असल में आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। हम चाहते भी थे कि ये सवाल आप करें, और न करते तो भी मैं कोई सूरत निकालता। कलीमुद्दीन अहमद साहब के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ
1: जी
0: पाई जाती हैं, जैसे उसमें एक गलत फहमी वो भी है कि
1: जी
0: वो लोगों से घुलते मिलते नहीं थे, और बल्कि बहुत कम सुखन थे। यानी यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि वो आलिम सुरूर साहब मिलने आए, उनसे तो कोई आधा घंटे तक वो कुछ कहते रहे, और करीम साहब बस हाँ या ना में जवाब देते रहे। अपनी
1: जी
0: तरफ से उन्होंने चार जुमले भी नहीं कहे। तो मैं बहुत एतमाद के साथ इसकी तर्दीद करता हूँ, लेकिन मैं शायद पहला और आखिरी आदमी था कि मुझको उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, और वो इंटरव्यू रिकॉर्डेड भी मेरे पास मौजूद है, ताकि ये कोई रिकॉर्ड नहीं
1: सनद
0: किया
1: रहे
0: मैंने,
1: बिल्कुल।
0: सनद है। और उसी जमाने में वो छप भी गया था किताब नुमा में, और काजी साहब भी गालबन पहले वो आदमी हैं, आखिरी नहीं है, और भी लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिए हैं कि जिन्होंने मुझको इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू भी मेरे पास रिकॉर्डेड भी है और उसकी तस्वीर भी है। तो असल में बात ये थी कि सिर्फ एक बात दोनों के हवाले से अर्ज करूं कि कलीमुद्दीन अहमद
1: जरूर
0: साहब जो हैं वो कम आमेज तो थे और कम गो भी थे, मगर वो मौजूआत की बात थी। मुझको ऐसा एक लगता है कि गोया कुछ नफसियाती तौर पर वो मेरे जैसे लोगों को या इस तरह के लोगों को अपने इल्म की सतह पर समझते नहीं थे। इसलिए जब आप उनसे अदब पर गुफ्तगू करें या फिर उनकी बातें दोहराएं कि उर्दू शायरी में आशिक की मोहम्म कमर है, गजल नीम वहशी सिन्फ सुखन है, वगैरह वगैरह, तो वो खामोश हो जाते थे।
1: जी
0: लेकिन मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि अगर आप अदब के अलावा दीगर मौजूआत पर उनसे गुफ्तगू करें, मसलन ये कि एक दिन, अनबिलीवेबल बात है, लेकिन एक दिन मैं गया तो उन्होंने खुद ही, जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि आपने सुना है दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी कर ली है। तो
1: अच्छा
0: हमको बहुत हैरत हुई कि भाई कहाँ कलीमुद्दीन, और ये नहीं हमको इत्तला दे रहे हैं इससे मेरी।
1: जी
0: उसके बाद हम बैठ गए। तो अगर आप उनसे फिल्म पर गुफ्तगू करें या अदब पर भी उनकी अपनी तहरीरों के अलावा दीगर मौजूआत पर गुफ्तगू करें,
1: जी
0: तो मेरा तजुर्बा है कि वो करते थे, कम करते हो लेकिन आधा आधा घंटा गुफ्तगू
1: लेकिन ये
0: करते थे।
1: उनकी शख्सियत का बड़ा दिलचस्प
0: हाँ,
1: और हैरानकुन पहलू
0: हैरानगुन
1: है।
0: पहलू है ये
1: एक शख्स
0: क्या।
1: इतना एहसास नाकिब जिसे हम कह
0: हाँ
1: सकते हैं, कई जुमले उनके मशहूर हुए,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आप उन्हें मशहूर कह लें बदनाम कह लें जो भी कह
0: जो
1: लें,
0: कह
1: लेकिन
0: लें
1: उन जुमलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, झिंझोड़ा, और अदब के बारे में कई नई इस्तिलाहें और नई तराकीब वज़ा की गई उन चीज़ों को डिफेंड करने के लिए भी और उनको आगे पहुंचाने के लिए
0: जी।
1: भी। अच्छा, काजी
0: लेकिन
1: अब्दुल वदूद साहब के
0: अच्छा,
1: बारे में
0: काजी
1: क्या
0: अब्दुल
1: ख्याल
0: वदूद
1: है?
0: साहब, कलीम साहब तो खैर अदब पर कुछ गुफ्तगू कर भी लेते थे
1: जी
0: अपनी तहरीरों के अलावा,
1: अपनी तरह ये अच्छी बात
0: अपनी
1: होती है।
0: तहरीरों के अलावा। यानी आप शायरी पर,
1: जी
0: उनको
1: जी
0: कोई शेर अच्छा लगता था तो तारीफ भी करते थे
1: जी
0: किसी का शेर, यानी इवन बशीर बदर के शेर की तारीफ कर देते थे कि हाँ ये शेर अच्छा है भाई।
1: अगर बशीर बद्र सुन
0: हाँ
1: रहे होते तो बहुत खुश होते।
0: बहरहाल, लेकिन ये कि काजी साहब जो है वो बहुत रख रखाव के आदमी थे, और वो मिलते भी थे। मसलन एक वाकया आपको सुनाते हैं
1: जी
0: कि मैं गया तो वो बैठे हुए थे और बहुत बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करते थे दीगर मौजूआत पर, चूंकि हम
1: काजी अब्दुल वदूद
0: काजी
1: साहब।
0: साहब भी हमसे,
1: जी
0: अब वो इनकी खास इनायत थी या जो भी थी।
1: जी
0: तो बहरहाल मैं गया तो मैंने सलाम करने के बाद हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप सामने बैठ जाएं, मेरी ख्वाहिश होगी तो मैं खुद हाथ मिला लूंगा।
1: अच्छा बेहतर,
0: ये जो तंबीह थी,
1: क्या कहने।
0: ये अंदाज उनका था अपना, लेकिन अदब के मौजूआत पर वो गुफ्तगू करते थे। कलीम साहब अदब के मौजूआत पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते
1: अच्छा
0: थे, ये
1: एक
0: फर्क
1: एक
0: है।
1: चीज माफ
0: हाँ
1: कीजिएगा, मैं
0: जी
1: खता
0: जी
1: कलाम हो रहा है कि कलीम साहब क्या अदब के मौजूआत पर गुफ्तगू करने से बचते थे या उनकी अपनी तनकीद के हवाले से गुफ्तगू करने से
0: अदब के
1: बचते थे?
0: मौजूआत पर भी गुफ्तगू करने से बचते थे, उससे भी बचते थे, जो मेरा अपना तजुर्बा है।
1: ये वैसे
0: हाँ,
1: बहुत जानने वालों को या सुनने वालों को
0: हाँ
1: इस पर देखकर
0: हैरत होगी,
1: हैरानी
0: हाँ
1: होगी।
0: बेहद हैरानी होगी कि वो समझते हैं कि वो किसी भी मौजू पर गुफ्तगू नहीं करते थे, मगर आप स्पोर्ट्स के मौजू पर उनसे गुफ्तगू करें, फिल्म के मौजू पर गुफ्तगू करें, या शहर में क्या हो रहा है,
1: जी
0: किसने किसके बारे में क्या कहा है, तो ये सब सुनते थे वो, और जवाब भी देते थे और उसमें हिस्सा भी लेते थे। और काजी साहब उनके मुकाबले में ज्यादा सख्त गिर थे। खाने में, रहने में, पहनने उठने में, मतलब ये कि मैं कई बार जमील मजहरी साहब के साथ या अहमद जमाल पाशा साहब के साथ, मरहूम के साथ, गया काजी साहब से मिलने,

0: ने फौरन जमील मदरी साहब को टोका कि भाई ठीक से खाइए, तो काजी साहब बहुत इत्मीनान एक रोटी उठाते थे, उसको बड़ा सलीके से तोड़ते थे, और जमील साहब शायर, तो उन्होंने टोक दिया कई बार कि भाई जमील भाई ठीक से खाइए बैठ के, या अहमद जमाल पाशा ने कोई कोई गुस्ताखाना जुमला कहा तो उन्होंने उसकी फौरन नोटिस लेते थे।
1: वो मिजाहनगार थे जाहिर है, वो बहुत संजीदा तो रह नहीं सकते,
0: मगर काजी साहब जो है वो बहुत संजीदा रहते थे, ये समझ लीजिए कि वो लूज टॉक करते ही नहीं थे, ये एकदम तय है। बात करते थे, खूब बात करते थे दोनों, बिल्कुल इस मामले में इज्तिमा जिद्दैन कही कि मतलब ये काजी साहब गुफ्तगू की ये तो 20-20 मिनट गुफ्तगू करते थे, अदब पर भी, कलीम साहब अदब पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वैसे कभी करना पड़े तो करते थे। ये बातें हैं, बाकी कहा जाता है कि काजी साहब की जो तहकीक है वो बहुत ओरिजिनल नहीं है, दूसरों के ऐब निकालने में ज्यादा दिलचस्पी वो लेते हैं, अपनी तहकीक कम करते हैं, इसलिए रजा नकवी भाई साहब ने उनका मतलब अपनी नज्मों में मजाक भी उड़ाया है, और काजी साहब वो नज्में पढ़ते थे और लुत्फ लेते थे। मसलन ये कि ये जो एक हजरत चले आते हैं गोरिस्तान से, ये न समझे आप हैं बेजार अपनी जान से, वो आपने नुक्ते गिने हैं मीर के दीवान के, और 7:05 में या 7:07 में शाद ने तोड़ा था दम गोद ने मुन्नी जान के। और ये तहकीक के मसले, ये मजाक उड़ाते हैं उनका कि मतलब ये तहकीक की किस्म की खुर्दागिरी है, मकाई साहब लुत्फ लेते थे इससे।
1: जाहिर है, देखिए जहन में जो कुछ भी रहा हो, भाई साहब की जिस नज्म का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत उम्दा नज्म है वाकई, कि तहकीक में जो बुनियादी चीज होती है और उसको किस तरह से मिजाह और तंज के पैकर में ढाला जा सकता है, ये बहुत उम्दा कोशिश थी उनकी। ये और बात कि उनके जहन में काजी साहब हो या ना हो,
0: ना हो
1: एक आजाद, उन्हें एक इंडिपेंडेंट नज्म के तौर पर भी पढ़े हम तो
0: भी लुत्फंदोज हो सकते होते हैं। तो असल में हम यही कह रहे थे भाई नुमान साहब कि वो जमाना ऐसा था कि इतने मशाहिर जमा हो गए थे, इतने नाम कि मसलन जैसे हमने रजा नकवी वाही का जिक्र किया, ये सब हम असर लोग हैं, जमील मजहरी का जिक्र किया कि जो कहा करते थे कि कमबख्त ये मेरा शेर जो है वो मुझसे ज्यादा मशहूर हो गया है कि बकदरे पैमाने तखयल सुरूर हर दिल में है खुदी का,
1: अगर ना हो ये फरेब पैहम
0: तो दम निकल जाए आदमी,
1: दम निकल जाए आदमी का। लेकिन जमील साहब इन हजरात से पहले उनका
0: रुखसत हुए,
1: पहले रुखसत हुए शायद,
0: नहीं ये सब कंटेम्पररी ही हैं, सबसे बाद में रजा नकवी वाही,
1: सबसे बाद में रजा नकवी वाही साहब हुए और
0: ज्यादा उम्र पाई उन्होंने।
1: हाँ
0: जी, और कलीम साहब और काजी साहब ये सब थे, कलीम साहब के थोड़ा बाद काजी साहब का इंतकाल हुआ, जमील साहब का भी उसी जमाने में। और एक बात हम और जमील साहब के हवाले से कहा करते हैं, कहीं कहीं शायद इसका जिक्र आया है कि जमील साहब जो है वो तफरीही तौर पर या कहिए कि रिलैक्स होने के लिए जासूसी दुनिया पढ़ा करते थे, और ये खुद मैंने उनको कि वो अपना दोनों पांव उठा के कुर्सी पर बैठ जाते थे, उकड़ू बैठना और जो है जासूसी दुनिया लेके पढ़ा करते थे, और कभी कभी आप उनसे गुफ्तगू कीजिए तो वो उसके हवाले से गुफ्तगू भी कर लेते थे उस नॉवेल के कि इसमें ये हुआ है
1: जी।
0: ये गालिबन बाकी दोनों हजरात के यहाँ, कलीम साहब के यहाँ, काई साहब के हमने नहीं देखा,
1: उनके यहाँ नहीं था। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ बरसों का अगर जिक्र करूं तो इसमें इब्ने सफी पर काफी संजीदा लोगों ने, अहम लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, और जैसे हमारे यहाँ एक उर्दू में ये ट्रेंड रहा है कि जासूसी अदब को तीसरे दर्जे का अदब ट्रैश भी समझा जाता है, जबकि मगरबी अदब में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये रियलाइजेशन या ये इदराक काफी बाद हुआ है, चूंकि एक पूरी नस्ल है जो इब्ने सफी को पढ़ के बड़ी हुई है, और बल्कि अगर उन्होंने उर्दू ही इब्ने सफी से सीखी है तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन एजाज अली अरशद साहब, अब हम एक दूसरी नहज पे आते हैं जहां आपसे जिक्र हो रहा था कि आपका पहला इश्क शायरी है, लेकिन आपने जो थीसिस लिखी वो भी आपने फिक्शन पर लिखी, आपने आपकी जो किताबें आई वो भी नसर में आई, तो ये कैसा इश्क है, वफा किधर कर रहे हैं? और
0: नहीं, असल में ये है कि हमने वो आगाज किया था, वो माहौल ही ऐसा था कि उस माहौल में कोई शख्स शायरी से बेनियाज रह नहीं सकता था
1: जी।
0: देखिए, बाज लोग जो बहुत गैर मारूफ रहे, गोया कहिए कि फरामोश करदा, जैसे हमने एक नाम आपके सामने लिया था अभी, होश अजीम आबादी का, अब उनका 5 शेर भी कोई नहीं शायद सुना सकता हो, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे अशार उन्होंने कहे। मसलन आपको देखते हैं कि इसमें देखिए क्या तख्लीकी शान है, अकीदा अपनी जगह पर है मगर अकीदा शेर कैसे बनता है
1: जी,
0: तो इसको देखिए या हमारे सामईन देखें कि मसलन करबला के हवाले से कह रहे हैं कि यहीं से अर्जो समा फैज याब होते हैं,
1: यहीं से
0: अर्जो समा फैज याब होते हैं, हयात देती है पहरा हुसैन सोते।

0: वाह,
1: क्या देखिए ये जो तखलीकी बयान है, या एक और शेर आपको बताते हैं। हर आदमी जानता है कि हजरत अली अकबर जो हैं हम शक्ल पैगंबर थे, लेकिन देखिए शायरी कैसे बन जाता है अकीदा। कहते हैं कि जब चले शेवए रफ्तारे नबी दिखलाकर,
0: जब चले शेवए रफ्तारे
1: नबी दिखलाकर, जाग उठी शहर की गलियां वही आहट पाकर।
0: क्या क्या,
1: अब ये गलियों का शहर की जागना वही आहट पाके जो रसूल के कदमों की आहट थी। अब ये है तखलीक। एक और शेर उनका देखिए, बिल्कुल नए नहज का, के हर फूल की किस्मत में कहां नाजे उरूसां, हर फूल की किस्मत में कहां नाजे उरूसां, कुछ फूल तो खिलते हैं मजारों के लिए भी।
0: वाह,
1: अब देखिए कि ये जो नहज है सो फिक्र की। या जैसे एक और शेर याद आ गया कि मुरादे कुनफा यकू हैं हुसैन इब्ने अली, मुरादे कुनफा यकू हैं हुसैन इब्ने अली, ये कायनात तो है जेबे दास्तां के लिए।
0: क्या कहने,
1: तो अब ये जो अशार हैं इनमें जो तखलीकियत है, इससे हम लोग कैसे बचते। उसी वक्त मैंने और भी शुरा थे, काजिम हुसैन जार अजीम आबादी थे, मरसिए का, और उसका तो एक सिलसिला था, मजलिसें होती थी जिसमें हम लोग शरीक होते थे, तो वहां से बहुत कुछ सीखते थे
0: जी।
1: तो इसलिए वो जो था वो हम ही तो नहीं कहते कि नादानी का इश्क था, लेकिन वो इश्क था कुछ के, वो हुस्न था ऐसा कि जिस पर आशिक था आदमी। गजलें हम अब भी कहते हैं, मगर ये कि जब हम यूनिवर्सिटी में आ गए तो कहिए कि कुछ लगा कि शायद शायरी संजीदा अमल नहीं है।
0: आपकी यूनिवर्सिटी में जो अदबी तंजीम थी गालिबन बज़्मे अदब,
1: बज़्मे अदब थी,
0: बड़े फंक्शंस किए हैं,
1: बहुत फंक्शंस,
0: काफी धूमे मचाई,
1: काफी धूम रहती थी, और हर साल मुशायरा होता था। और सबसे बढ़ के जो चीज खत्म हो गई
0: जी,
1: कि एक स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए तहरीरी मुकाबले होते थे जिन पर इनामात दिए जाते थे
0: जी।
1: अब हमारे यहाँ के फंक्शन में, यानी उस जमाने में, बेकल उत्साही से या नशूर वादी से, और खुमार बारा मंकवी और नशूर वादी से लेके हफीज बनारसी से लेकर के और कलीमाजिज तक, बल्कि बशीर बद्र तक, तमाम शायरों को हम लोगों ने बहुत, यानी अब बड़े बड़े, अब हजारों हजारों पहलू में, लेकिन उस जमाने में मशाहिर को बुलाते थे, मजरू साहब को, सबको बुलाया, बज्म उर्दू और बज्म अदब, बी एन कॉलेज में और पटना कॉलेज में दो अंजुमने थी, और इसमें ये सब लोग आते थे। मुझे ऐसा भी मुशायरा याद है कि जो शाम को 4 बजे से बारिश हो रही थी, और उसमें बेकल उसाही साहब और बशीर बद्र साहब पहुंचे तो पूरे जिस्म से भीगे हुए थे एकदम पानी में। हमने कहा कि भाई आप ये कहाँ चले आए मुशायरे में, लेकिन वो आए, उसके उन्होंने कपड़ा वपड़ा तब्दील किया, फिर मुशायरे में शरीक हुए। तो ये सूरतें थी, और वही पटना सिटी का एक अजब माहौल था, हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं
0: जी।
1: उसकी वजह से शायरी की तरफ मुतवज्जे होना ही था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया तो फिर अख्तर साहब नाकिद भी थे, कलीमुद्दीन अहमद साहब नाकिद भी थे, तो फिर हमने तनकीद की तरफ तवज्जो की, और उसमें फिक्शन, इसमें शक नहीं है, शायरी पर भी मैंने लिखा है, मैंने उर्दू शायरी के चंद जाविये मेरी किताब है
0: जी,
1: उर्दू फिक्शन के चंद जाविये भी मेरी किताब है, तो शायरी पर भी मैंने लिखा है और फिक्शन पर भी लिखा है, कसीदों पर भी लिखा है और मरसियों पर भी लिखा है, कुछ चीजों पर नहीं भी लिखा है, जैसे दास्तान पर नहीं लिखा है। और अब आखिरी बात, के वो जो जराफत है या विट है जिसको बुजल संजी कहते हैं, वो मेरा मिजाज है, इसलिए मैं तनकीदें भी लिखता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई दो जुमले ऐसे आ जाते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद ये तनकीद के मिजाज के मुताबिक नहीं।
0: नहीं, आपके अंशाइयों की किताबें आ चुकी हैं,
1: हाँ, और वो दाखिले निसाब भी हैं,
0: हाँ, दाखिले निसाब हैं, तो और एक जमाने में अंशाइये काफी लिखे जाते थे, बल्कि मैं इत्तेफाक से अभी आपसे जिक्र हो रहा है, तो मैं अब ये देखता हूँ कि तंजो मिजाज का जो मैयार है और मिजाज है, उसमें जो इब्तिज़ाल आया है
1: या
0: सतही पन आया है, वो उससे कता नजर इंशाइये अब तकरीबन नहीं लिखे जा रहे हैं, इसके क्या असबाब हो सकते हैं?
1: उसकी वजह खास ये है कि लोगों के जहन में डाइवर्सिटी अब रह नहीं गई है। जो आदमी जहां है, जिसको के एक दोहे में किसी ने कहा है कि गजब तुम्हारी नौकरी, सुबह 8 से 8 और 8 बरस के बीच में दोनों हो गए काठ।
0: क्या गया?
1: तो अब हस्बैंड और वाइफ भी दोनों जो है ना, वो जरा सा तजुर्बा है ही नहीं, तजुर्बा डाइवर्सिफाइड नहीं होगा
0: जी।
1: तो चीजों को आप एक दूसरे से मिलाएंगे कैसे?
0: ऐसा साथ मुर्दा हो जाते
1: हैं, कैसे कहेंगे कि उर्दू के फंक्शंस हो रहे हैं तो गोया पत्तियों पर छिड़काव हो रहा है? एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज नहीं होगा
0: जी।
1: तो इंशाइया क्या लिखिएगा? एक ही नहज पर आपकी फिक्र बह रही है, एक ही नहज पर सोच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सफर कर रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है वो आपको भी अंदाज है कि किस चीज के पीछे दुनिया भाग रही है
0: जी।
1: तो जब उसके पीछे भागिएगा तो मतलब वो कि बस उसको रख दीजिएगा, ढाक के कहिएगा कि यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, सब कुछ यही है, तो फिर दूसरी तरफ कैसे जाइएगा?
0: जाहिर है कि मादियत इंसान को अपनी तरफ खींचती है।

0: ने ठीक ही पकड़ लिया,
1: वो
0: हमने इशारतन
1: आप
0: कहा।
1: जब आज बच्चे देखिए, उनकी तरजीहात में अदब फाइन आर्ट्स
0: नहीं है,
1: नहीं है।
0: नहीं है,
1: आप किसी भी बच्चे को देखिएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना
0: वो
1: चाहता है, वो
0: बस
1: आईआईटी करना
0: आईआईटी
1: चाहता है,
0: करना चाहता
1: इसमें
0: है।
1: कोई बुराई नहीं है। जो वो चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आर्ट के पीछे कौन आएगा, उसके साथ कौन खड़ा होगा, ये एक बड़ा एक बहरान तकरीबन होता जा रहा है। हालांकि जो बच्चे अब भी फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखते हैं, या जिनकी तरबियत और जिनकी ज़हनी हम आहंगी फ़नून से है, वो आज भी फ़न के लिए अपने आप को डिवोट करते हैं, वक्फ करते हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भीड़ उतनी बड़ी नहीं है
0: ना
1: जैसी
0: उसमें एक
1: दूसरी
0: जुमला
1: जगहों
0: जोड़
1: पे है।
0: दें जो उन लोगों
1: जी
0: के लिए कि और उसमें भी मादी इम्कानात हैं।
1: हैं, बिल्कुल
0: अब यह है कि वो ओवर द नाइट ना हो।
1: हाँ, ज़ाहिर है वो एक
0: हाँ
1: अलग
0: हाँ
1: इशू है जिस
0: हाँ
1: पर गुफ्तगू हो
0: हाँ
1: सकती है।
0: मगर हैं उसमें, लेकिन लोग उधर जा नहीं रहे हैं और ये बहुत तश्वीशनाक बात है, इसलिए कि आर्ट तो आपकी पनाहगाह था,
1: जी
0: जो शायरी हो या अदब हो वो तो आपकी पनाहगाह था, जहां आप दुनिया के आलूदगी से बच के पनाह लेते थे। अब
1: जी
0: अगर वहां भी पोल्यूशन हो जाएगा या वहां कोई पनाहगाह रहेगी ही नहीं तो कहां जाइएगा।
1: बेहतर, सही सही
0: ये
1: फरमाया
0: सूरत
1: आपने,
0: है।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये आप एक अहम इदारा है बिहार उर्दू एकेडमी,
0: जी
1: जहां शायद सबसे पहले उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था, वहां आप हैं और वाइस चेयरमैन की हैसियत से हैं। ये बताएं कि बिहार में जो उर्दू की सूरत हाल है, उससे काफ़ी उम्मीदें अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूबों में पैदा होती हैं। आज भी हम महफिलों में जाते हैं या किसी सेमिनार में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि बिहार में उर्दू ने जो किया, देखिए ये हुआ। ये एक आउटसाइडर व्यू है, या आप वहाँ रहते हुए काम करते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई बिहार में जो कुछ हो रहा है उर्दू में, वो और कहीं नहीं हो रहा है, या क्या सूरत हाल है, असली सूरत हाल क्या है?
0: इसमें थोड़ा सा इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा है कि बास दूसरी रियासतों के मुकाबले में बिहार में उर्दू की सूरत हाल बेहतर है, और उसकी एक वजह ये भी है कि उस वो माश से भी जबान जुड़ गई है। जो उर्दू ट्रांसलेटर्स की और असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स की बहालियाँ हुई हैं
1: जी
0: मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में, तो वो कुछ ना कुछ तो लोग काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो उर्दू जबान है उसकी तालीम है उस पर असर पड़ रहा है। अब रहा सवाल उर्दू एकेडमी का, तो उर्दू एकेडमी अपनी हदूद में और रिवायती तौर पर रिवायती दायरों में काम करती है। सेमिनार है, सिंपोजियम है, मुशायरा है, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें शक नहीं है। जिलों से भी लोग आते हैं, तुलबा भी रहते हैं, लेकिन एक बात है कि बिहार में सिर्फ उर्दू एकेडमी नहीं बल्कि और कहते आ रहे हैं कि अगर उर्दू एकेडमियां अपने बजट का 25-30% भी उर्दू की तालीम के लिए वक्फ कर दें, और वो तालीम भी वो जो स्कूल की सतह से शुरू हो,
1: जी
0: तो बहुत बड़ी तादाद में उर्दू के जो नई नस्ल आ सकती है। क्यों? उसकी वजह है कि जो हमारे लोग हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उनके अलावा भी वैसे लोग भी जो उर्दू के लोग नहीं कहलाते हैं, यानी जो दूसरी,
1: जिनकी मादरी
0: हाँ,
1: जबान
0: जिनकी
1: उर्दू नहीं
0: मादरी
1: है,
0: जबान उर्दू नहीं है,
1: जी
0: वो भी उर्दू पढ़ना चाहते
1: पढ़ना
0: हैं,
1: चाहते हैं, बेशक।
0: पढ़ना चाहते हैं, मगर उनकी बड़ी तादाद कहाँ पढ़ती है? पब्लिक स्कूलों में पढ़ती है, और पब्लिक स्कूल 10 आदमियों के लिए उर्दू का एक टीचर बहाल नहीं कर सकते। अगर उर्दू एकेडमियां सिर्फ एक काम कर दें कि उर्दू की तालीम का पब्लिक स्कूलों में नज्म कर दें, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर दे दें। प्राइवेट तौर पर हमारे यहाँ
1: बहुत उम्दा बात कही
0: एक
1: आपने।
0: पंजाबी हैं, उन्होंने प्राइवेट तौर पर पटना के तीन, दो बॉयज स्कूलों में, एक गर्ल्स स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, जो सबसे टॉप क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, उसमें उन्होंने अपने खर्च से टीचर दे दिए हैं, एक एक टीचर हर स्कूल में। और आपको हैरत होगी ये जान के तभी लोगों को कि वहां बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम बच्चे भी उर्दू पढ़ रहे हैं,
1: बहुत उम्दा बात
0: और
1: कही
0: इसमें
1: आपने,
0: कोई सरकारी अदारे का कोई हाथ नहीं है।
1: कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल।
0: जब
1: मैं खुद इस बात को मानता हूं
0: जी
1: कि हम उर्दू वालों में ये एक बुरी चीज है कि हम हर बुराई के लिए किसी और को फौरन मुरीद इल्जाम ठहराते हैं और खुद को मुबर्रा कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि, लेकिन अगर आप जैसे सोचने वाले जहन मौजूद हैं किसी भी इदारे में, तो मैं दुआ करता हूं और मेरी ख्वाहिश है और मैं ये भी चाहूंगा कि आप जब तक वहां हैं, जो इरादा आपने जाहिर किया, खुदा आपको इस इरादे में कामयाब करे, और आपके जो हमकार हैं वो आपको तआवुन करें और आपको हमारी नेक ख्वाहिशात
0: हैं। हम एक चलते चलते आपको इतला दे दें बस एक मिनट में
1: जी
0: कि उर्दू एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बहरहाल ये फैसला

0: लिया है और उसमें महकमा अकलियती फलाह जो है हुकूमत बिहार का उसका तआवुन भी है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक लाइब्रेरी कायम करेंगे जहां कंप्यूटर्स की और जदीद उलूम के साथ साथ उर्दू की किताबें भी होंगी। और उसी तरह से ये भी फैसला करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक स्कूल में जो पब्लिक स्कूल है यानी मिशनरी स्कूल है उसमें हम उर्दू का एक टीचर देंगे।
1: बहुत उम्दा,
0: इसलिए आप दुआ कीजिए कि हम कामयाब हों
1: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह।
1: क्योंकि जिस बात की तरफ आपने भी ध्यान दिया वो बहुत अहम बात है कि हम सेमिनार करके मुशायरे करके और शोरा को अदबा को किताब पर इनाम देके और इमदाद देके छपवाने के लिए वो खिदमत हरगिज़ नहीं कर रहे हैं जिसकी हमसे तवक्को की जाती है। क्योंकि वो किताबें हम छाप के क्या करेंगे जब उन्हें पढ़ने वाला नहीं होगा। बुनियादी चीज़ ये है कि पहले हम उर्दू पढ़ने वाला उर्दू को समझने वाला पैदा करें, उसे तैयार करें और उसे हर वो सहूलत दें अगर वो सीखना चाहता है कि एक रीडरशिप तैयार हो। उसके बाद उन्हीं में लिखने वाले भी आएंगे, उन्हीं में मीर गालिब इकबाल और अब्दुल्ला हुसैन और कुरतुल्लाह हैदर भी पैदा होंगे। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें और बहुत अच्छे ख्यालात आपसे सुने और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आपको अपने मकसद में कामयाबी हासिल होने का इम्कान है उसी तरह पूरी उर्दू दुनिया को अपने नेक इरादों में कामयाबी मिले इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत जनाब एजाज अली अरशद से उनकी ये बातचीत सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगु थे जनाब नोमान शौक। प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआ पार, बुधपांक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड, बलंगीर, नौपाड़ा, गुनपुर, लांजीगढ़ रोड, जूनागढ़ और बोबिली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर के सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि तमिलनाडु के जल अधिकारियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

0: ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक हो रही है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग बटमोंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में हुए बदलावों से शासन और प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और गरिमामय बनाने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा करते हुए कहा कि जनता का विश्वास सुशासन की सबसे बड़ी पूंजी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवाद सत्र में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से कुछ लोगों की हालत बहुत गंभीर है। इस बीच अधिकारियों ने प्रतिकूल मौसम और बादल गरजने के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said that the changes that have taken place over the past 12 years have succeeded in strengthening people's faith in governance and administration. He added that it also played a crucial role in making the lives of millions of citizens more convenient, secure and dignified through public welfare schemes. The Prime Minister said this while sharing an article written by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal in a social media post. Mr. Modi further said that public trust is the greatest asset of good governance. The article written by Mr. Goyal highlights the journey of good governance, public welfare and the positive changes in the lives of the poor during the 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Modi. The BJP-led West Bengal government today presented its first full budget for 2026-27 with a strong focus on social welfare, infrastructure development and employment generation. The budget also announces several women-centric initiatives. Presenting a deficit budget of 6,070 crore rupees, Finance Minister Swapan Dasgupta described it as a roadmap for building a developed Bengal. He said the state's outstanding debt has crossed 8 lakh crore rupees, making financial discipline a key priority. The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting, being chaired by National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. We have a report.
2: During the meeting, the national security advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, non-traditional security challenges confronting the world.

पुत्री नीरज, आयु 18 वर्ष 6 माह, महिला, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077001749, थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम अफसा, पुत्री एहसान मोहम्मद, आयु 20 वर्ष, महिला, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरे पर तिल का निशान है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, नंबर है 9549503587 68। दूसरा नंबर भी है, कृपया इसे भी नोट करें, 7409214820। कृपया जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना अंकुर विहार, कमिश्नरेट, गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली सूचना प्राप्त हुई थाना विजयनगर, कमिश्नरेट, गाजियाबाद से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है शीतल, पुत्री श्रीमती सुमन, आयु 21 वर्ष, महिला, कद 5 फुट 2 इंच। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना विजयनगर, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना ट्रॉनिका सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम नजमा, आयु 18 वर्ष 6 महीने, स्त्री, कद 5 फुट 3 इंच, बाएं हाथ की कलाई में जलने का निशान है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो उनके लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये घोषित की गई है। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना ट्रॉनिका सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना वेब सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का नाम शिवानी, उम्र 16 वर्ष, महिला, कद 5 फुट 5 इंच, मोबाइल नंबर है 8368699094, अगला नंबर 8400749609, थाना वेब सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त है ट्रॉनिका सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का नाम भारती, पुत्री अजय कुमार, उम्र 20 वर्ष, महिला, कद 5 फुट, थाना ट्रॉनिका सिटी, कमिश्नरेट, गाजियाबाद। और आखिर में सूचना प्राप्त हुई थाना शादरा, दिल्ली से, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति पुरुष 31 मई 2026 को शादरा बस टर्मिनेट में बेहोशी की हालत में पाए गए। इनका कद 5 फुट 5 इंच। इनसे संबंधित किसी भी को भी जानकारी लेनी हो तो कृपया थाना शादरा, दिल्ली में संपर्क करें। और ये थी अब तक की खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं की जानकारी का। और अब ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है युवाओं से जुड़ा मनोरंजन और रोचक बातों से जुड़ा लाइव रेडियो कार्यक्रम युववाणी।

0: question for you before we start. And you have to be honest, please. Did you do yoga yesterday?
1: देखिए आंचल, अगर झूठ बोलूंगा तो कहूंगा हाँ, लेकिन सच तो यह है कि आंचल, अक्सर मेरा योग बस इतना रहता है कि मैं बस सुबह उठा, योग करने का पूरा मन तो बना लेता हूँ, फिर ना जाने कहाँ से हाथ में फोन आ जाता है और मैं योगा मैट पर ही लेट जाता हूँ, और वो भी पूरे इत्मीनान से, यकीन मानिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ। वैसे आंचल, अभी जो मुझे आसन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, मैं कहूँ तो वो होगा श्वासन। मुझे लगता है मैं उसमें एकदम एक्सपर्ट हूँ।
0: हाँ, उसमें तो काफी लोग एक्सपर्ट हैं निखिल, बिकॉज ऑनेस्टली इंटरनेशनल योगा डे डज टू थिंग्स एवरी ईयर। इट ईदर गेट्स पीपल जेन्युइनली ऑन द मैट और इट गेट्स पीपल वेरी क्रिएटिवली एक्सप्लेनिंग व्हाई दे डिडंट, जस्ट लाइक यू डिड। बट जोक्स अपार्ट, योगा डे दिस ईयर हैड अ ब्यूटिफुल थीम निखिल, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। And I think that's worth thinking about for a moment. Because when we hear the word aging, many of us immediately think of something far away in the future. But the truth is, the habits we build today shape how we feel years from now. Whether it's staying active, managing stress, sleeping well, or simply taking a few minutes out for ourselves. Wellness isn't just about adding years to life. It's about adding life to those years. और ये लाइन मुझे बेहद पसंद है। So now before we continue this conversation, let's take a short musical break.

0: दोस्तों देखा जाए तो हमारा भी दिल इस गाने की तरह ही है, हमारा मन भी कुछ ऐसे ही है। हम युवा लोग अक्सर यही सोचते हैं ना कि अभी तो जवान है, अभी तो बहुत एनर्जी है, इस योग को बाद में देख लेंगे। लेकिन ये जो बाद है ना अंचल, इसके आने का रफ्तार का क्या ही कहना, क्योंकि जब ये आता है तो कई बार घुटने बोलने लगते हैं और पीठ चिल्लाने लगती है, और फिर जाकर हम सोचते हैं कि काश थोड़ा पहले ध्यान दे दिया होता। वैसे आंचल, आपने जिस थीम का जिक्र किया है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये हमें कहीं ना कहीं याद दिला रहा है कि अपने आप का ख्याल रखना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये रोज की जरूरतें हैं।
1: In fact, Nikhil, I genuinely wish we had access to the data of yoga mat deliveries over the last 2 days, because every new year and every yoga day, fitness motivation तो एकदम पीक पे पहुंचती है। I wouldn't be surprised if yoga mats and dumbbells on instant delivery apps were saying, आज तो हमारी डिमांड भी VIP कैटेगरी में आ गई है। क्या लगता है आपको?
0: जी हाँ चल, आपने बहुत ही मजेदार बात कही, और अभी जो आपने किस्सा बताया है ना, अगर इसे बड़े पर्दे पर हम देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि आजकल के युवाओं में हेल्थ के प्रति जागरूकता तो है, बस कमी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की हो जाती है, और इसके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि आप अपना गोल ना भूलें, जो कि है स्वस्थ रहना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हेल्थ, वेलनेस और योग की, जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें और योग हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प किस्से तक, जहां हुआ था फुटबॉल का एक ऐसा गोल जिसकी चर्चा आज भी होती है आंचल, और नजर डालेंगे क्विक बस के कुछ मजेदार ट्रेंड्स पर भी।
1: And talking about that energy, motivation and feeling good, here's a song that's sure to add some positivity to your day. After all, as Rancho reminded us in Three Idiots, all is well. That sounds much better when both your mind and body are actually doing well. So here we go.

0: Welcome back, everyone, and now it's time for our weekly segment. Since we are talking about health and wellness today, I thought we'd take a quick trip around the world without needing a passport, of course. Nikhil, if I asked you which country has a secret to a healthy life, what would you say?
1: देखिए आंचल, आपने बहुत ही मजेदार बात कही है और अभी जो मैं आपको बात कहने जाऊंगा ना वो और भी मजेदार है। अगर कोई ऐसा देश मिल जाए जहां लोग बिना मेहनत के स्वस्थ भी रहें और बिना किसी चिंता के मन पसंद का खाना भी खाएं, तो मुझे उस देश का पता जरूर चाहिए आंचल। और हाँ, अगर हो सके तो उस देश का सिटीजनशिप भी।
0: एब्सोल्युटली, आपने बहुत लोगों को ये सिटीजनशिप चाहिए होगी। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज that different parts of world have very different ideas of what wellness actually means. Japan ka example le lete hain. Wahan pe ek concept hai jise kehte hain ikigai, which means having a purpose, a reason to wake up every morning. And honestly, I think many of us spend more time looking for our phone charger than our purpose har subah jab hum uthte hain. Aapko kya lagta hai?
1: Kya baat kahi aapne Anchal, aur aapko pata hai ki duniya ke kai hisson mein log fit rehne ke liye mehenge gadgets par nahi balki rozmarra ki achhi aadaton par bharosa karte hain. कई लोग ज्यादा पैदल चलते हैं, कहीं परिवार के साथ लोग बैठकर डिनर करते हैं, तो कहीं लोग दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति और ध्यान के साथ करते हैं। और आंचल, देखा जाए तो ध्यान यानी मेडिटेशन योग का ही एक अलग रूप है ना?
0: That's such a good point, Nikhil, because yoga isn't just a set of poses, honestly. At its core, it's exactly this: awareness of your body, your breath, your mind. And that's what yoga has always reminded us of. Slow down, breathe, check in with yourself. Your body will tell you exactly what it needs. We're just really bad at listening क्योंकि हमेशा earpods लगे रहते हैं हमारी कानों में. निखिल, आप क्या सोचते हैं, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हम सच में खुद को वो टाइम दे पा रहे हैं?
1: आंचल, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, पर मुझे लगता है अभी वक्त हो चला एक नए सॉन्ग का, तो चेन्नई एक्सप्रेस से ये गाना तितली सुनते हैं।

0: देखिए आंचल, आपने इस गाने से पहले एक मुझसे एक सवाल पूछा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मेंटल फिटनेस को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। फिजिकल इंजरीज हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं मेंटली यानी मानसिक रूप से थका हुआ हूँ तो लोग बोलते हैं, अरे छोड़ भाई, ज़्यादा सोच रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता, पानी वानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि दोस्तों, सच ये है कि अगर मन थका हो तो शरीर भी काम नहीं करता है। या फिर इसको मैं थोड़े बेहतर तरीके से समझाऊं तो मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक स्वस्थ ना हुआ तो दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और यही तो योग हमें सिखाता है, दोनों का बैलेंस।
1: And that balance reminds me of a story, Nikhil. I read it yesterday, and it's about Saurabh Bothra, an IIT BHU graduate. He spent 6 years with no stable income, and then one train journey from Banaras to Nagpur, one meditation group, and something shifted. He chose yoga over everything, and in 5 years, hasn't missed a single class. कोई इल्लस नहीं, पैर टूटा है, फिर भी आएंगे, शादी में भी नहीं जाएंगे. Today, 12.6 million students across 169 countries join him for yoga. He didn't just chase success, he just never stopped showing up, you know. निखिल, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये तो कुछ और ही है.
0: बिल्कुल आंचल, आपने कमाल का भी किस्सा मुझे सुनाया। और ये जो पर्पस है, वो एक इकाई जिसके बारे में हमने बात की थी, एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसने सब छोड़ा, भटका और एक पल में अपना रास्ता पहचान लिया। तो दोस्तों, आपका वो अपना पल ढूंढिए और उस पर भरोसा कीजिए।
1: Couldn't have said it better. So before we move on, Nikhil, we both have decided that हम कुछ practical tips अपने listeners को देंगे, something which is doable to celebrate Yoga Day in our own way. But before that, here's a beautiful song for you.

0: the Bahara Zone, but before the song, we were talking about a few tips. So Nikhil, आप शुरू करिए और please दो tip तो जरूर दीजिए।
1: हाँ जरूर अंजल। तो आज के listeners से मेरी पहली tip जो है, वो है box breathing try कीजिए। यानी चार काउंट्स में सांस लीजिए, चार काउंट्स रोकिए, फिर चार काउंट्स में छोड़िए, आखिर में फिर चार काउंट्स रोकिए। बस इतना ही, और इसे प्रतिदिन लगभग 5 से 10 मिनट दोहराइए। और अगर आपको इसे समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ना, तो अपना फोन उठाइए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, वहां पे आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, बॉक्स ब्रीदिंग की खास बात यह है कि इसे आप कुछ ही मिनटों में काफी शांत महसूस करेंगे, और इसी वजह से बड़े बड़े एथलीट्स या एक्टर्स बड़े मूवमेंट से पहले इसे यूज करते हैं, और आप अपने एग्जाम से पहले, किसी टफ सिचुएशन से पहले, या फिर एक बड़े दिन में ट्राई कर सकते हैं। और अंचल, मेरा आज के श्रोताओं के लिए जो दूसरा सुझाव है, वो है, सुनने में वो काफी मामूली सा लगता है। देखिए अंचल, मेरा मानना है कि हमें हर रोज सुबह कम से कम 10 मिनट बाहर जाना चाहिए, और हाँ, बिना फोन के, और इस दौरान धूप और ताजी हवा लेनी चाहिए। अंचल, हम इन्हें छोटी चीजें समझते हैं ना, लेकिन यही वो कमाल की चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर में कई फायदे होते हैं, और हम सबसे पहले इसे ही इग्नोर कर देते हैं। और सच कहूं तो दोस्तों, दिल्ली के इस गर्मी में 10 मिनट भी बाहर निकलना अपने आप में एक बहादुरी का काम है, तो आंचल, इसके लिए क्रेडिट तो बनता है ना।
0: द सेकेंड वन निखिल इज एब्सोल्युटली वैलिड, एंड यस, फुल क्रेडिट ले लो आप तो। माय फाइनल टिप फॉर माय लिसनर्स इज टू स्ट्रेच फॉर 5 मिनट्स बिफोर यू पिक अप योर फोन इन द मॉर्निंग, बिफोर द नोटिफिकेशंस, बिफोर द न्यूज, बिफोर एनीथिंग, जस्ट 5 मिनट्स फॉर योर ओन बॉडी। Trust me, your back will thank you by Thursday. Because at the end of the day, your body is that one place where you actually live. Not your Instagram, not your college, not your workplace, just your body. And who knows, maybe the one small habit you start today is the one your future self thanks you for.
1: बिल्कुल सही कहा आपने आंचल, और इसी के साथ हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी आज एक अच्छी आदत जरूर शुरू करेंगी। फिलहाल इसी उम्मीद को दिल में लिए सुनते हैं अरिजीत सिंह के आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गाना, जिसे लिखा है मनोज मुंतशीर ने और कंपोज किया है अमाल मलिक ने।

0: बेशक है तो ये गजब का ही दिन। और आज ही के दिन यानी 22 जून 1986 को फुटबॉल के इतिहास में एक ही मैच में दो सबसे अनोखी घटनाएं हुई थी। इस दिन फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने थे। मैच के 91 मिनट के दौरान एक इंग्लैंड के खिलाड़ी ने गेंद को अपनी ही टीम के गोलकीपर पीटर शिल्टन की तरफ उछाला था, लेकिन गेंद शिल्टन के पास पहुंचती उससे पहले अर्जेंटीना के खिलाड़ी डिएगो माराडोना ने एक छलांग मारते हैं। और यकीन मानिए आंचल कि उन्होंने पैर से नहीं, सिर से नहीं, बल्कि अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से गेंद को बस हल्का सा छुआ था और गेंद गोल में चली गई थी। और मजेदार बात तो यह है कि रेफरी और लाइनमैन को लगा कि गेंद हाथ से नहीं बल्कि सर से ही लगी है और उन्होंने इसे गोल डिक्लेयर कर दिया था। और यही गोल इतिहास में हैंड ऑफ गॉड के नाम से दर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों, इस हैंड ऑफ गॉड नाम के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब मैच के बाद पत्रकारों ने माराडोना से पूछा कि आखिर आपने गोल किया कैसे, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, थोड़ा माराडोना के सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से। और माराडोना की इसी बयान के वजह से ये गोल हैंड ऑफ गॉड इतिहास में दर्ज हो गया। क्यों आंचल, था ना ये एक मजेदार किस्सा?
1: बिल्कुल निखिल, ये बहुत मजेदार था। एंड अलोंग विद दिस देयर इज समथिंग एल्स आल्सो ऑन द सेम स्टोरी, बट बिफोर दैट अनदर सॉन्ग फॉर द लिसनर्स।

0: And now it's time for a quick buzz. If your phone battery dies before you catch up with what's happening around the world, don't worry, we've got you covered.
1: तो चलिए नजर डालते हैं इस हफ्ते के कुछ दिलचस्प और चर्चित खबरों पर.
0: Yesterday, India women played South Africa in the ICC Women's T20 World Cup in Manchester. Tough loss, but here's the moment worth celebrating. It was Harmanpreet Kaur's 200th T20 International, making her the first ever cricketer in the world to reach that landmark. 200 games, guys. Captain, legend, we see you, Harmanpreet.
1: और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज यानी 22 जून को दो बड़े मुकाबले हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया से और फ्रांस और इराक से. और याद रहे, मेसी पहले ही अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक जड़ चुके हैं, तो आज का मैच और भी रोमांचक होने वाला है. शाम का प्लान तैयार रखिएगा. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा और हम आपकी शाम को और बेहतर बना पाए होंगे और कुछ पल की खुशी, कुछ पल की मुस्कुराहटों से भर पाए होंगे. बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ.
0: Until next time, take care of your mind, your body, and most importantly, be kind to yourself and to your surroundings. Keep listening to Yuvani. We leave you with a beautiful song, and you were with Nikhil Bhaskar and Achal Pundir.
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत.
0: नमस्कार.

0: अभी आपने सुना युवाओं से जुड़ा खूबसूरत युवाओं की जुगलबंदी में बेहतरीन प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम युववाणी और अब समय हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं।

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईए, डीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that the changes that have taken place over the past 12 years have succeeded in strengthening people's faith in governance and administration. He added that it also played a crucial role in making the lives of millions of citizens more convenient, secure and dignified through public welfare schemes. The Prime Minister said this while sharing an article written by Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, in a social media post. Mr. Modi further said that public trust is the greatest asset of good governance. The article written by Mr. Goyal highlights the journey of good governance, public welfare and the positive changes in the lives of the poor during the 12 years of the central government under the leadership of Prime Minister Modi. The BJP-led

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का।

0: ही श्रोताओं को
1: नमस्कार। जी हाँ, लोकगीत हमारे समाज के परिचायक हैं, हमारे मन का आईना है। तो शुरू करते हैं इस आईने में झांकना और आपको सुनवाते हैं लोकगीत। और प्रीति, कहते हैं कि जो जेवर होते हैं, जेवर यानी अलंकार जो स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, वो समृद्धि और सौंदर्य

0: वैज्ञानिक भी तथ्य हैं।
1: तो उन तथ्यों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, शुरुआत करते हैं कंगन से। कलाकार हैं बबीता
0: चौधरी।

0: प्रीति कितना अच्छा बहाना है ना कि पुराने वाले ढीले पड़ गए हैं तो अब पिया जी नए चाहिए।
1: ये तो नहीं कहा जा रहा है कि मुझे नए कंगन चाहिए, तो लेकिन वजह दी जा रही है कि ढीले पड़ गए हैं इसलिए मुझे कंगन चाहिए
0: जी,
1: है ना?
0: वो कंगन पता है क्यों ढीले पड़े? वो गगरी उठाने की वजह से, है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो गगरी के बारे में बात करते हैं, मटके के बारे में बात करते हैं,
1: जिनकी यात्रा बहुत पुरानी है और बहुत दूर से है। अभी हम बात कर रहे थे कि उनकी जो मटकों की कहानी है बहुत पुरानी है और आज भी देखो हमारे घर घर में मिल जाते हैं
0: जी। तभी तो कहते हैं कि गगरिया और शीतल नीर मिटा देता है गर्मी की पीर। और जो बात कर रही थी आप, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले से मटके बनते चले आ रहे हैं और आज भी मटकों का अस्तित्व है, तो ये हमारे जीवन से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं इसका महत्व पता चलता है।
1: तो आइए इसी बात पर हम सुनवाते हैं।

0: जी, तो छलकते हुए यूं ही चलते जाना है लोकगीतों के पथ पर।
1: जी
0: क्यों प्रीति, और
1: जी
0: अब बात करते हैं नोक झोंक की, टकराव की,
1: प्यार की
0: क्योंकि
1: चिंगारी की
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ,
1: उससे
0: सही
1: ना
0: कहा।
1: नोक झोंक से ना भड़क जाती है चिंगारी। और कहते हैं ना कि लोकगीतों की तो खूबसूरती ही यही होती है कि वो अपनी हर बात को, चाहे हंसी हो, चाहे ठिठोली हो, चाहे शिकायत हो, तो वो ना एक तंजनुमा बात होती है और वो कह जाती है। तो वो
0: जी
1: लोकगीत भी होता है और एक हंसी ठिठोली भी होती है।
0: जी बड़ी बातों को तरीके से कह दो तो उनका बड़ा असर नहीं होता, लेकिन असरदार जरूर हो जाती है वो। तो सुनवाते हैं अब आपको एक और लोकगीत राजबाला की आवाज में,

0: बात कह दी पिया जी?
1: देवर
0: से कोई घबराने की बात थोड़ी ना, वो तो बच्चा है, उसे तो एक चॉकलेट देके अपने फेवर में कर लूंगी मैं।
1: लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
0: कह दे।

0: तो अभी आप सुन रहे थे राजबाला की आवाज़ में ये लोकगीत, और लोकगीत में आपने सुना कि कैसे वो हठी है कि भाई फिल्म देखने ज़रूर जाऊंगी फिर चाहे कितनी भी शर्तें हों।
1: जी, फिल्म देखना भी एक समस्या हो गई है। एक श्याम सुंदरी कैसे देखेगी फिल्म, इतने सारे लोग आसपास बैठे होंगे, लेकिन देखनी ज़रूर है।
0: देखनी भी ज़रूर
1: और
0: है।
1: उसने है ना, जो उसका प्यारा सा देवर है उससे उसे कोई समस्या नहीं है। उससे क्यों समस्या नहीं है पता है आपको प्रीति? उस प्यारे से देवर ने अपनी भाभी को झुमके दिए हैं।
0: अच्छा, तो ये बात है, देवर से बात शुरू हुई थी। हाँ। और देवर पर ही बात आ रही है, तो इसका मतलब कि इसीलिए कहते हैं ना कि आभूषण अपनी एक अलग ही जगह रखते हैं,
1: स्त्रियों को खास तौर से बहुत प्रिय होते हैं। वैसे जमाना बदल रहा है, पुरुषों को भी खासे पसंद है।
0: तो आइए क्यों ना इसी बात पर सुन ले गोपाल सिंह बर्मन की आवाज में ये लोकगीत।
1: जी,
2: ओ झुमका सुंदर सागड़वा दे

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह बर्मन को, और इसी के साथ लोकरंजनी का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सभी को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे खेल दुनिया की दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: आकाश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में।
0: जी, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है खेलों की बात होगी, खिलाड़ियों की बात होगी, किसने कितने पदक जीते उसकी बात होगी और कैसा रहा भारत का प्रदर्शन उसकी बात होगी। तो ISSF तो है ही, शूटिंग की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ विमेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर भी आपको रिपोर्ट ज़रूर सुनवाएंगे। फेंसिंग का आयोजन किया गया है इस बार दिल्ली में, तो उस पर क्या खास रहेगा वहाँ से लाइव रिपोर्ट आपको हम ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। बॉक्सिंग है, इसके अलावा फीडे है और एशियंस रिलेज भी है और वॉलीबॉल की भी बात आज हम इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की फीफा वर्ल्ड कप से।

इनकी निगाहें अगले दौर में जगह बनाने पर टिकी हैं। कुछ टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है, जबकि कई दिग्गज टीमें अभी भी अंक तालिका के जटिल समीकरणों में उलझी हुई है। 28 जून से शुरू होने वाले नॉकआउट दौर से पहले 21 जून को खेले गए 4 महत्वपूर्ण मुकाबलों ने टूर्नामेंट की तस्वीर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले बात ग्रुप एच के मुकाबले की तो अटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से करारी शिकस्त दी। पहले मैच में केप वर्डे के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलने वाली स्पेनिश टीम इस बार पूरी तरह बदली हुई नजर आई। स्पेन की जीत के नायक रहे मिकेल ओयारज़बाल, उन्होंने पहले गोल में लैमिन यामल की मदद की और फिर महज 4 मिनट के भीतर 2 शानदार गोल दागकर मैच को एक तरफा बना दिया। दूसरे हाफ में सऊदी अरब के हसन अल तांबक्ती के आत्मघाती गोल ने स्पेन की बढ़त को 4-0 तक पहुंचा दिया। इस शानदार जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया और नॉकआउट दौर के बेहद करीब दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप जी के मुकाबले की, जहां लॉस एंजलिस के सोफी स्टेडियम में बेल्जियम और ईरान के बीच खेला गया ये मुकाबला बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। केविन डी ब्रुइन और रोमेलू लुकाकू जैसे सितारों से सजी बेल्जियम की टीम पूरे मैच में गोल की तलाश करती रही, लेकिन ईरान की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रही। मैच का अहम मोड़ 67वें मिनट में आया जब बेल्जियम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही बेल्जियम की टीम दबाव में आ गई। हालांकि ईरान भी अपने मौकों को गोल में नहीं बदल सका और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस नतीजे ने ग्रुप जी के समीकरण और भी दिलचस्प बना दिए हैं। ग्रुप एच के मुकाबले में जहां उरुग्वे और केप वर्डे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया ये मैच 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे की टीम लगातार अपने प्रदर्शन से सबको चौंका रही है। स्पेन को रोकने के बाद इस बार उन्होंने 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को भी जीत से वंचित कर दिया। केप वर्डे ने अपने तेज काउंटर अटैक से उरुग्वे की रक्षा पंक्ति को परेशान किया, जबकि उरुग्वे ने अपनी अनुभव के दम पर मुकाबले में वापसी की। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। इस ड्रॉ के बाद दोनों टीमों की नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। अब बात ग्रुप जी के मुकाबले की, जहां मिस्र ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत दर्ज की। वैंकूवर के बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। मैच की शुरुआत न्यूजीलैंड के पक्ष में रही और 15वें मिनट में फिन सुरमन के गोल से टीम ने बढ़त बना ली, लेकिन दूसरे हाफ में मिस्र ने जबरदस्त वापसी की। 98वें मिनट में मुस्तफा जीको ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद कप्तान मोहम्मद सलाह ने 67वें मिनट में गोल दागकर मिस्र को बढ़त दिलाई। फिर 82वें मिनट में ट्रेजेगुएट ने तीसरा गोल कर जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ मिस्र ने नॉकआउट की दौड़ में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली।

फीफा विश्व कप 2026 में अब हर मुकाबला नई कहानी लिख रहा है। ग्रुप चरण फीफा विश्व कप 2026 में अब हर मुकाबला नई कहानी लिख रहा है। ग्रुप चरण अपने निर्णायक दौड़ की ओर पहुंचने वाला है और 27 जून तक चलने वाले मुकाबलों में अंतिम 32 में जगह बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रही हैं। कई दिग्गज टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो कहीं उभरती हुई टीमें बड़े उलटफेर का सपना देख रही हैं। ऐसे में आने वाले मुकाबले न सिर्फ अंक तालिका के समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि कई टीमों के भविष्य का फैसला भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया के बीच होने वाले मुकाबले की। तो डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना इस मैच में अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। लियोनेल मेसी के अनुभव और नेतृत्व के साथ जूलियन अल्वारेज और लाउतारो मार्टिनेज जैसे युवा खिलाड़ी टीम के आक्रमण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं मिडफील्ड में रोड्रिगो डी पॉल और एलेक्सिस मैक एलिस्टर खेल की गति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर राल्फ रंगनिक की कोचिंग में ऑस्ट्रिया की टीम अपनी हाई प्रोसेसिंग शैली के लिए जानी जाती है। डेविड अलावा का अनुभव और मार्शल सप्तिजर की रचनात्मकता अर्जेंटीना के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अब बात ग्रुप के एक और महत्वपूर्ण मुकाबले की, जहां फ्रांस का सामना इराक से होगा। पूर्व विश्व विजेता फ्रांस इस समय टूर्नामेंट की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में गिना जा रहा है। कप्तान कालियन एम्बाप्पे की रफ्तार और एंटिनो ग्रिजमैन की रचनात्मकता किसी भी डिफेंस को भेदने की क्षमता रखती है। फ्रांसीसी टीम इस मुकाबले में न सिर्फ जीत दर्ज करना चाहेगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल कर अपना गोल अंतर भी बेहतर करना चाहेगी। दूसरी ओर इराक के लिए ये मुकाबला एक बड़ी परीक्षा है। स्टार स्ट्राइकर एमएन हुसैन पर टीम की उम्मीदें टिकी होंगी। इराक की रणनीति संभवतः रक्षात्मक रहने की होगी और वो फ्रांस को गोल करने से रोकने में पूरी कोशिश करेंगे। अगर इराक इस मुकाबले से अंक हासिल करने में

सफल रहता है तो ये उनके विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। अब रुख करते हैं उस मुकाबले की ओर जिस पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की खास नजरें टिकी होंगी, नॉर्वे बनाम सेनेगल। ये मैच दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों और दो बड़े सितारों की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर है नॉर्वे के गोल मशीन एलिंग हॉलैंड तो दूसरी ओर सेनेगल के अनुभवी स्टार सादियो माने। नॉर्वे की टीम मार्टिन ओडेगार्ड की अगुवाई में मिडफील्ड पर नियंत्रण स्थापित कर हॉलैंड के लिए मौके बनाने की कोशिश करेगी। वहीं सेनेगल अपनी शारीरिक मजबूती, गति और बड़े टूर्नामेंटों के अनुभव के दम पर मैदान में उतरेगा। कालिदू कैलिबाली के नेतृत्व में सेनेगल का डिफेंस हॉलैंड को रोकने की चुनौती स्वीकार करेगा। नॉकआउट की दौड़ को देखते हुए ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच होने वाले मुकाबलों की। दो अरब देशों के बीच होने वाला ये मैच खेल और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों दृष्टि से खास माना जा रहा है। जॉर्डन की टीम ने हाल के वर्षों में अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है। स्टार विंगर मूसा अल तमारी अपनी गति और ड्रिबलिंग से विपक्षी रक्षा पंक्ति को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। वहीं अल्जीरिया की उम्मीदें कप्तान रियाज महरेज पर टिकी होंगी। तकनीकी रूप से मजबूत अल्जीरियाई टीम मैच की रफ्तार को नियंत्रित करने और मौके बनाकर गोल करने की कोशिश करेगी। जॉर्डन जहां काउंटर अटैक के जरिए चौंकाने का प्रयास करेगा, वहीं अल्जीरिया इस मुकाबले को जीतकर अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा।

और अब फीफा के बाद चलते हैं शूटिंग की ओर। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप जो सुहल में आयोजित किया गया है 16 से 26 जून के बीच, जिसमें 70 राष्ट्रीय महासंघों के 800 से अधिक निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं, और भारत ने इस प्रतियोगिता में 84 सदस्यीय दल उतारा है। और सबसे ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया है प्रीतम केंद्रे ने, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक लिया है। जर्मन के सुहल में चल रही आईएसएस जूनियर विश्व कप 2026 में कल भारत के प्रीतम केंद्रे ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। प्रीतम के इस व्यक्तिगत स्वर्ण और एक और रजत के साथ महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आए कांस्य पदक के साथ सुहल में भारत के पदकों की कुल संख्या 12 हो गई है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रोमांच रहा 8 निशानेबाजों के। फाइनल में भारतीय एथलीट प्रीतम केंद्रे ने 251.3 का शानदार स्कोर किया, और तटस्थ एथलीट तिमोई और नॉर्वे के जेंस ओस्टली को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। पोडियम से चूके पीयूष, एक अन्य भारतीय निशानेबाज पीयूष शर्मा कांस्य पदक से बाल बाल चूक गए। चौथे एलिमिनेशन राउंड के बाद यह ऑस्टली से मात्र 0.1 अंक पीछे रह गए और उन्हें चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। क्वालिफायर में जो प्रदर्शन रहा उसके लिए पीयूष शर्मा ने 629.0 के स्कोर के साथ तीसरे, और प्रीतम केंद्रे ने 628.2 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे थे। व्यक्तिगत रूप से प्रीतम और पीयूष की बेहतरीन रैंकिंग के बावजूद भारतीय टीम को अयोग्य घोषित कर दिया गया, और ये टीम स्पर्धा में ऐसा हुआ जिसकी वजह से टीम के तीसरे सदस्य अभिनव शॉ रहे और जिनके उपकरण आईएसएसएफ नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा की अगर बात करें तो अंजलि भागवत, प्रीशा गुप्ता और निथिला क्रिस्टोफर की भारतीय तिकड़ी ने महिला 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में संयुक्त स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया, और इस स्पर्धा में स्वर्ण और रजत दोनों पदक तटस्थ एथलीटों की टीमों ने जीते। अंजलि भागवत का शानदार प्रयास रहा और शानदार स्कोर के साथ क्वालिफायर में सातवें स्थान पर रहने वाली अंजलि भागवत 6 भारतीयों में से फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र निशानेबाज थी। मानवी जैन कट हासिल करने से थोड़ा दूर रह गई और 9वें स्थान पर रही। फाइनल राउंड में अंजलि 6 स्थान पर रही। दूसरे एलिमिनेशन राउंड में यूक्रेन की करीना के खिलाफ शूट आउट हारने के बाद वह पदक की दौड़ से बाहर हो गई। भारत का अब तक का सफर, टूर्नामेंट के आंकड़े और पदक तालिका पर अगर नजर डाले तो भारतीय निशानेबाजों ने अब तक इस मीट में 5 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीत लिए हैं। और टूर्नामेंट के अगर पैमाने की बात करें तो जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के इस पांचवें संस्करण में 70 महासंघों हिस्सा ले रहे हैं, और अगर इसी जूनियर विश्व कप की अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो पिछला संस्करण 2024 में पेरू में आयोजित हुआ था, जहां भारत ने 13 स्वर्ण और 3 रजत और 8 कांस्य सहित 24 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

0: ये चैंपियनशिप अब 26 जून तक चलेगी, यानी कि 26 जून को इस चैंपियनशिप की समाप्ति होगी। और अब आगे की खबर के लिए चलते हैं आकाश के पास और जानते हैं क्या हाल है T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में टीम्स का।
1: आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 में अब मुकाबले और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। इंग्लैंड की सरजमी पर खेली जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हर टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में 21 जून के मुकाबले कई मायनों में अहम साबित हुए, जहां कुछ खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से मैच का रुख बदल दिया और अपनी टीमों को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के मुकाबले की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए इस महत्वपूर्ण मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधना जल्द ही 17 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद शेफाली वर्मा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को गति दी। शेफाली ने सिर्फ 15 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। मध्य क्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 24 रन और दीप्ति शर्मा ने 29 रन का योगदान दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की अनुशासित गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना पाए। शबनम इस्माइल ने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने संयम के साथ शुरुआत की। ताजमीन ब्रिड्स ने 40 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को मजबूत आधार दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह मारिजान कैप के नाम रहा। मारिजान कैप ने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने महज 45 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 81 रन बनाए और मैच को पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। भारत की ओर से श्री चढ़नी ने 3 विकेट लेकर संघर्ष जरूर किया। दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। मारिजान कैप को उनके प्रदर्शन 81 रन और 2 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब बात करते हैं ग्रुप बी के मुकाबले की, जहां वेस्टइंडीज और श्रीलंका की टीमें आमने सामने थी। ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने लगातार सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कप्तान चमारी अट्टापट्टू की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हैली मैथ्यूज ने अपनी ऑफ स्पिन से श्रीलंका के मध्य क्रम को झकझोड़ दिया और 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। पूरी श्रीलंकाई टीम 19.4 ओवर में केवल 98 रन बनाकर सिमट गई। 99 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेला। हालांकि बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरे, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के कारण टीम कभी दबाव में नहीं आई। वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ रन बटोरे और टीम ने 16.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह वेस्टइंडीज ने 23 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। हैली मैथ्यूज को उनकी शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन कप्तानी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: और अब बात करते हैं फेंसिंग की। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है और चौथे दिन की रिपोर्ट आइए जानते हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी से।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 26वीं एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन भी भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। पुरुष सेबर और महिला फाइनल टीम को 10वें रैंक से संतोष करना पड़ा। बात आज के मुकाबलों की करें, उससे पहले कल खेले गए दोनों फाइनल मुकाबलों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कल तीसरे दिन पुरुष फाइनल और महिला एपी की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में रोमांचक फाइनल मुकाबले देखने को मिले। पुरुष फाइनल में जापान के क्योसुके मात्सुयामा ने स्वर्ण जबकि काजुकी इमुरा ने रजत पदक जीता। वहीं महिला एपी में कजाकिस्तान की इरीना बाकलिंडा ने इतिहास रचते हुए देश का पहला व्यक्तिगत महिला एपी स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग की केलिन सिन या हसी को रजत पदक हासिल हुआ। वहीं उम्मीदों के साथ आज भारतीय पुरुष सेबर टीम राउंड ऑफ 16 में ऑस्ट्रेलिया से कड़े मुकाबले में हारकर रैंकिंग के मुकाबले में सिंगापुर के खिलाफ जीत दर्ज कर ईरान के खिलाफ 9वें और 10वें स्थान के लिए उतरी। मुकाबला बेहद सख्त रहा। अंतिम क्षणों में भारत को 44-45 के नजदीकी स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह टीम का सफर 10वीं रैंक पर रहते हुए संपन्न हो गया। टीम के सदस्य लक्ष्य बता रहे हैं उनकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा।
3: मेरा नाम लक्ष्य है, मैं इंडियन फेंसिंग सेपरेट टीम का हिस्सा हूं और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे

0: 16 में हुआ था जो हम लॉस कर गए थे 42-45 से। बड़ा क्लोज मैच था, अच्छा चला मैच, बहुत ठीक था। मतलब
1: मैंने देखा था बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा था मैच, कभी इधर कभी उधर, कैसे मैच निकल गया?
0: मैच निकल गया, बस दोनों टीमें अच्छी थी, बस वो लास्ट में वो दोनों ने अच्छा हैंडल किया प्रेशर को, तो वो ले लिए। हमारी टीम वाले बहुत अच्छा खेले, सब अच्छा खेले हमारी टीम में, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था तो वो मैच तो हमारा निकल गया।
1: उसके बाद रैंकिंग में उतरते, पहला मैच जीतते ईरान से, दूसरा मुकाबला खेलते 45-44 पे जाके फिनिश होता है, ईरान जीत जाता है, अंतिम पॉइंट उसे मिलता है। जो रैंकिंग मुकाबले होते उसके बारे में बताइए।
0: रैंकिंग मुकाबले रैंक के लिए होता है, जैसे हम 16 में हार गए तो 9, 10, 11, 12 के लिए रैंक मैच होता है। तो हमारा पहला सिंगापुर से हम इजी जीत गए थे, उसके बाद सेकंड मैच ईरान के साथ अच्छा चला, 45-44 से हार गए।
1: वहाँ भी ये लीड कर रहे थे लेकिन अंत में चल के कैसे पॉइंट्स लगातार चले गए?
0: नहीं, फेंसिंग है, कुछ भी हो सकता है, एक बार पलक झपकाते कुछ भी हो जाएगा, तो क्या पता चलता है, चाहे उनके पास 10 की लीड हो, हमारे पास 10 की लीड हो, कभी भी कवर हो सकता है। कुछ भी नहीं है कि आज ये अच्छा चल रहा है तो वो चल रहा है, फेंसिंग में कुछ भी हो सकता है।
1: अगर हम बात करें सेबर में टीम इवेंट की, इंडिविजुअल इवेंट की, तो दोनों से क्या सीखा और क्या लग रहा, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है?
0: इंडिया को भी बहुत फायदा हुआ है, एक्सप्लोजर मिला है अच्छा, बाहर वाले बच्चों को भी देखने को मिला है, हमें भी बहुत फायदा हुआ है। हम भी पहली बार खेल रहे हैं, मैं तो पहली बार खेल रहा हूँ, सीनियर टीम में खेलना ही बहुत अच्छी बात है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है अभी फेंसिंग में और आगे जाके भी बहुत करेगा।
1: उधर फाइल महिला टीम ने भी 10वें स्थान पर रहते हुए अपना सफर खत्म किया, क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान से हारने के बाद रैंकिंग मैच में कंबोडिया को हरा कर 9वें और 10वें स्थान के मैच में ऑस्ट्रेलिया से 35-45 से हार गई। हालांकि टीम हार जरूर गई मगर टीम की सदस्य मीना देवी ने अपने शानदार प्रदर्शन भविष्य की उम्मीदों को जिंदा रखा है।
2: माय नेम इज मीना, आई एम फ्रॉम मणिपुर, माय इवेंट इज फॉइल।
1: आज अभी देखा मैंने खेला, भारतीय टीम एक वक्त लीड पे थी, उसके बाद डाउन होती है, फिर आप जाती हैं और बहुत अच्छा स्कोर करती हैं, करीब लेके आती है लेकिन टीम हार जाती है, पूरा मैच कैसा रहा?
2: सेकेंड वाला तो थोड़ा मुश्किल है खेलने के लिए और दोनों तो ठीक ही है, बस इसलिए सेकेंड वाला तो मेरा डाउन चल गया, उसके बाद अब आ गया लास्ट वाला मैच।
1: कैसे आपने वापसी की थी, किस तरह से आपने पॉइंट्स लगातार पॉइंट हासिल किए?
2: क्योंकि अभी लास्ट वाला खेल रहे वो पुल में मेरा साथ है, इसलिए मैंने उसका क्या कहा से मिस्टेक उसका पता चल गया, इसलिए मैंने आराम से सोच के खेला।
1: ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा?
2: एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत पहले से बहुत कॉन्फिडेंस है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस कर।
1: 10th रैंक मिली है, क्या और बेहतर हो सकता था?
2: हाँ और बेहतर हो सका, 1-8 में अंदर जा सकता,
1: तो 8वीं तक उम्मीद थी। कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई मीना?
2: मेरा गलती से मेरा एटैक नहीं जा सकता है, मेरा बहुत गलती है, उसके बाद ओपोनेंट एटैक आ रहे, मेरे काउंटर जैसा काउंटर करने के लिए कोशिश किया, इसीलिए मेरा गलती बहुत है।
1: आगे के लिए क्या सोच रही है अभी, जिस तरह से आपने यहाँ खेला, जिस तरह से टीम ने आप खेला,
2: नेक्स्ट टाइम में मेरा गलती से अच्छे से करेक्ट करके मैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर दे।
1: इंडिविजुअली आपने क्या यहाँ लर्न किया?
2: इंडिविजुअल मैंने कोशिश किया, अलग से है वो दूसरा कंट्री के साथ हम लोग थोड़ा सा डाउन है, इसलिए अब करने के लिए मैंने वो लोग से थोड़ा सीख के रख।
1: टीम के प्रदर्शन पर अब सुनते हैं भारतीय फॉइल टीम के चीफ कोच को।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम विजय है और मैं फॉइल कोच हूँ फेंसिंग का और मैं नेशनल टीम के साथ काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया आज ऑस्ट्रेलिया से हमारा मैच था, हम इससे पहले कजाकिस्तान से प्री क्वार्टर में हारे थे, मिड तक वो मैच अच्छा गया था, उसके बाद उनकी एक फेंसर है थोड़ा सा उसने अच्छा किया और उसके बाद हम रैंकिंग्स में कंबोडिया से जीते और 9-10 रैंकिंग के लिए हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच था जो कि काफी क्लोज रहा, बस लास्ट में थोड़ा सा जल्दबाजी बच्ची कर गई और लेकिन ये है कि ओवरऑल हम ये परफॉर्मेंस देखेगी तो अभी काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूव है क्योंकि फेंसिंग में बहुत कंपटीशन और सीनियर एशियन चैंपियनशिप है। जूनियर्स में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर इन टॉप 8, दे आर इन मेडल्स इन जूनियर एशियन चैंपियनशिप, बट सीनियर काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन है और इसमें हमारी यही थी कि हम टॉप 8 में आएँ और ताकि अपकमिंग जो अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप है और अगस्त में जो एशियन गेम्स हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं।
1: आज जो फॉइल में टीम ने किया है, जो परफॉर्मेंस किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बता दी।
3: फॉइल में ओवरऑल हमारी एक बच्ची कनुप्रिया, उसने इंडिविजुअल में वो 20th रैंक है उसका और उसने पूल में 4 बाउट जीते थे और वो 32 में टॉप 32 में हारी और लास्ट ईयर वो 64 में हारी थी, तो ग्रेजुअली वो अच्छा कर रही है। और उसके बाद जो हमारी टीम है उसमें आज मीना देवी, नौरम मीना देवी ने काफी अच्छा खेला और उसने काफी पॉइंट्स कवर किए और अभी 24 तारीख को मेंस फॉइल टीम का मैच है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे और ओलंपिक मेडलिस्ट टीम में जापान या हांगकांग के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा खेलने का उस टीम के साथ क्योंकि ओलंपिक गोल्ड टीम है जापान, तो जब वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे यस डेफिनेटली आने वाले 2 सालों में मुझे लगता है कि हम एशिया में अच्छा कर सकेंगे।
1: वहीं एपी टीम वर्ग के मुकाबले कल से खेले जाएंगे, भारतीय टीम भी उतरेगी।

0: क्या संभावना है, इसी पर हमने टीम के सीनियर खिलाड़ी से बात की।
1: मेरा नाम अलोशियस है, मैं एपी टीम मेंबर हूँ इंडियन टीम का। अभी इंडिविजुअल में तो हमारा सबका अच्छा गेम था, तो हम टीमें भी अच्छा करने के लिए प्लान तो किया है। कल मैच किसके साथ अभी तो कंफर्म नहीं है, शाम तक पता चल जाएगा। तो कल का गेम के लिए हम पूरे कॉन्फिडेंट है, हम जीतेंगे, बाकी हम कल देखते हैं।
0: इंडिविजुअल में क्या हुआ था और उससे क्या सीखा?
1: इंडिविजुअल में मेरे साथ जो है तो ओलंपिक चैंपियन था मेरे साथ जो खेला था कोरिया का, तो थोड़ा डिफिकल्ट था मैच, फिर भी मैंने अच्छा ट्राई किया, मैच तो अच्छा खेला था मेरे तरफ से, तो मैंने पूरा एफर्ट लगा के खेला था, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला।
0: सीखा क्या उससे?
1: सीखना गेम में बहुत टैक्टिक्स चेंज होता है, टेक्निक होते हैं, वो हमसे ज्यादा थोड़ा उनका बॉडी स्पीड वगैरह थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें उनका थोड़ा चेंज होता है गेम में, और एक्सपीरियंस बहुत है उनका, आगे बहुत ऐसे खेल रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है।
0: टीम में उतरेंगे तो उसका कुछ फायदा कल मिलेगा, और कल क्या कुछ अच्छा मैच भारत का देखने को मिल सकता?
1: पक्का वो तो 100% श्योर है, मैच तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आगे वाला टीम भी जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आ रहा है, जो भी आएगा स्ट्रॉन्ग टीम है, कोई इसी कॉम्पिटिशन तो हो नहीं सकता। हमारे तरफ से हम पूरा कोशिश करेंगे हम तो आगे जाने के लिए।
0: पोडियम तक क्या देख रहे हैं भारत इस बार, कहीं पोडियम फिनिश करता दिख रहा है?
1: अभी तक तो आज का भी दोनों मैच था, वो दोनों हार गया, अभी दो दिन और है, हम ट्राई करेंगे पोडियम तक जाने के लिए।
0: आज के लिए बस इतना ही। नई दिल्ली के भारत मंडपम से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: और अब जानते हैं हॉकी के बारे में, और क्योंकि हॉकी खास रहा FIH प्रो लीग, भारत और नीदरलैंड्स के बीच जो मैच खेला गया उसमें भारत को जीत हासिल हुई और हमारी महिला टीम ने परचम लहराया। और आकाश से जानते हैं कैसा रहा हाल।
3: यूरोप दौरे के अपने अंतिम मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया की शीर्ष टीमों में शामिल नीदरलैंड्स को उसके घरेलू मैदान पर 3-2 से हरा दिया। रोटरडैम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव के बीच बेहतरीन संयम, मजबूत रक्षा और शानदार आक्रमण का प्रदर्शन किया। इस जीत ने भले ही अंक तालिका में भारत की स्थिति में बड़ा बदलाव ना किया हो, लेकिन टीम के आत्मविश्वास को जरूर नई ऊंचाइयां दी। रोटरडैम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत मेजबान नीदरलैंड्स के आक्रामक खेल के साथ हुई। घरेलू दर्शकों के समर्थन से उत्साहित डच टीम ने पहले क्वार्टर में भारतीय गोल पोस्ट पर लगातार दबाव बनाए, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने पलटवार किया। मैच के 18वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और जुगराज सिंह ने अपनी दमदार ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को जाल में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि नीदरलैंड्स ने कुछ ही देर बाद बराबरी हासिल कर ली, लेकिन भारतीय टीम ने जवाब देने में देरी नहीं दिखाई। हाफ टाइम से ठीक पहले अभिषेक ने शानदार फील्ड गोल दागकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। डच टीम लगातार बराबरी की कोशिश करती रही, लेकिन भारतीय डिफेंस और गोलकीपर मजबूती से डटे रहे। अब अगर अंक तालिका की बात करें तो बेल्जियम 34 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, इंग्लैंड 26 अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 24 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। नीदरलैंड्स 22 अंकों के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है। भारत ने इस शानदार जीत के बावजूद 10 अंकों के साथ 8वां स्थान बरकरार रखा, जबकि पाकिस्तान बिना कोई अंक हासिल किए सबसे नीचे है। और भारतीय टीम का अगला मुकाबला 23 जून को इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ होना है। भले ही पाकिस्तान की टीम इस सीजन में अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है और अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर है, लेकिन भारत पाकिस्तान का मुकाबला रोमांचक होता है हमेशा।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट सुनी FIH प्रो लीग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पुरुषों के मुकाबले की, ये बात हो रही थी। और अब बात करते हैं बॉक्सिंग की। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 जो है वो 15 से 21 जून तक जिसका आयोजन किया गया था, और कल ज्योति ने इंडिया के लिए एकमात्र गोल्ड जीता। 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में ज्योति ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राजील को मौजूदा गोल्ड मेडलिस्ट फारजोना को 5-0 से एक तरफा फैसले से हराया, और एक मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ ज्योति की शानदार जीत से उनके बेहतरीन अभियान को यादगार बनाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बढ़ती पहचान को भी साबित किया। इंडिया के फाइनल में मजबूत प्रदर्शन के साथ 3 सिल्वर मेडल भी जीते। 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में मीनाक्षी ने चीन की वू यू के हाथों 0-5 से हारने के बाद सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। और अगर मेडल टैली पर अगर हम नजर डालते हैं तो चाइना सबसे ऊपर है 5 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है 5 गोल्ड के साथ, उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर तीसरे स्थान पर है 4 गोल्ड के साथ, फ्रांस दूसरे चौथे स्थान पर है 2 गोल्ड के साथ, और भारत 5वें स्थान पर है 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ। वहीं बॉक्सिंग की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड कप की, जो 17 से 20 जून के बीच आयोजन किया गया था, और भारत के चेक गणराज्य में आयोजित इस 56वें गोल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए

0: 12 पदक अपने नाम किए। भारतीय मुक्केबाजों ने 8 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है और महिला टीम ने शानदार शुरुआत करी, जिसमें 5 में से 4 मुक्केबाजों ने गोल्ड और 1 सिल्वर हासिल किया। दूसरी ओर पुरुष की टीम ने महिलाओं की बराबरी करते हुए 4 गोल्ड हासिल किए, जिसमें जादूमणि, सचिन, अंकुश, नरेंद्र अपनी अपनी वेट कैटेगरी के चैंपियन बने। और अब जानते हैं फीडे के बारे में।
1: हांगकांग में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप रैपिड एंड बेल्स चेस चैंपियनशिप 2026 का समापन ऐतिहासिक अंदाज में हुआ। दुनिया भर की 48 टीमों के बीच ये मुकाबला ड्रैगन चिलिंग ने रैपिड और बेल्स दोनों खिताब जीतकर शानदार गोल्डन डबल पूरा किया। 17 से 19 जून तक चली रैपिड चैंपियनशिप के मुकाबले में आखिरी दौर का बेहद रोमांचक रहा। शीर्ष 3 टीमें बराबरी पर रहीं, लेकिन बेहतर टाई ब्रेकर के आधार पर ड्रैगन चिलिंग ने खिताब अपने नाम किया।
0: और अब बात कर लेते हैं एशियन रिलेस चैंपियनशिप की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले स्पर्धा की, जहां भारतीय टीम ने स्वर्णीय इतिहास रचा और साथ ही साथ इस रोमांचक रेस में भारत ने मेजबान टीम को पीछे छोड़ दिया। चीन की टीम 44.09 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि थाईलैंड ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला टीम की यह जीत पूरे अभियान का सुनहरा पल साबित हुई और चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने इसी स्पर्धा को अपना पहला पदक जीता। और बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, तो एवीसी नेशंस कप की बात करें तो भारत लगातार 2 जीत के बाद अब तीसरा मुकाबला ताइपेई से खेलेगा। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से उन्होंने 3-0 से जीता, दूसरा मुकाबला कजाकिस्तान से भी 3-0 से जीता और स्कोर रहा 25-16, 25-21, 21-15 का। और ये मैच जो तीसरा मैच है खेलेंगे, ये ग्रुप की स्थिति तय करने में अहम साबित हो सकता है। 2023 में इसी कप में कांस्य पदक जीतकर भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना दिखाया था। और इसके अलावा अगर हम टेनिस पर नजर डालें तो टेनिस के चाहने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि 40 साल की उम्र में क्वीन ऑफ द कोर्ट की प्रोफेशनल टेनिस में वापसी हो गई है। यानी कि आज से, यानी कि 22 जून से शुरू हो रहे विंबलडन 2026 में सेरेना विलियम्स खेलती हुई नजर आएंगी और टूर्नामेंट के आगाज के 8 दिन पहले इसका जो है ऐलान हो चुका था, क्योंकि उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और
1: आकाश कुमार को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों

0: में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नश्यति, केवलम शरीर परिवर्तितम् भवति। श्री कृष्ण अर्जुनम बोधयति यत् कर्तव्यम् कर्तव्यमेव। स वदति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्वे कर्मणि। अर्थात मनुष्यस्य अधिकारः केवलं कर्मणि अस्ति, न तु फलस्य अपेक्षायाम्। एष उपदेशः अत्यन्त महत्वपूर्णम् अस्ति। यदि वयं फलस्य चिन्तां त्यक्त्वा कर्म कुरु तर्हि जीवनं सुखमय भवति। भगवद्गीताया त्रय मुख्य मार्गा वर्णिता सन्ति, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योगश्च है। ज्ञान योग है आत्म तत्वस्य ज्ञानम् प्रददताति। श्री कृष्ण वदति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायाम् भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम् प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम् आत्मा कदापि न जायते न च म्रियते, स कदाचित् अपि उत्पन्न न भवति न च पुनः नष्ट भवति। अयम् अजय जन्म रहित नित्य शाश्वत पुरातन च अस्ति। शरीरस्य नाशे अपि अयम् न हन्यते। अग्रे श्री कृष्ण कथयति नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो है अकर्मण है शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत है कर्मण है। त्वम नित्यम कर्म कुरु यत कर्म अकर्मण श्रेष्ठम अस्ति है कर्मण है तव शरीर यात्रा अपि न सिद्धेत। भगवद गीता इंद्रियाणाम विषय कथयति इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम अम्बशी। यदा मन चंचलानाम विषय विचरतानाम इंद्रियाणाम अनुश्रम करोति तदा तस्य मनुष्यस्य प्रज्ञाम नश्यति। यथा जल मध्ये बहनानाम नाम प्रबल वायु अपहरति तथैव। असंसम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो अर्जुन मन निसंदेह अत्यंत चलम तथा निर्ग्रहम कठिनतम अस्ति, किंतु हे कौन्तेय अभ्यासेन तथा वैराग्येन तस्य नियंत्रणम कर्तुम शक्यते। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठम अकर्मतः कार्यते हयवश कर्म सर्व तीजय गुण। न ही कश्चित मनुष्य कदापि एक क्षण अपि अकर्म कृते तिष्ठति। सर्वजने प्रकृत्या उत्पन्न गुण सत्व रजस तमस प्रेरित सन्न अवश्य कर्म करोति। यद्याचरति श्रेष्ठो देवत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष यत् यत् आचरति तत् तत् अन्य जना अपि आचरन्ति। स यत् प्रमाणम स्थापयति लोकः तत् एव अनुसरति। भक्ति योग विषये श्रीमद् भगवद् गीताया कथयति अयम् ईश्वर प्रेमस्य मार्गः अस्ति। मन्मना भव मद्भक्तो मद्यादि मा नमस्कुरुः मामेवश्यसि सत्यमते प्रतिजाने प्रियो असि मे। हे अर्जुन तव मयि मने स्थाप्य मम भक्त भव मम पूजनम कुरु मा च नमस्कुरु एवं आत्मानं मयि समर्प्य मत् प्रायण सन्न निश्चयेन तव मामे प्राप्स्यसि। अर्थात मन मयि स्थाप्य मम भक्त भव। अग्रे श्रीमद् भगवद गीता समत्व योग उच्यते अस्य शिक्षां ददाति। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवप्स्यसि। अत्र श्री कृष्ण अर्जुन प्रति उपदस्ति यत् हे अर्जुन तव सुखम दुखम च लाभम हानि च जयम पराजयम च समभावेन पश्य एतान सर्वान समान रूपेण स्वीकृत्य स्वधर्मस्य युद्धम कुरु। यदि तवं फलाशक्ति त्यक्त्वा कृत्यम करोषि तर्हि तवं पापं न प्राप्स्यसि। सर्वभूतस्त आत्मानां सर्वभूतानि च आत्मनि इक्ष्यते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्त पुरुष सर्वेषु भूतेषु आत्मानं पश्यति तथा सर्वाणि भूतानि आत्मानि पश्यति, स सर्वत्र समदर्शी भवति। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतोधिक कर्मभिश्चो अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। योगी तपस्वीभ्य अधिक भवति, स ज्ञानीभ्य अपि अधिक मत अस्ति तथा कर्मभिश्च अपि योगी श्रेष्ठ भवति। अतः हे अर्जुन तव योगी भव। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद् उद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। यह पुरुष समत्व बुद्धया युक्त भवति स एव लोके एव सुकृते दुष्कृते च उभयम् त्यजति। स कर्म फलस्य आसक्तिम् त्यक्त्वा संभावेन कर्म करोति तस्मात् तव योगाय

अर्थात समुत्तव बुद्ध्यर्थम युजस्व योग नाम क्रमसु कौशलम क्रमणाम सम्यक आसक्ति रहितम च आचरण योग इति उच्यते। योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते। हे धनंजय तुम संगम फलाशक्ति त्यक्त्वा योग युक्त छन्न है कर्मणि कुरु सिद्धो असिद्धियो च समभावम धार्य ऐसे समत्व भाव एव योग इति उच्यते। अतः कर्तव्य पालन समभावेन करणीयम् अस्य ग्रंथस्य अन्य महत्वपूर्ण संदेशम अस्ति धैर्यम् संयम तथा आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण अर्जुन प्रेरयति उत्थाय सर्वकृत्यम् कुरु अद्यतन जीवने अपि भगवद गीताया उपदेशा अत्यंतम उपयोगी सन्ति। यदा वयम तनावेन चिंतया वा असफलतया पीड़िता भवामः तदा गीता अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। भगवद गीता अस्मान् शिक्षयति यत् जीवनं संघर्षपूर्णं भवति किन्तु धैर्येण श्रद्धया तथा सत्कर्मणा वयम सर्वान् बाधकान् जयेम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीतिर्मतिम अधुना भवन्तः वार्ता श्रुतवन्तः आसन। अस्या विषय आसीत् मानव जीवने श्रीमद्भगवद्गीता महत्व। वार्ताकार है आसीत् जय भगवान है शास्त्री। अनेन सह कार्यक्रमे पूर्णता याति।

जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं, क्या लिए?

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को
1: राम राम।
0: लोकेंद्र भाई बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं अपने श्रोताओं से बात करने के लिए।
1: जी, और प्रीति बहन, अब आपको बता दें कि जो तरक्की हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसमें बहुत सारी तकलीफें भी होती हैं। क्यों होती हैं कि हमारे ग्रामीण भाई सीधे साधे होते हैं, उनके लिए कई बार तो कोई चीज़ प्रथम होती है, उसको पहली बार ही वो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें उसकी जो कमियां हैं उनको जानकारी उनको नहीं होती है। ऐसा ही एक विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में, साइबर क्राइम है ना। और ये मतलब गांव ही इससे अछूते नहीं है, शहरों में तो ये है ही, गांव में भी ये समस्या है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास व्हाट्सएप भी है और फेसबुक भी है या ऐसे सोशल वो हैं, तो उनको कई बार हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद जो उनके चिर परिचित होते हैं, जो उनके अंदर किसी साथी का नंबर होता है, उनके पास पैसे की रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं।

0: उस व्यक्ति को लगता है जो जिसके पास रिक्वेस्ट जाती है, मांग जाती है कि भाई ये तो मेरा दोस्त ही है यार, ये मांग रहा है तो जरूरत होगी इसको, और दे देते हैं, और उनके साथ फिर साइबर ठगी हो जाती है।
1: जी, और इसमें कई बार ऐसी कॉल भी आती हैं जिससे कि हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो डर भी जाते हैं। मुझे
0: जी
1: लगता है कि बहुत लोगों को जब अचानक कॉल जाता है कि हम फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, आपके नाम पर ये फ्रॉड हुआ है, फिर आपको इतने पैसे देने हैं, तो कई बार हड़बड़ाहट में या घबराहट में हम अपनी जो व्यक्तिगत जो हमारी बैंक की डिटेल होती है वो हम साझा कर देते हैं, और इससे होता यह है कि उसको और बढ़ावा मिल जाता है, और इस तरह की चीजें होने से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, मानसिक आपका जो नुकसान होता है वो बहुत ही ऊपर होता है।
0: जी, और भी कई सारे तरीके होते हैं कि वो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं आपकी पासबुक ले जा सकते हैं, कि यारी दोस्ती में ही आप सीधेपन में दे देते हैं, और उसका दुरुपयोग हो सकता है। अपने जो पासवर्ड होते हैं वो कभी भी साझा ना करें, चाहे कोई भी कितना भी घनिष्ठ हो, घर परिवार का ही हो। ओटीपी जो आते हैं वो भी किसी को साझा नहीं करने चाहिए, और बैंक से जुड़े हुए जितनी भी आपके ऐप्स हैं उन पे खास तौर से
1: नजर बना के
0: रखनी चाहिए, और जल्दबाजी में कुछ कार्य नहीं करना चाहिए।
1: और मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारी जो सरकार है समय समय पर इस तरह के संदेश भी देती है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो जिंगल हो, या किसी भी तरह से, वो ये संदेश तो पहुँचाने का काम करती ही है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें।
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही खास विषय है कि जो हमारी धरती माता है उसको जो उर्वरक देने चाहिए वो कैसे देने चाहिए। अब जैसे हम मान लो हम इंसानों की बात करते हैं प्रीति, कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। एक होता है कि जो पूरे जंक फूड खाया जाता है, जो बासा सड़ा या जो अपच वाला खाना है वो खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। एक होता है पौष्टिक खाना होता है,
1: संतुलित होता है
0: हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो हम अगर संतुलित भोजन खाएंगे स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही हमारी धरती है, हमारे खेत हैं, खलिहान है, भूमि है, मिट्टी है,
1: बात आप कर रहे हैं कि वो बरकरार रहे और बढ़े, क्योंकि भाई हमारे पास जो भी अनाज है वो आता तो धरती से ही है।
0: जी,
1: तो उसकी उर्वरक क्षमता जो है वो बनी रहे, जैव उर्वरकों का उपयोग कितना करें, कैसे करें, और मिट्टी की उर्वरकता कैसे रहे, इस पर जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संगीत पांडे, जो कि वैज्ञानिक हैं NBPGR नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित तेवतिया।
2: मित्रों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में कृषि से संबंधित कोई ना कोई ऐसी जानकारी, ऐसी बात आपके लिए जरूर लेकर आते हैं जो हमारी आजीविका, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के उत्पादन में मील का पत्थर साबित होती है। आज हम बात करेंगे जैव उर्वरकों का उपयोग और मिट्टी की उर्वरता, क्योंकि आज के समय में जहां हम अपने उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं वहीं हमें अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे फल सब्जियां या कृषि उत्पाद चाहिए कि जो हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ना डालें। तो उनके लिए आवश्यक है कि हम अपने खेतों में जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संगीता पांडे को। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं NBPGR से, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले, जैसा आज का हमारा विषय है कि जैव उर्वरकों का उपयोग, तो इसमें बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन ऐसे हैं कि जो पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक क्या होता है?
3: मुझे लगता है किसान भाइयों ने जरूर ही सुना होगा, जैव उर्वरक होते हैं सूक्ष्म जीव, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उसी तरह फसलों को भी जो है न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनकी पूर्ति करने के लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन जैव उर्वरक जो है इन रासायनिक उपयोगों का न करके हम जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो फिक्स करता है, जैसे राइजोबिया का नाम सभी ने सुना होगा, एजेटोबैक्टर। जैसे दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है फास्फोरस। अब फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे मिट्टी में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, उपलब्ध होते हैं, लेकिन चूंकि हमने अपने रासायनिक खादों का उपयोग इतना ज्यादा कर दिया है कि इनका बैलेंस बिगड़ गया है, तो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो हमारा बायोफर्टिलाइजर है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि फास्फोरस की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। तीसरा ग्रुप है हमारा पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग सूक्ष्म जीव, ये भी एक बायोफर्टिलाइजर है जिसको हम अपने खेतों में यूज करते हैं। और पोटेशियम मैं बताऊं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि फसलों को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसके

0: अलावा जो है माइकोराइजा होता है, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इसके अलावा जो मिट्टी में हमारे कार्बन की मात्रा न कि इंडिया में लेकिन पूरे विश्व में ही इसकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। अब इसकी वजह से क्या है कि जैसे अगर कार्बन की मात्रा कम हो गई है तो हम चाहे जितने भी फर्टिलाइजर डालें, कोई भी वैरायटी, कितनी भी इंप्रूव्ड वैरायटी लगाएं, हमारे जो है उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हमारे कार्बन के बैलेंस को अपनी मिट्टी में ठीक करना बहुत जरूरी है, और इसमें भी जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है।
1: यानी कि जैव उर्वरकों को हम कह सकते हैं कि जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग खेती में दिन पर दिन अंधाधुंध कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता को क्षीण कर रहे हैं। तो उन्हीं को बनाए रखने के लिए, जिससे मिट्टी उर्वरक रहे, तो हमें जैव उर्वरकों का प्रयोग करना है। आपने बहुत से नाम लिए, राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, तो इनका जब हम प्रयोग खेती बाड़ी में करते हैं तो ये कहां से हमें प्राप्त हो सकते हैं? मानो कोई किसान भाई हमारा कार्यक्रम सुन रहा है और उसके दिमाग में आया कि चलो अब हम अपने खेत में रसायन उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे और जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, ये मन बना लिया, तो उसे जैव उर्वरक कहां से प्राप्त हो सकते हैं आसानी से?
0: जैव उर्वरक बहुत ही आसानी से बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा एरिया में जो कृषि विश्वविद्यालय है या जो केवीके है वहां से भी आप ले सकते हो। हमारे संस्थान पूसा में डिफरेंट ऑल जितने भी तरह के जो जैव उर्वरक हैं वो सभी उपलब्ध हैं, तो किसान भाई ये पूसा से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर बनाती हैं, उनका भी अपना जैव उर्वरक का एक प्लेटफॉर्म होता है और वो भी बेचती हैं।
1: यानी कि कह सकते हैं कि किसान भाई नजदीकी जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय हैं, इनसे भी जैव उर्वरकों के विषय में जानकारी ले सकते हैं और कहां से प्राप्त कर सकते हैं ये जान सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए जैव उर्वरक हम ले भी आए, अब बात आती है इनके प्रयोग की, इनका सही एक संतुलन में कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए और किस फसल में किस जैव उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे?
0: जैव उर्वरक को ले लेना और उसको किसी भी तरह से प्रयोग करना तो ये उचित लाभ नहीं देगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है फसल विशिष्ट जैव उर्वरक यूज करें। जैसे कि मैंने कहा राइजोबिया, जो राइजोबिया का टीका होता है, बहुत सारे किसान भाई ये जानते होंगे, हम अपने दलहनी फसलों में यूज करते हैं। लेकिन दलहनी फसलों में भी ये चूंकि ये फसल विशिष्ट होता है राइजोबिया, तो आप ये नहीं कर सकते कि जो अरहर का जो राइजोबिया है आप चने में यूज करें। अरहर का राइजोबिया आता है और वो पैकेट में लिखा होता है कि ये राइजोबिया आप जो है अरहर में यूज करें, तो आपको ये देख के लेना होगा कि जो आप जैव उर्वरक ले रहे हैं बाजार में वो आप किस फसल के लिए ले रहे हैं। तो आपने जैसे राइजोबिया लिया, अब इसका उपयोग बहुत ही सरल है, आप इसका एक पैकेट लेंगे, उसके बाद आप थोड़ा गुड़ लीजिए, आधा किलो के अराउंड आप गुड़ लीजिए, पानी में अच्छे से घोल लीजिए, फिर जैव उर्वरक का एक पैकेट मिला के उसको अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि उसको छाए में सुखाना है, ये नहीं कि आप उसको धूप सुखा दें। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि ये जो जैव उर्वरक है इसमें जो है सूक्ष्म जीवाणु है, जिसमें जीव है, तो आप इसको बहुत गर्म या बहुत ठंडा करेंगे तो ये मर जाएंगे, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि आप इसको बहुत तेज धूप में या बहुत गर्म पानी में ऐसे इसको ना घोलें। उसके बाद उसमें आप जो भी बीज आप लगाना चाहते हैं उसको उस घोल में आप डालें, फिर उसको छाया में सुखा लें और फिर इस बीज को आप अपने खेतों में लगाएं। तो ये राइजोबिया लगाने का तरीका है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एजेटोबैक्टर, अब एजेटोबैक्टर भी एक जो है आपके नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो जैसे मैंने कहा कि राइजोबियम दलहनी फसलों के लिए होता है, तो एजेटोबैक्टर जो है आप उसमें अपने गेहूं के खेत में, आप अपने गन्ने के खेत में, आप अपने ज्वार के खेत में, इनमें आप यूज कर सकते जो एजेटोबैक्टर है। तो इसका प्रयोग है आप कंपोस्ट लीजिए, कंपोस्ट में आप इसका पैकेट खोल के अच्छे से मिला लीजिए और फिर ये अपने पूरे खेत में इस कंपोस्ट को छिड़क दीजिए और मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए, तो ये इसका तरीका है। उसी तरह से आप जो दूसरा ग्रुप है जैसे फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, फास्फोरस सभी किसान भाई जानते होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है, जो इसका रासायनिक फर्टिलाइजर है, जैसे कि आप डीएपी यूज करते हो, आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज करते हो, तो होता ये है किसान भाइयों कि अगर हमारे जो मिट्टी है अगर उसका पीएच ठीक नहीं है तो क्या होता है कि आप कितने बोरी के बोरी ही आप सिंगल सुपर फास्फेट डालें या डीएपी डालें, ये आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है आपके मिट्टी के साथ, वो फिक्स होगा, वो पानी में घुलेगा नहीं और आपके पौधों को उपलब्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पदार्थ रिलीज करता है जो कि ये फास्फोरस जो मिट्टी में फिक्स हो गए हैं उसको घुलनशील बनाता है और ये फिर पौधों को उपलब्ध होता है। तो हमारी सलाह तो ये होगी कि चाहे आप अगर मान लीजिए फर्टिलाइजर डीएपी आप डाल रहे हैं उसको कम मात्रा में डालें और उसके बाद जो है आप सिंगल सुपर फास्फेट का बायो फर्टिलाइजर, आप जो जैव उर्वरक है उसको आप अपने खेतों में जरूर यूज करें। इसके अलावा जैसे धान में हम ब्लू ग्रीन एल्गी यूज करते हैं, जो कि उसको जब धान को जब हम रोपाई कर देते हैं उसके बाद जब खेतों में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी होता है तब

0: हम ये ब्लू ग्रीन एल्गी का जो पैकेट है उसको अपने खेतों में छिड़क देते हैं और तब ये ग्रो होता है और ये धान के साथ ही आपके खेत में उगेगा और उसके बाद हम इसको ये मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये तरीका है ब्लू ग्रीन एल्गी को, क्योंकि उसको पानी चाहिए इसीलिए ये धान में विशेषकर यूज करते हैं।
1: यानी कि राइजोबियम अलग प्रकार से प्रयोग होगा, एजोटोबैक्टर अलग तरीके से हम प्रयोग करेंगे, और नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की फसल में अलग तरीके से करेंगे। निश्चित रूप से किसान भाइयों के मन में आ रहा है कि जब मुख्य पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी जैव उर्वरकों से मिल रहे हैं तो क्यों ना इन्हीं का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बढ़ी रहे। लेकिन बात आती है उत्पादन को लेकर, कहीं ना कहीं किसान भ्रमित होते हैं कि जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी फसल ऐसी हो रही है, कहीं हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करें तो इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये रासायनिक उर्वरक जो है ये एक्चुअली बहुत जगह तो इनकी जरूरत ही नहीं होती।
1: जी
0: जैसे कि हम जो यूरिया नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं दलहनी फसलों में, तो उसमें क्या होता है कि वो जो गांठ बनती है दलहनी फसलों के जड़ में, तो अगर आप देखोगे कि आपने यूरिया डाला है तो वो गांठ बनेगा ही नहीं उसमें, क्योंकि उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने मिट्टी में ही यूरिया डाल दिया तो वो मिट्टी से ही अपना नाइट्रोजन ले लेगा। लेकिन आपने अगर यूरिया नहीं डाला है या बहुत कम मात्रा में डाला है तो वो आप देखेंगे कि उन दलहनी फसलों में बड़ी बड़ी गांठें बनी है और राइजोबिया जो कि मिट्टी में है वो अपने आप उसमें चला जाता है और आपके नाइट्रोजन की उपलब्धता पौधों को करता है। तो इससे क्या होता है, आपके उर्वरकों की जरूरत जो है 30 से 40% कम हो जाती है। तो उसी मात्रा में आपको देख के आपके रासायनिक उर्वरक हैं उनको धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं। और जैसे कि गेहूं में आप यूज कर रहे हो तो आप यूरिया की जगह जो है आप एजेटोबैक्टर यूज करो, और उसके बाद मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है, तो मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगी आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय या जो केवीके है वहां पे जाएं और अपने सॉयल का सॉयल हेल्थ कार्ड जरूर बनवाएं। तो उसमें आपको पता चलेगा जो खेतों की मिट्टी है उसमें कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेशियम, तो ये 12 पैरामीटर बताता है। इवन पीएच आपका जो है कहीं लवणीय है या क्षारीय है, कहीं बहुत एसिडिक तो नहीं है, तो ये सब चीजें जो है आपको पता चल जाएंगी। तो उस हिसाब से आप अपने मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि अगर हमें मिट्टी का स्वास्थ्य पता ही नहीं कि मिट्टी में कैसे कैसे क्या क्या तत्व है, और हम बिना जाने ही मतलब फर्टिलाइजर बोरी की बोरी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी, और कई तो ऐसा होता है कि उनकी जरूरत ही नहीं है, और तो उसके ना फसल बढ़ती है और ऊपर से आपकी मिट्टी भी खराब हो रही है। इसी विषय को लेकर अभी सरकार ने खेत बचाओ अभियान भी चलाया है, जिसमें हम वैज्ञानिक किसानों को जाके ये जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, और हमने रिसर्च में देखा भी है कि जहां पे हम जैव उर्वरक यूज करते हैं वहां पर हम लगभग 50% तक जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है डॉक्टर संगीता पांडे की, आप जैसी देश की बेटियां जो वैज्ञानिक पदों पर हैं, शोध कर रही हैं, अनुसंधान कर रही हैं, ये वैज्ञानिक सोच हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, खेत खलियानों तक पहुंचे और वो खिलखिलाएं, किसान की मिट्टी बचे, किसान का स्वास्थ्य बचे, किसान का परिश्रम बचे। तो जब बात आती है मिट्टी की उर्वरता की, तो मिट्टी की उर्वरता पे सीधे सीधे अगर पूछा जाए कि जैव उर्वरक का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: एक्चुअली मिट्टी की उर्वरकता जो है ये नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि हमने जब ये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग शुरू कर दिया है तो इनका जो पॉपुलेशन है वो गड़बड़ा गया है, मतलब अब वो है ही नहीं, तो इसीलिए हमें ये ऊपर से डालने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम एक जो स्वस्थ मिट्टी की बात करें तो ये जो जैव उर्वरक है वो प्राकृतिक रूप से ही मिट्टी में उपलब्ध होते हैं। तो जैसे कि कोई भी आप जहाँ की मिट्टी लीजिए जहाँ पे बहुत दिनों से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आप देखेंगे कि ये सभी जो जीव हैं वो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये जो जैव उर्वरक हमने बनाए हैं ये जो सूक्ष्म जीव है कहाँ से लिए हैं, हमने इनको मिट्टी से ही निकाला है और फिर लेबोरेटरी में इनका संख्या बढ़ा के एक फॉर्मुलेशन बना के हम फिर फार्मर को पहुंचा रहे।
1: बिल्कुल, यानी कि मिट्टी की उर्वरता निश्चित रूप से अगर हमें बचाए रखनी है तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। और इसी बातचीत में चलते हुए ये एक और प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि अगर हम जैव उर्वरकों को रोजगार की दृष्टि से देखें कि हमारे जो युवा साथी हैं, किसान भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं रोजगार की संभावना भी कृषि में तलाशते हैं, तो जैव उर्वरक और एवं रोजगार इनको आप किस प्रकार से जोड़ेंगे?
0: जैव उर्वरकों में रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे 70% जो हमारी आबादी है वो किसी न किसी तरह से किसानी में लगे हुए हैं, तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो हेल्दी प्रैक्टिस है, जैसे कि अच्छे तरीके से जो खेती करना होता है जिसमें कि हम जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं, अगर उसमें रोजगार की संभावना ढूंढे, जैसे आपने जीवामृत और इन सब चीजों का नाम सुना होगा, तो जैसे कि कई जगह, बहुत जगह ये यूज हुए, बहुत जगह डेमो दिया गया और देखा गया कि ये बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो जीवामृत क्या है, ये सूक्ष्म जीव ही है, तो इनका क्या हुआ है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपने गांव

0: भी मान लीजिए एक कोई प्रोग्रेसिव युवा एक ये ले सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो अच्छे अच्छे जो बायो फर्टिलाइजर के जो स्ट्रेन है वो ले ले और वो अपने गांव में ही वो उसको मल्टीप्लाई करके सभी को दे सकता है। और इसकी विधि बहुत ही आसान है, इसकी IRI में हमेशा ट्रेनिंग होती रहती है, ये वेबसाइट पे आता रहता है कि कैसे हम अपने खेतों में ही बायो फर्टिलाइजर का बड़े स्केल पे बना के और हम बांट भी सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी कि जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता बचाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, हमारे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बनाएंगे, रोजगार की भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: साथियों, मिट्टी को सोना बनाने का जो उपाय इस कार्यक्रम में बताया वो बहुत ही खास है। अभी आप सुन रहे थे बातचीत जैव उर्वरकों का उपयोग और मिट्टी की उर्वरता, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पांडे। आप वैज्ञानिक हैं NBPGR में नई दिल्ली से, और इनसे बात कर रहे थे अमित तेवतिया।
3: और इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं हरेंद्र नागर की आवाज में ये रागिनी।
4: भई धरती की सो

0: भाई हमारे मन की बात इस रागनी ने कह दी, और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं एक और दिल की बात जो हमारे शरीर, मन, हमारे खेत, हमारे परिवार और जहान से जुड़ी हुई है, अन्न से जुड़ी हुई है, रोटी से जुड़ी हुई है।
1: तो कलाकार हैं प्रकाश सिंह भाटी, और उनके साथ ही लेकर आए हैं ये रागिनी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे प्रकाश सिंह भाटी और साथियों को। इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम आप यहीं पर
1: संपन्न होता है और सुनने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उनको हम राम राम, राम करते राम। हैं। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वागचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के

0: अति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को राम राम। जी हाँ, सांझ का समय है और अब आपके लिए बहुत सारी जानकारी भी है और जानकारी के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी, और आपको मौसम की भी जानकारी देंगे क्योंकि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी पर किसान की ज़िंदगी निर्भर करती है, दिनचर्या और समय निर्भर करता है। तो फिलहाल जानकारी की बात करते हैं।
1: तो जानकारी हम दिलवाएंगे कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाना, और इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RPL यादव, जो कि हेड हैं IFFDC गुरुग्राम में। आइए जानते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। स्वस्थ रहने के लिए आपको शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है, और उसी तरीके से हमें अपने खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए मृदा में भी जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है तो उसके हिसाब से आप अधिक उत्पादन ले पाते हैं। लेकिन मृदा में कार्बन का भी बहुत बड़ा महत्व है, धीरे धीरे इसकी मात्रा कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। कार्बन को एकत्र करने पे सरकार भी जोर दे रही है, और कार्बन का

0: फसलों के उत्पादन पे या इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आरपीएस यादव जी, जो कि इफको में कार्यरत हैं और मृदा वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, हम ये कार्बन की बात करते हैं, कार्बन सिंक, कार्बन बढ़ाओ प्रणाली या इस तरीके से एकत्रीकरण कार्बन का, ये क्या है?
1: सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कार्बन होता क्या है।
0: जी,
1: हमारी जो मिट्टी है उसमें आमतौर पर 1 से 1.5% कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अगर आप मृदा परीक्षण के आधार पर देखेंगे तो ये घट करके 0.3 और 0.2 रह गया है। ये हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व होता है उसी तरह से ये ऑर्गेनिक कार्बन हर एक मिट्टी के लिए, मृदा के लिए, वो एक प्राण तत्व के रूप में है। अब बराबर ये प्राण तत्व कम होता जा रहा है, जैसे कि हमारे किसान भाई देखते हैं कि अगर 40 साल 45 साल पहले की बात करें तो खाद डालते थे और 1 किलो खाद डालने से करीब 13-14 किलो अनाज पैदा होता था, और ये आज की स्थिति में घट करके 3 और 2.5 किलो रह गया है।
0: डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कार्बन का अनुपात मृदा में, ये धीरे धीरे कम क्यों होता जा रहा है, क्या कारण है?
1: बहुत सही बात है, क्योंकि यही जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कारण है जिससे कार्बन का जो स्तर है वो घटता जा रहा है, तो मैं सारे किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप देखते हैं कि किसान भाइयों की जो आदत है खेत में जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा और कई 2 गुना 3 गुना खाद डालते रहते हैं रासायनिक खाद। उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो जमीन की जो जिसको हम लोग भौतिक अवस्था बोलते हैं उसमें उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। भौतिक अवस्था में अगर हम देखें तो उनके अंदर अम्लीयता आती है, उनके अंदर पानी रोकने की क्षमता होती है वो कम होती है, जो धीरे धीरे से हमने जमीन में कार्बनिक पदार्थ को तो डाल नहीं रहे, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले 40-50 सालों में हमारी जमीन के अंदर ये लगातार जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो घटता जा रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि जब तक हम अपनी जमीन में संतुलन नहीं बनाएंगे, खाद देने की जो प्रक्रिया है उसमें नहीं सुधार करेंगे, तो ये लगातार और घटता जाएगा और हम सबके लिए एक चुनौती होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आपको अनाज चाहिए
0: जी,
1: और आपकी जमीन है वो भी कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जब तक कार्बन सिंक नहीं करेंगे, अपने कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको नहीं बचाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आने वाला समय हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्बन सिंक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जिनको किसान भाई अपना सके?
1: अभी हमारे जो देश में भी ये सोच आ रही है कि जो कार्बन घट रहा है उसको हम कैसे बढ़ाएं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हमारे किसान भाई जितना भी रासायनिक खाद डालते हैं उसको मृदा परीक्षण के आधार पर ही डालें, ज्यादा न डालें। नंबर एक तो इसका बहुत सारा दुष्परिणाम हो रहा है। दूसरा, अपनी जमीन में बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि एक ही फसल गेहूं है तो गेहूं है, धान है तो धान है, एक ही फसल लेते हैं, तो अपनी फसल का फसल चक्र अपनाएं। क्रॉप रोटेशन अपनाने से ये होगा कि हमने अगर गेहूं की फसल की है, इस बार हमने दलहनी अनाज की फसल किया तो हमें तिलहनी फसल लानी पड़ेगी, नहीं तो हर फसल एक जमीन के स्तर से अपना खाद लेती रहेगी, पोषण लेती रहेगी और नीचे की जमीन में उसका उपयोग नहीं होगा। आप देखते हैं कि दलहनी फसलों के अंदर जड़ों में गांठें होती हैं, उन गांठों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो उनका जो काम होता है कि जो हमारी जमीन के अंदर जो फास्फोरस पोटास मिला है उसको घोल करके या मोबिलाइज करके पौधों को तक लाके देते हैं। दूसरा, हमारी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको भी ला करके पौधों को देते हैं। उसके साथ साथ जब वो मरते हैं या जड़ें सड़ती हैं तो वो अपने आप को भी ये कार्बन की तरीके से जमीन को सौंप के जाते हैं। एक तो हमारा दलहनी फसलों का इनका क्रॉप रोटेशन करें, दूसरा बहुत सारे हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हमें किसान भाइयों को उपयोग करना पड़ेगा। बहुत सारा अभियान चल रहा है बायोचार जिसमें कि जो हमारा क्रॉप बेस्ड होता है उसको हम धुआं रहित तरीके से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसे हम जलाते हैं और फिर उनको मिलाकर के जमीन में लेके जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, साथ साथ एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल्स। अगर हमारी खेत में खेती पेड़ों के साथ करेंगे तो पेड़ों से हमें जो पत्तियों का मिलेगा उन पत्तियों को मिलाकर के जमीन में डालेंगे तो वो कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। अगर अभी बरसात आने वाली है और इस बरसात के आने से पहले अभी हमारी बिल्कुल तैयारी है, खेत एकदम खाली पड़े हैं, तो अभी सही समय है कि किसान भाई उसमें जो उनके पास गोबर की खाद है या उनको ऑर्गेनिक खाद या बायो फर्टिलाइजर डालने हैं या डिकम्पोजर उनके पास है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो हमारी फसल का अवशेष रह जाता है उसको किसान भाई उठा के बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं,

यही इसको हम कैसे प्राण तत्व में बदलें, उसके लिए बायो डिकम्पोजर बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका अगर हम किसान भाइयों से ये निवेदन है कि उसका घोल बना करके और छिड़काव कर दें, तो 40-45 दिन में जितना भी आपका कूड़ा कचरा होता है उसको सबको ज़मीन में मिला देता है, और वो एक ऑर्गेनिक मैटर के तौर, ऑर्गेनिक कार्बन के तौर पर हमारी ज़मीन को उपलब्ध होता है। उसके मिलाने से एक तो हमारी ज़मीन भी नहीं ख़राब हो रही, और जो हम जला रहे थे वो भी उससे

0: थे,
1: जी
0: आजकल गहरी जुताई कोई नहीं करता, सरफेस पे जुताई कर रहे हैं। तो गहरी जुताई करने से जो नीचे के जो बैक्टीरिया थे हानिकारक, वो मर जाएंगे, और एक सोलर जिसको हम लोग कहते हैं सोलराइजेशन जमीन का होगा, इससे अवांछित जीव जंतु मर जाएंगे और अच्छे जीवाणु, उनको नई तरीके से ब्रीदिंग करना, नई तरीके से उनके अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया वो पूरी होगी।
1: और मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़े।
0: मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ने से ही ये सारे चीजें परिवर्तन होगा, क्योंकि मृदा के अंदर जो कठोरपन आ गया है, तो उस कठोरपन के कारण मृदा के अंदर आप देखते हैं कि पानी अंदर जमीन में जाता ही नहीं, सरफेस पे ही रहता है, क्योंकि हमारी जमीन हार्ड हो गई है, बहुत सख्त हो गई है।
1: एक्चुअली जो ये रोटावेटर आया ना, रोटावेटर से केवल ऊपर ऊपर जुताई होती है।
0: जी
1: पहले कल्टीवेटर और मिट्टी पलट हल से करते थे, जब मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती थी, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती थी।
0: रोटावेटर का जो उपयोग किया जा रहा है, मुख्य तौर से जितने भी हमारी हरी खाद है या जो क्रॉप रेजिडू, उसको जमीनों मिक्स करने के लिए, उसको खेत के जुताई से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि अगर उसको ज्यादा पलटने के लिए तो आपको डीप प्लॉइंग करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की जितनी भी घास कचरा या गोबर की खाद या हरी खाद या जिस तरह से आपने किया, उसको ऊपर की सरफेस में मिलाने के लिए रोटावेटर का उपयोग करें, ना कि उसको
1: जुताई
0: जमीन के
1: के
0: अंदर
1: लिए तो
0: दिखाने।
1: कल्टीवेटर का प्रयोग करें।
0: यस, कल्टीवेटर और मोल्ड वोल प्लाव जिसको बोलते हैं, डीप प्लाव करते हैं, वो समर में करना चाहिए, और समर में नहीं कर रहे हमारे किसान भाई, क्योंकि उन्होंने एक फसल कटती है दूसरी फसल की तैयारी कर लेते हैं,
1: जी
0: तो जमीन को एकदम रेस्ट ही नहीं दे रहे, उनकी व्यवस्था है जो उसको बिल्कुल खराब करके रखा है, तो उसमें जब तक हम लोग नहीं सुधार करेंगे तब तक ये जीवांश जो कार्बन है वो हमारी जमीन में नहीं बढ़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था एग्रो फॉरेस्ट्री का,
0: जी
1: तो एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा किस तरीके से कार्बन सिंक बढ़ाया जा सकता है?
0: जैसे कि बहुत सारे पौधे हैं जो कि हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, तो अगर हम खेत की मेड़ों पर, अगर हम किनारे किनारे पे पेड़ लगाएंगे और बीच में हम खेती करेंगे, एक ये तरीका है। दूसरा क्या हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि अगर आपने 8 मीटर की लाइन पे अगर आपने पौधे लगाए हैं, पूरी एक लाइन लगाई है, उसके बाद खेती कर रहे हैं, सबसे फायदा यह है कि उनकी जो पत्तियां हैं उनको आप जब छांटते हैं, काटते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो उनका जो मेटेरियल आता है
1: जी
0: पत्तियों को, हम फिर सड़ा करके अपनी जमीन के अंदर मिला सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे से पेड़ कम हो रहे हैं, तो जब तक हम इस तरह के पौधों को नहीं लगाएंगे अपनी जमीन पे, हमारे किसान भाई चाहते हैं कि हमें गोबर की खाद मिले या पत्तियों की खाद मिले, लेकिन पेड़ ही नहीं है तो पत्ती की खाद मिलेगी कहां से।
1: जी
0: तो जब तक हम ये एग्रो फॉरेस्ट्री को अपने किनारों, खेत के किनारे में या बीच में नहीं लगाएंगे, तब तक वो आपके लिए पदार्थ नहीं मिलेगा और आप उसको नहीं लगा सकते। तो अगर जिन किसान भाइयों के ऑलरेडी खेतों पे पौधे लगे हुए हैं, तो उनकी जब कटाई छटाई करते हैं, उनको जलाएं नहीं, उनको फेंके नहीं, उनको अच्छी तरह से सड़ा करके, जिसमें आप बायोडिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं, और उसको जमीन में डालें, जिससे कि हम कहते हैं कि बैक टू सॉइल, क्योंकि जो भी हमारा जमीन से हमने लिया था वो पुनः उसको हम जमीन में डालें, जिससे कि हमारी मृदा का, हमारा जो एक श्रेय था उसको हम वापस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना भी हम जमीन से ले रहे हैं उसको हम वापस अपनी मृदा को दें, तभी वो हमारे लिए लगातार अन्न पैदा करती रहेगी।
1: और डॉक्टर साहब, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इफको क्या प्रयास कर रही है?
0: इफको ने हमेशा भूमि को एक प्राथमिकता के तौर पर रखा है, और शुरुआत से ही हमने बैलेंस फर्टिलाइजर पे काम किया है, और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हमने नैनो फर्टिलाइजर्स का भी लेके आए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ मिलकर के नीम की 6 वेराइटीज तैयार की है, और इन 6 वेराइटीज में 2 तरीके के, कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं,
1: जी।
0: तो ये जो नीम की वैरायटी हैं उनमें बहुत जल्दी फल आते हैं, और फल से फिर हमें तेल मिलता है, तेल के साथ साथ उसके अंदर जो मात्रा है तेल की वो करीब 42 से अधिक% है, और एक एजरेक्टिन कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि पेड़ों में कीटाणु नाशक जो ताकत है वो 2000 ppm से ज़्यादा है। और हम ये भी काम कर रहे हैं कि किसानों को हर साल करीब 10 लाख से ज़्यादा पेड़ हम बांटते हैं, और अभी हमारा अभियान चल पड़ा है कि जो भी किसान भाई पेड़ लगाना चाह रहे हैं, अभी से हम नीम के पौधे, हमारी पूरी तैयारी हो रही है, और वो गांव-गांव में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये इस बरसात में मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि इफको के द्वारा तो ये पौधे दिए ही जाएंगे, लेकिन अपने स्तर से भी पौधे तैयार कराएं, लगाएं। बहुत सारे कार्यक्रम में पौधों को हमारे किसान भाई ले जाते हैं, लेकिन उनकी देख रेख नहीं करते, तो उनका परिणाम नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ, अगर पेड़ लेके जा रहे हैं तो उनकी रखवाली भी करिए, वो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। जो भी पेड़ मिल रहे हैं आप जरूर अपने उनको लगा करके अपने खेत पे लगाइए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि नीम के अलावा और भी तो पौधे लगाए जाते हैं।
0: तो बहुत सारे पौधे हैं जो कि अभी आप देखेंगे, एक मदार प्लांट जिस पौधा बोलते हैं, या जिसको मिलिया डोबिया इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छा पौधा है और बहुत फास्ट ग्रोथ है, और सबसे अच्छी उसके साथ बात क्या, किसान भाइयों को डर ये रहता है हम अगर खेत में पेड़ लगाएंगे तो हमारी फसल कम हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर धारणा यह है कि छाया से फसल कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये जो मिलिया डोबिया डोबिया जो पौधा है, FRI से कई वैरायटी ऐसे निकली हैं।

0: जो कि खेती के साथ हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री में उसको बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं। दूसरा, उसका जो प्रभाव है, जब हमारी फसल खड़ी होती है रबी की, तब उसमें पत्तियां नहीं होती, तो किसान भाइयों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके बाद जब पत्तियां आती हैं, समर में बहुत पत्तियां आती हैं, उनको छांट करके हम जमीन के साथ बहुत अच्छी तरीके से उनको मिला सकते हैं। और इनके ये भी कहा जाएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं, तो मिलिया डूबिया को जरूर कॉर्पोरेट करें। दूसरा, एक सूबबूल, सूबबूल के साथ बहुत अच्छी बात है कि उसके पास, उसको आप जानवरों को भी खिला सकते हैं, तो उनसे जो फोलियज होता है और फास्ट ग्रोथ होता है, और अगेन उनकी भी जो पत्तियां आती हैं उनको जमीन में मिला करके हम बहुत अच्छी तरह से काम ले सकते हैं। और मिलिया डूबिया में 5 साल की उसकी साइकिल होती है, 5 साल में आप उसको काट करके दोबारा भी उसके रोपण कर सकते हैं। और 5 साल में जो आपको लगता है, एक एग्रोफॉरेस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बरसात कम होती है तो फसल पर नुकसान होता है, लेकिन जब एग्रोफॉरेस्ट्री होती है जहाँ पेड़ लगे हैं तो उनके ऊपर उसका प्रभाव कम होता है। आने वाले समय में हमारे किसान भाई सुन रहे हैं कि अल नीनो का असर आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल है वो हमारे सबके लिए एक जीवन रेखा के तौर पे है। हमें सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जहां भी उनके पास जो भी उपलब्ध पौधे हैं उनको जरूर एग्रोफॉरेस्ट्री में डालें, और जो नुकसान गर्मी के कारण होने वाला है वो पेड़ उसको कम करेंगे, और आपका जो एक लॉस है उसको कहीं कहीं तरीके से एग्रोफॉरेस्ट से मीट आउट किया जा सके।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया, लेकिन जब हम पेड़ लगाते हैं मेड़ पे या कहीं दूसरी जगह, तो उसके नीचे भी कई फसलें ऐसी हैं जिनको उगाया जा सकता है, जैसे अदरक हो गई, हल्दी हो गई।
0: वो एक एग्रोफॉरेस्ट्री का पूरा एक सिस्टम है कि अगर छाया में लगा, आपने घने पेड़ लगाए तो छाया में भी क्या लगा सकते हैं, तो हर एक जगह अलग अलग। अगर आप साउथ में देखते हैं तो वहाँ पेड़ों के साथ आप काली मिर्च को लगाते हैं जिससे उसमें चढ़ के जाती है, जैसे अदरक हल्दी की कह रहे हैं। बहुत सारा मिट्टी के ऊपर डिपेंड, अगर मिट्टी आपकी हल्की है
1: जी,
0: तो उसमें ये चीजें नहीं चलेंगी, अगर मिट्टी आपकी अच्छी है तो छाया वाली जगह अदरक हल्दी इस तरह की चीजों को लगा करके भी हम लोग पैदावार ले सकते हैं।
1: तो इससे भी कार्बन सिंक बढ़ेगा।
0: कार्बन सिंक बढ़ने के पीछे, क्योंकि हमने ये देख रहे हैं कि कहीं उनमें खाद नहीं डाल रहे, नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो जो डिकम्पोजिशन हो रहा है या पेड़ों की पत्तियां जा रही है, तो निश्चित रूप से आपकी जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो समुद्र है उसमें कार्बन सिंक सबसे ज्यादा है, तो समुद्र से बहुत सी चीजें निकाल के कैसे ऐसे उर्वरक बनाए गए हैं, उनका प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा?
0: क्योंकि आप देखते हैं कि समुद्र में बहुत शैवाल है, ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ब्लू एल्गी होती है, और उसको देखने के बाद ये पता चला कि उनका जो रस निकलवा करके दिखवाया, जिसको कि हम सागर का के नाम से प्रमोट कर रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और उनके पास बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। उसके छिड़काव करने से, उसको जमीन में मिलाने से दो तरीके से सागर का मिल रही है, एक तो तरल में भी है, दूसरे दानेदार भी है, तो उसके उपयोग करने से हमारे जमीन के अंदर प्राकृतिक तौर से ही उनके अंदर कार्बन बढ़ता है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर के दुष्परिणाम होते हैं उनको भी वो कम करने में सहयोग होती है। तो मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि बहुत सारे सागर का जो, जिसको हम लोग सीवीड एक्सेस करते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाएं बेचती हैं, इफको उसको सागर का के नाम से बेचती है, तो उसका जरूर उपयोग करें। उसके उपयोग करने से हम अपनी मृदा को हेल्दी और स्वास्थ्य बना सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मुख्य उद्देश्य यही है कि मृदा को किस तरीके से स्वास्थ्य बनाया जाए, चाहे उसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाया जाए, उसमें कार्बन सिंक बढ़ाया जाए, या जो भी हमारी फसलों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है उनको बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है।
0: पोषक तत्वों की उपलब्धता एक अलग मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो देखते हैं कि हमने यूरिया दे दिया तो सारी चीजें, हमने खाद दे दी, नहीं, यूरिया से सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलता है, वो भी आप देखते हैं कि 15-20% से ज्यादा उसकी उपलब्धता नहीं होती है। हमारे किसान भाइयों को ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि यूरिया ही एक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, उसके लिए बहुत सारे आपके डीएपी है, पोटास है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी आदमी को हम रोटी रोटी खिलाते रहे, उसके लिए और भी दूसरी चीजें नहीं लाएं, तो वो स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए मृदा को स्वस्थ रखना है तो हमें इन सब चीजों को भी डालना पड़ेगा, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी डॉक्टर आरपीएस यादव जी, आप किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे कि किस तरीके से मृदा में कार्बन सिंक बढ़ाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत ही खास जानकारी अभी हमारे साथियों ने सुनी, और कार्बन फार्मिंग और मृदा में कार्बन सिंक कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आरपीएस यादव, और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: और आइए अब हम सुनवाते हैं उपदेश श्री श्रीपाल मार्शल की आवाज में।

महले अटारी को न्या उसका जंगल के मैं डेरा से, महले अटारी को न्या उसका जंगल के मैं डेरा से, लाखों सरप लिपट रे तन पे को न्या उसके सेहरा से, लाखों सरप लिपट रे तन पे को न्या।

जी, श्रीपाल मार्शल ने कितना अच्छा भजन सुनाया, और ये हमारी संस्कृति भाव और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। और अब जल्दी से मौसम की जानकारी दे देते हैं। आगामी 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा? आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के वक्त

0: आपको आंधी तूफान और बिजली चमकने की घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब जल्दी से आपको बता दें कि
1: किसानों के लिए जो हम सलाह देने की बात कर रहे हैं कि कैसे वो ध्यान रखें, धान की नर्सरी में बकाना बीमारी के हमले पर लगातार नज़र रखने की सलाह दी जाती है, और अगर कोई लक्षण दें तो देखें अगर अपनी फसल में तो उसके लिए इंतजाम कर लें। और बारिश के अनुमान को देखते हुए किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो खड़ी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में किसी भी तरह का स्प्रे ना करें। दाल वाली जो फसलें हैं और सब्जियां हैं उनका उनमें नर्सरी में पानी की सही निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि वो मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। शेड नेट का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है जिससे कि कीटों से फैलने वाली बीमारियों को कम करने और स्वस्थ पौधे तैयार करने में मदद मिले। धूप से भी बचाने का आपको ध्यान रखना होगा।
0: जी, तो ये थी जानकारी मौसम की और मौसम के साथ कृषि उपायों की। इसी के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम दोनों को आज्ञा दीजिए। राम राम।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ज, DRM 810 किलो हर्ज पर। 7:30 हो चुके हैं। अब सुनिए गजल पर आधारित कार्यक्रम। गजलों के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बताएं, गजलों के बादशाह जगजीत सिंह, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। उनकी जो आवाज़ है, जो गाने की शैली है, उसमें हर कोई आज भी रमा हुआ है, वो चाहे कहीं भी हो। लेकिन आज भी पूरी दुनिया उन्हें याद करके उनके गज़लों को गुनगुनाते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में ये गज़ल।

जगजीत सिंह की आवाज़ हो तो फिर गज़ल अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, मोहब्बत अगर करते हो तो बताया ना करो, मोहब्बत जो करते हो बताया ना करो, छिपाते रहो मुस्कुराते रहो, घर बता दिया तो याद रखना जनाब, ये इश्क की दास्तां किसकी जुबां से क्या निकले, इश्क की कहानी क्या बन जाए किसे है पता। इश्क करने वाले हमेशा डर डर कर इश्क करते हैं, दुनिया से बचते और बचाते हैं, और इश्क वालों का डर वाकई में उन लोगों के दिलों से पूछिए जिनकी दास्तान दुनिया में जाहिर हो गई। फिलहाल जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गज़ल।

शाम-ए-गम तन्हा हम और क्या चाहिए जब आवाज़ जगजीत सिंह की हो और हाथ में वो चाय की कप जिसे याद करते हुए बैठकर हम गज़ल सुनते हैं और आवाज़ ने वो जादू कर दिया कि गज़ल के शाम को बेहतरीन बना दिया। गज़लों का ये सिलसिला हर रोज़ आप सुनते हैं 7:30 पर और अब वक्त ख़त्म हो चला है। गज़लों के इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार, अपना अपना ख्याल रखिएगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: पीएलआई है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं पीएलआई पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया। रोहिणी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को स्वच्छता बेड़े में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया और आईआईटी दिल्ली ने निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर 2 आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में यातायात जाम कम करने और निर्बाध यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: सरकार ने बताया है कि रैंप और इंटरचेंज को मिलाकर इस पूरे नेटवर्क की कुल लंबाई 80 किलोमीटर होगी। शुरुआती चरण में मेटकॉफ हाउस से डीएनडी फ्लाईवे तक लगभग 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। निर्बाध यातायात के लिए इस रूट पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर और यमुना नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। सरकार के अनुसार यह कॉरिडोर रिंग रोड पर प्रतिदिन चलने वाले 5 लाख से अधिक वाहनों के सफर को सुगम बनाएगा। सुचारू यातायात से वाहनों के रुकने का समय कम होगा जिससे यात्रा का समय घटेगा। यह दिल्ली के प्रमुख हिस्सों के बीच आवागमन और राजधानी की ओवरऑल कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: दिल्ली सरकार राजधानी में सड़क प्रबंधन व्यवस्था को

0: अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है। इस पहल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कों को एक विशिष्ट QR कोड से जोड़ा जाएगा। सरकार ने बताया कि इस QR कोड की मदद से नागरिक सड़क से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा सड़क के निर्माण, अंतिम मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से जुड़ी जानकारी भी आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार के अनुसार परियोजना के अंतर्गत करीब 2500 QR कोड 4 चरणों में लगाए जाएंगे, जिससे सड़क संबंधी शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी। दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। यह निर्णय दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अधिनियम 2011 के अंतर्गत लिया गया है। इस व्यवस्था में शामिल होने के बाद सरकारी अधिकारियों को इन सभी 23 सेवाओं के आवेदन का निपटारा एक निश्चित और सीमित समय के भीतर ही करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्ट्री योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र 60 दिनों में जारी किया जाएगा, साथ ही होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता बेड़े में शामिल किया। इस अवसर पर श्री वाही ने कहा कि इन वाहनों के शामिल होने से रोहिणी क्षेत्र के कूड़ा प्रबंधन का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता बेड़े में हाइवा ट्रक, JCB मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली, इम्पर इत्यादि वाहनों को शामिल किया गया है, जिनकी मदद से क्षेत्र में कूड़ा उठाने के कार्य में तेजी आएगी। महापौर प्रवेश वाही ने आज पश्चिमी क्षेत्र के मादीपुर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान का नेतृत्व भी किया। इस अवसर पर श्री वाही ने स्वच्छता कर्मियों के साथ मिलकर क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाया और नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही स्थायी रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान श्री वाही ने मादीपुर स्थित वीर सावरकर पार्क में कराए गए सौंदर्यकार और नवीनीकरण कार्यों का भी उद्घाटन किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने कचरा प्रबंधन और स्थिरता पहलों के अंतर्गत कॉपरनिकस मार्ग स्थित सांगली अपार्टमेंट को अनुपम कॉलोनी घोषित किया है। परिषद ने बताया कि यह सम्मान पर्यावरण के प्रतिकूल तौर तरीकों, वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन और टिकाऊ भविष्य के लिए समुदाय की मजबूत भागीदारी को देखते हुए किया गया है। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्र ने बताया कि इस कॉलोनी में कचरे को अलग अलग श्रेणियों में एकत्र करने के लिए 5 विशेष डिब्बे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू कचरे और अन्य अपशिष्ट के संग्रह के लिए 4 अतिरिक्त डिब्बों की भी व्यवस्था की गई है। श्री चंद्र ने इसके लिए कॉलोनी निवासियों को बधाई दी।
2: सर्वप्रथम आप सबों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये 8वीं कॉलोनी है जो कि अनुपम कॉलोनी घोषित हो रही है। हम जो रूल्स हैं उससे भी ज्यादा बढ़ के काम कर रहे हैं और ये इसीलिए संभव है कि रेजिडेंट्स का 150% सहयोग रहता है। तो मैं सबों की तरफ से, और ये प्रथम सर्विसेज कॉलोनी है जो कि जिन्होंने ये डिस्टिंक्शन अचीव किया है।
0: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार द्वारा असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में व्यापक स्तर पर पारिस्थितिक इको रेस्टोरेशन वृक्षारोपण

0: पौधारोपण कार्यक्रम और वन्य जीव संरक्षण संबंधी विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्री सिरसा ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य दिल्ली की पारिस्थितिकी क्षमता को मजबूत करना, क्षतिग्रस्त भूमि का पुनर्स्थापन करना और देशी जैव विविधता का संरक्षण करना है। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान देशी और रिज क्षेत्र के अनुकूल प्रजातियों पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक योजना, उपयुक्त प्रजातियों का चयन और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा रहा है। श्री सिरसा ने आगे बताया कि दक्षिणी रिज क्षेत्र में 10 लाख से अधिक देशी पौधों का रोपण दिल्ली के हरित आवरण को मजबूत करेगा। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अभयारण्य में 218 जल स्रोत विकसित किए गए हैं, ताकि ग्रीष्म ऋतु और जल संकट की परिस्थितियों में वन्यजीवों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि इन जल स्रोतों को वन्यजीवों के आवागमन मार्गों के समीप रणनीतिक रूप से विकसित किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दिल्ली भाजपा इस महीने की 26 तारीख को आपातकाल काला दिवस पर जन जागरण बैठक करेगी। यह जानकारी दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष भाजपा 25 जून को आपातकाल विरोधी जन जागरण बैठक का आयोजन करती है, लेकिन इस वर्ष यह बैठक 26 तारीख को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर जंतर मंतर में आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ऑडिट के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस फैसले से ऑडिट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में अदालत में इस मामले का बचाव किया था। श्री सूद ने बताया कि न्यायालय के इस फैसले के बाद सीएजी ऑडिट मामले की पूरी प्रशासनिक कमान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु के हाथों में आ गई है।
2: बिजली कंपनियों का इसके विरोध में हाईकोर्ट जाना, ये अपने आप में साबित करता है कि बिजली कंपनियां और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार मिली हुई। आज सीएजी ऑडिट से इस मिलीभगत का उजागर हो गया है और हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता के, ट्रांसपेरेंसी के सबसे ऊंचे मानकों को अपनाते हुए सुनिश्चित करेगी किसी भी दिल्ली वासी पर एडिशनल बिजली का बोझ न पड़े। ये अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाम थी।
0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने आज एक निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर दो आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की है। इनमें विनिर्माण से जुड़े अनुसंधान के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग लैब और जीव विज्ञान से जुड़े अनुसंधान के लिए बायो इनोवेशन लैब शामिल है। आईआईटी दिल्ली ने बताया कि इन सुविधाओं का उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्टार्टअप और रिसर्च के विकास को तेजी देना है। उन्होंने बताया कि ये सुविधाएं छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए मददगार होंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में मालवीय नगर और सैदुला जाब हादसों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को 10-10 लाख रुपए के अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दुख की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्कता और तत्परता के साथ उच्च मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आश्वासन दिया कि इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी परिचर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0111-23-31-481-0111-23-71-1-7। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। हैशटैग आस्क AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी की गृह पत्रिका समाचार भारती के 13वें संस्करण का लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा कि यह पत्रिका सूचनात्मक नहीं बल्कि रचनात्मक पत्रिका है। महानिदेशक ने कहा कि समाचार भारतीय रचना का मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में इससे और अच्छी पत्रिकाएं निकलेंगी। चीन में रिले चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक अपने नाम किए हैं। प्रतियोगिता में टीम ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियन रिले चैंपियनशिप जीतने पर देश की बेटियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन युवा चैंपियंस ने भारत को गर्व करने का एक और यादगार पल दिया है और नई पीढ़ी को सपने देखने की प्रेरणा दी है। उनका जबरदस्त प्रदर्शन नारी शक्ति और एक ऐसे युवा देश के बढ़ते आत्मविश्वास का जश्न है। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए की लागत वाली एलिवेटेड रिंग रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया। रोहिणी में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 35 वाहनों को स्वच्छता बेड़े में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ऑडिट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। और आईआईटी दिल्ली ने निजी बैंक संस्थान के साथ मिलकर 2 आधुनिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय हो चला है फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती, और चुनिंदा गीत कुछ आपके लिए। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म लावारिस से आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले मोहब्बत अगर कर लिए तो फिर चाहे लाख तूफान आए या फिर कहें कि लाख सितम कोई करे, ये मोहब्बत कम नहीं होती। गीत में भी कुछ इसी तरीके से कहा गया है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: सनम तेरी कसम, इस फिल्म से सुना आपने इस गीत को?
1: सर
0: आशा भोसले की। कहते हैं कि मोहब्बत में नाज नखरे खूब उठाया जाता है और नाज नखरे करने वाले को मनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी बिन बात के नाराजगी और कभी अपने आप में इतराने की मर्जी, यही देखने को मिलता है हर जगह। तो फिर गीतों में भी इसे सुनते हैं कि कौन सी नाराजगी और क्यों है नाराजगी और फिर इसे मनाया कैसे जा रहा है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म लगान से आपने उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में इस गीत को सुना। कई ऐसे गीत भी बने हैं जहाँ में जहाँ पर मोहब्बत, प्यार और साथ ही साथ कुछ हंसी ठिठोली भी हो रही है। गीतों में कई ऐसे गीत हुए हैं जो सारे सिचुएशन को, सारे समय को अपने अंदर समेटने के बाद फिर उसे बनाया गया। और फिर ये तो देखिए, इतना कुछ, इतने चीज़ों के समावेश के बाद भी वो गीत हिट है। क्यों हिट है? क्योंकि उसके बोल, उसके गायक, उसकी धुन, सभी ने कमाल ही कर दिया। और ऐसे गीत जो हम कभी कभार ही सुनते हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

0: की मॉडल उड़ाना लगता है।
1: लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
2: लव स्टोरी से आपने सुना इस गीत को आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में। गीतों का देखिए इतना खूबसूरत सा ये सफर, जिसमें गानों को इतना खूबसूरत बनाया गया, जिसमें एक चुलबुलापन, साथ में प्यार मोहब्बत और इतनी खूबसूरत धुन। इन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है जहाँ बहुत शांत और ध्यान से इस गीत को गाया गया और धुन इसमें जिसका चयन किया गया वो बहुत ही खूबसूरत है। जमाने का फर्क है लेकिन गीत को बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुनते हैं इस गीत को।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म परिणीता से। गीतों में एक गीत वो भी आया जहां अगर कोई महबूबा सज सवर कर चलती है और उसे कोई कह दे कि ये ऐसा करके तुम कहां जा रही हो तो गीत कैसे बनेंगे, क्योंकि यहां तो नाराजगी भी आ सकती है लेकिन इस गीत में मोहब्बत को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। गीतों के बोल भी खूबसूरत और थोड़े हटकर हैं। सुनते हैं इस गीत को।

जलबीन मछली नृत्यबीन बिजली, इसी फिल्म से सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को। कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, और जब मोहब्बत की बात आए तब खुद कैसे भरोसा कर ले, क्योंकि पूरे जीवन की बात है। और फिर इस गीत में बताया गया कि कैसे कोई उन पर भरोसा कर सकता है। गीतों के बोल भी खूबसूरत और गीत भी हिट हैं। सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म एमएस धोनी से आपने सुना इस गीत को पलक मुचल की आवाज में, और गीत मालिका फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें मेल करके हमें बता सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि वक्त जो है वो यही कह रहा है कि फिल्म संगीत अब यहीं पर थम जाए, और यही होने वाला है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मुझे पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति, आखिरी नगमा आपके लिए, इसी वादे के साथ कि अगली मुलाकात जल्दी ही होगी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए। मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है, दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह

0: को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज।

0: पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेज़ी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज़ जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असम्बली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नज़रियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबेन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमूई दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसितसक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और ज़रई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौक़ों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क़्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोज़गार पैदा करने पर ख़ास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज़ कई इकदामात का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपये के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर ख़जाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8 लाख करोड़ पैसे तजावुज कर गया है, इसमें माली नज्म व जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے

0: खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेज़ी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना UBT के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफ़ुज़ाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला।
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में, वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वह 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
1: के दो बार दिया जाता
0: है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
0: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और ख़ासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
1: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
0: डीबीटी के थ्रू ही
1: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
0: जी, हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
5: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
5: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
0: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए?

0: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं। और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए ये एक स्कीम है। तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब हम एम्प्लॉयज़ की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया
1: जी।
2: तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो वो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
3: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी,
3: कर दिया, कर दिया।
1: सवाल
3: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुणेंद्र जी,
2: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
4: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी,
4: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है, जैसे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज़ का।

0: जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी प्रणय जी।
2: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है। एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
3: जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
4: अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रीसेट कर सकते हैं। और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही। आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे आप, कई लोगों के शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
4: अभी
2: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरीमंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
5: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
5: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
4: नमस्ते
5: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
4: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
4: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना,

0: के लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
1: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉयी अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉयी को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉयी के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉयी हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
0: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
1: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
0: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
0: सैलरी का पूछा है।
3: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे है उनका, जिसका ग्रॉस सैलरी है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
0: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा EPFO हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये PMVBRY के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
0: जी, पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
1: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉयी तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉयी के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
0: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
1: विन विन है जी।
0: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्कार,
4: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
1: जी पूछा
0: जी मोहन जी,
4: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
0: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं,
1: एक जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं

0: तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में MSME क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोज़गार सृजित करते हैं, तो देश के जो MSME क्षेत्र को रोज़गार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को MSME क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें MSME के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली EPFO जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे MSMEs हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे MSMEs इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
2: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्ण इंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे EPFO से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो UAN जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक DBT इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना DBT के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही EPFO में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे जी,
3: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी EPFO के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम EPFO के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन UAN के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी EPFO के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
2: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 144-80-144-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-4-4-8-0 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि EPFO के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और EPFO के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और हमें

0: उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। 6 छात्र घायल हो गए और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इस सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह के टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले श्री स्टारमर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टारमर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 10:10 हो चुके हैं। आप सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे गज़ल। कलाकार हैं रश्मि अग्रवाल। सितार पर साथ दे रहे हैं अकील अहमद। सारंगी पर तनीश धौलपुरी। तबला पर शिवम भारद्वाज और हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।

366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। रात्रि के 10:30 होने को है और ये समय रहता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम राग रंजन का। आइए सुनते हैं सितीश माथुर की आवाज में राग विहाग में गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आपने क्षितिज माथुर का राग विहाग में गायन सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 11:59 और 20 सेकंड हुए हैं। ठीक 11 बजे प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार और इसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। और ठीक 11:10 का वक्त रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का, जिसमें लिए जाएंगे आपकी फरमाइश के कुछ गीत। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 11:59 और 45 सेकंड हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं इंद्रप्रस्थ चैनल से। मीडियम वेव 366.3

0: मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। रात्रि के 11 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
5: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
4: The Prime Minister said the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhausaheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including Baguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khurda Road Balangir, Nopada Gunapur, Lanjigarh Road to Junagarh, and Bobli Salur. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said, applications can be submitted online through the Hajj Committee of India portal and the Hajj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. India has recorded more than 5 lakh organ donation pledges, reflecting the growing awareness, compassion and collective commitment of citizens towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The Ministry of Health and Family Welfare said, this achievement underscores the increasing public recognition of organ donation as a profound act of humanity that offers hope and a second chance at life to patients awaiting transplantation. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 11:10 हो चुके हैं और इस समय रहता है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। नमस्कार स्वीकार करिए मेरा यानी चेतना का, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ गए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। अभी आपने ये सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और फिल्म मेरा कसूर क्या है। वाकई में कसूर क्या होता है, शब्दों का होता है या फिर भावनाओं का होता है। हम इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे लफ्ज़ों की। जी हाँ, लफ्ज़ तो बस जरिया है जज्बात का।

जी हाँ दोस्तों, संदेशों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और चलते हैं आपके संदेशों की तरफ। आपके कहीं ना कहीं ये गीत जो है वो कार्यक्रम में रहेंगे। संजय साहू पोटियाकलां से हमें सुन रहे हैं और इनके साथ सुजाता साहू और शशांक हैं। सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपने नमस्कार हम तक पहुँचा रहे हैं। और नवाब खां जी हाँ, ये वर्ली मुंबई से हमें संदेश अपना भेज रहे हैं और शायद मेरे कार्यक्रम में इनका पहला मैसेज है ये। इशरत जहां, मास्टर अजहर जहां, अजीम खां भी इनके साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह जी ने हमें अपना संदेश भेजा है साउथ एक्सटेंशन से और सुहानी गीतों की महफिल में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ रहिए, कार्यक्रम में इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और गीतों के साथ अपनी बात भी हम तक ज़रूर पहुंचाए। मोहम्मद कुमार जी, मोहम्मद कमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ आकाशवाणी पर चेतना साहिबा जी को नमस्कार आदाब और पहली पेशकश के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी गीत को पसंद करने के लिए। सुनील पाठक जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमें सुनते हैं। दिग्दर्शन गौर जी मेरठ से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपना संदेश भेज रहे हैं। आर कुमार जी भी पंजाब से अपना संदेश हम तक पहुँचा रहे हैं।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे लफ्जों की, शब्दों की। अगर वो टूट जाए, जी हाँ, तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। लफ्जों की बात करें तो लफ्ज़ जब दिल से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके अर्थों का मेला सा लग जाता है। शब्द जुड़े तो दिल से दिल का रिश्ता बन जाता है, और कहने को तो बस ये हवा में गूंजते हैं शब्द, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी के मकसद बदल जाते हैं शब्दों से। अगर आपसे पूछें तो आपके लिए लफ्ज़ क्या अहमियत रखते हैं, आप कुछ कहना चाहें तो हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास संदेशों का तो काफिला बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपने शब्द जो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के लिए, वो ज़रूर बताएं। कार्यक्रम से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया भी हम तक पहुँचा सकते हैं ip@radiodelhi.com पर। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, मैं हूँ आपके साथ चेतना।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्मबाजी से गीता दत्त की आवाज़ में, और इस गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी रश्मि पांड्या ने गुजरात से। उम्मीद करते हैं कि एक करके आपके सभी गीतों की रिक्वेस्ट हम कार्यक्रम ले रहे होंगे। जाकिर मुलानी जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। इनके साथ हैं सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और पूरा मुलानी परिवार, और ये हमें तालुका पंढरपुर से अपने मैसेज को भेज रहे हैं। सिद्धार्थ गोंडकने जी ने भी अपना सुप्रीम नमस्कार हम तक पहुंचाया है। दिदर्शन गौर रेडियो की आवाज़ से हमें बरसात की रात फिल्म से गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, और यह है मधुबनी बिहार से एके झा, शेख अल्लाह, दुर्गा प्रसाद सिंह जी और मोहम्मद आमिर जी कार्यक्रम से जुड़ गए। सुरेश खुराना जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नवाब खान जी ने भी मुंबई से हमें संदेश भेज रहे हैं लगातार। आशीष पाल वरदान जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, और ये हमें गाजियाबाद से सुन रहे हैं। अनिल कुमार गोवंकर जी ने भी अपना संदेश हमें भेजा है। राजेश वर्मा हमें गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से सुन रहे हैं। कमल, अनिल जैन और इन्हीं के साथ साथ ये कैथल हरियाणा से हैं। जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, और इन्होंने भी गीत की रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी बात हम तक पहुंचाई है। तो जनाब, इतने लंबे मेल के साथ ज़रूर करेंगे कोशिश पूरी पूरी पढ़ने की। हम बात कर रहे थे लफ्ज़ों की। जी हाँ, लफ्ज़ जो है ना बहुत खूबसूरत होते हैं, और लफ्ज़ जो है बोलने का माध्यम भी होते हैं। सतीश अनेजा जी ने लिखा है कि लफ्ज़ केवल भाषा ये बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं के वो मोती होते हैं जो दिल की गहराई को जुबान तक लाते हैं। अपने विवेक से जब हम लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो बादशाह बना देते हैं, नहीं तो लफ्ज़ फ़कीर भी बना दिया करते हैं। खुदा ने ज़ुबान दी है अच्छे लफ्ज़ों से दिल को जीत लेने के लिए। आज भी तुम्हारा और कल भी तुम्हारा। बिल्कुल सही सतीश जी, कि लफ्ज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं दिल में जगह बना लेते हैं, और कहें कि अगर कठोर लफ्ज़ हैं, शब्द अगर अच्छे नहीं हैं सुनने में, तो फिर वो दिल से जगह छीन भी लेते हैं। मोहम्मद कमर जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया। आदिल कमर गुन्नार से लिखते हैं कि क्या लिखूं अब, कुछ लिखा नहीं जाता, जिंदगी कठिन है, कुछ कहा नहीं जाता। बहुत खूब। देखिए, आपने भी लफ्ज़ों में अपनी बात थोड़े से लफ्ज़ों में भी हम तक पहुंचा दी, तो वाकई में कभी कभी लफ्ज़ जो है ना बयान हम नहीं कर पाते हैं सारे दिल की बात उनमें। रश्मि जी का हमारे पास राजकोट गुजरात से संदेश आए, लिखती हैं कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया आपका भी संदेश भेजने के लिए, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। बोधराज खोरवाल जी ने भी गीत की रिक्वेस्ट हमें उत्तम नगर दिल्ली से भेजी है। कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश हैं इनके साथ। आप सुनते रहिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मैं हूँ आपके साथ चेतना।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से आप जुड़े हुए हैं। मैं हूँ आज के कार्यक्रम में आपके साथ चेतना। लेते हैं संदेशों को आपके और खूबसूरत संदेशों को जो सिलसिला बन चुका है। राम बालक दास जी ने कोलकाता हुगली से हमें अपना संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। और लिखने के लफ्ज़ से कोई भी किसी का दिल जीत सकता है, लेकिन वर्तमान समय की भाग दौड़ में मीठे लफ्ज़ बोलने वालों की संख्या जो है ना बहुत कम होती जा रही है। इंद्र प्रेस चैनल के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ज़रूर साझा करें। बिल्कुल, हम आपके सामने और मतलब 24/7 चैनल है, तो आपको बहुत सारे जो ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम इस चैनल के माध्यम से सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लगातार हमें सुनना भी होगा। मुस्कान जो है वो हमें अपना संदेश भेज रहे हैं भाड़ा ब्राह्मण हरियाणा से। श्रोता बाल किशन शर्मा है, रोशनी जिगर, मुस्कान, आरती, पूजा है इनके साथ, शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। इनके साथ साथ अनिल मोहन जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुँचाया। लिखते हैं कि जिंदगी में लफ्ज़ को जो अर्थ है ना वो भावनाओं को आकार देना है। ये वो माध्यम होते हैं जिनसे रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते हैं, संवरते हैं। शब्द केवल बोली नहीं होते हैं, उसमें व्यक्ति के विचार होते हैं। बहुत खूबसूरत ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि शब्द जो है वो केवल आपके सिर्फ कहने के मात्र नहीं होते हैं, वो आपके विचार होते हैं, आपकी भावनाएँ होती हैं। जो भी आप सोचते हैं वो आपके शब्दों में बाहर आता है, तो बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। और लिखते हैं कि अनुभवों का गहरा आईना होते हैं शब्द। बहुत खूबसूरत ये अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक है पहाड़गंज मुल्तानी ढाड़ा से, खूबसूरत संदेश के साथ इन्होंने अपनी बात भेजी है। दशरथ सेन जी लिख रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, रात के हम सफ़र में लफ्ज़ों से ही इंसान का लहजा पता चलता है कि वह किस तरह का इंसान है। दशरथ सेन, सुरेश सेन, निमच राजू सेन, कुलदीप सेन, पुष्कर जी कुमावत, और ये हमें सुन रहे तहसील प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान मेवाड़ से। वाकई में शब्द जो है ना वो हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, हमारी शिक्षा क्या है, हम कौन से लोगों के साथ, किन लोगों के साथ उठते हैं। काफ़ी चीज़ें हमारे लफ्ज़ हम तक पहुंचाते हैं, तो इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सिद्धार्थ गोनकरे जी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हिमाकर शिंदे, प्रणय हैं इनके साथ में, अर्चना ताई, और ये हमें अमरावती से सुनते हैं। गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, तो हम ये चाहते हैं कि गीत की रिक्वेस्ट के साथ अपनी बात, अपने लफ्ज़ हम तक ज़रूर पहुँचाएँ ipradiodelhi@gmail.com पर। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ इतना।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। आप जुड़े हुए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से, मैं हूँ आपके साथ चेतना। और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:47 हो चुके हैं। देखिए ना, गीतों का ये सफ़र कितने जल्दी गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और जो घड़ी की सुइयां है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे इशारा दे रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी संदेशों को शामिल कर लीजिए, क्योंकि जाने का वक्त कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उषा मोहन जी कार्यक्रम सुन रहे हैं PTI संसद मार्ग से, अनिल मोहन इनके साथ में। लिखने के कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, शामिल सभी गीतों का चयन अत्यंत सराहनीय है और शुक्रिया, आपने कार्यक्रम को पसंद किया। दिलावर खान जी ने भी रघुवीर नगर दिल्ली से हमें अपना संदेश भेजा है। हसीना बानो एलिजा ने आप और इनके साथ हैं लड्डू। और सुदर्शन मुखी जी ने भी अपनी बात हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं, कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर कृपया इस गीत को सुनवाए, कोशिश पूरी रहेगी। गीत जो भी शामिल किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पसंद के ही हैं। अरुण कुमार पांडे जी ने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं कि गुड नाइट चेतना जी, फरमाइश है कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। मध्य प्रदेश से AK पांडे। तो अभी आप सोने मत जाइए जनाब, अभी कार्यक्रम है। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कार्यक्रम सुन के ज़रूर जाएंगे। किशन सपकाल जी ने भी अपना आदरणीय नमस्कार हम तक पहुंचाया है। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं। आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल, आप सभी का बेहद शुक्रिया। भारती नागनपुरे जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं या हमें संदेश भेजते हैं। दुर्गेश और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, कुसुम्बाई बाबू, दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से। और लिखते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत प्ले कर दीजिए। नासिर शेख जी ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुंचाया है। स्वर्ण सिंह जी भी लोहागढ़ से हमें सुन रहे हैं। प्रकाश वर्मा ने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है। तो आप सभी का शुक्रिया संदेश भेजने के लिए, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिक्रिया भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं, हमें इंतज़ार रहेगा।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम, तुम।
0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।

जी हाँ श्रोताओं, समय स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 11:55 हो चुके हैं और सुदर्शन मुखी जी भी शांतिनगर सोनीपत से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं और शुक्रिया आप सभी का संदेश भेजने के लिए, कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। और इसी वादे के साथ आपको इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ कि आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में फिल्म संगीत की। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें, अपना ख्याल रखिए, शुभरात्रि।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 11:59 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने

0: कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aligarh area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister

बहुत खूबसूरत तरीके से। जी हाँ, गीत संगीत और अपनी एक्टिंग के बल पर जीवन को बदलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका असर, जिनका छाप हमारे जीवन पर अक्सर देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करेंगे एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, गायक, संगीतकार और आप क्या कह सकते हैं, फिल्मी दुनिया के लिए इतना ही काफी है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज किशोर कुमार के बारे में।

1948 में ये फिल्म आई थी जिद्दी, जिसका गीत अभी आपने सुना। जी हाँ, ये देवानंद की फिल्म थी। और लेकिन अगर बात की जाए तो 1940 के दशक में इन्हें काम मिला, वो भी बॉलीवुड संगीतकार हेमचंद प्रकाश ने उन्हें पहला मौका दिया था। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत जब उन्होंने की, तब 1948 में ही आई फिल्म जिद्दी, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ काम किया। ये युगल गीत इन दोनों की पहली और यादगार युगल गीत बन गई। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए लता मंगेशकर कहती हैं कि 1964 में फिल्मफेयर को बताया, मैं उनसे 1947 के अंत में खेमचंद प्रकाश की फिल्म जिद्दी की रिकॉर्डिंग के दौरान मिली थी। वो एक नौसिखिया थे और मैं उससे भी बहुत आगे नहीं थी। हम एक ही थर्ड क्लास डिब्बे में एक साथ यात्रा करते थे और किशोर कुमार लगातार मस्खरेपन और नकल करते रहते थे और लोगों को हंसाते रहते थे, क्योंकि उनकी जिंदादिली बहुत काम की थी। कोई कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन उनकी जिंदादिली ने हम सबको जगाए रखा और हम अच्छा काम कर पाए और नाम हमने कमाया। उनके बारे में और भी बहुत बातें हैं और कई लोग बहुत कुछ कहते हैं, सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं उन्हीं के आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 और आज हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार के बारे में। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। आपको बताते हुए ये लगेगा कि भाई किशोर दा को कोई कैसे कुछ ऐसा कह सकता है, लेकिन बात जो है ये बाकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आशा भोसले ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हैं तो याद आती है एक मज़ेदार घटना। आप भी सुनिए। अपने करियर की शुरुआत में किशोर कुमार और मैं एक युगल गीत की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और साउंड रिकॉर्डिस्ट ने हम दोनों को ये कहकर मना कर दिया कि हमारी आवाज़ें अच्छी नहीं हैं। किशोर कुमार बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने तपाक से जवाब दिया। मजाक में ही सही, लेकिन जवाब सही था। हम सिनेमा में जगह नहीं बना पाए तो गली मोहल्लों में गाना गाने लगे, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। इसे साउंड रिकॉर्डिस्ट हसन नाराज़ हुए

फिर हमने किशोरदा को समझाया, उन्हें सांत्वना दी और हमने एक नए जोश के साथ काम किया, अपने पेशे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसके बाद तो आप जानते हैं क्या हुआ, सब इतिहास है। और यही इतिहास इसी के पन्ने में सब कुछ लिखा है और हम जानते भी हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

किशोर कुमार का चुलबुलापन जो उनके आम जिंदगी में था वो फिल्मों में भी दिखता है, वो झलक हम सब जानते हैं। एक बार प्रसारक अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि किशोर कुमार को अपने जीवन का एक अनूठा अध्याय मानते हैं। अपने पुराने संबंधों को स्नेहपूर्ण याद करते हुए उन्होंने कहा, मेरे एक कॉलेज की दोस्त ने मुझे किशोरदा से मिलवाया था, वो उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा थी और उन दिनों 1950 के दशक की शुरुआत में जब मैं गायक बनना चाहता था तब किशोरदा और मैं दोस्त बन गए। हम सब में एक साथ घूमने जाने लगे। वो हमें अपने खस्ता हाल चलती का नाम गाड़ी में घुमाते थे। मैं उनसे अपना पसंदीदा गाना जगमग जगमग करता निकला गाने के लिए कहा तो उन्होंने मजाक किया और कहा, बिना पैसे दिए किशोर से गाना सुनना चाहते हो? और सभी हंसने लग गए। लेकिन वक्त ही कुछ ऐसा था, वो समय ही कुछ ऐसा था, मैं और किशोरदा साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। वाकई में समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन किशोरदा ने अपनी बात कही और फिर अपने गाने गुनगुनाने लग गए जो हम सब ने सुने, और इतनी खूबसूरत आवाज़ जिसे लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएगा, और हुआ ऐसा ही।

जगमग जगमग करता निकला, चाँद पूनम का प्यारा, जगमग जगमग।

0: जनु दिया जलाए, अंग में आग लगाए। ये बसंत की रात में दुल दो जैसे कोई अंगारा। मेरी चांदनी बिखर गई, मेरे घर में हुआ अंधियारा। जगमग जगमग करता निकला चाँद को नमुता प्यारा।
1: हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार के बारे में, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि उनकी असली सफलता 1969 के ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना से मिली थी। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में कामो गीत रूप तेरा मस्ताना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। उसके तुरंत बाद ही उन्होंने पार्श्व गायक अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनके 27 गाने फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इकट्ठे आपके इतने गानों को साल दर साल लेते चले गए, और उसमें भी 27 गाने, उसमें से उन्हें 8 पुरस्कार मिले। किशोर जी, राजेश खन्ना की जोड़ी ने बॉलीवुड संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिसमें प्यार दीवाना होता है, कटी पतंग जो 1972 में आई थी, ओ मेरे दिल के चैन फिल्म मेरे जीवन साथी से ये गीत था, 1972 में ही आई थी ये फिल्म। जय जय शिव शंकर फिल्म आपकी कसम 1974 में जो आई थी। ऐसे ऐसे अनमोल गीत दिए किशोर दा ने। किशोर जी ने 70 और 80 के दशक के लगभग सभी लोकप्रिय अभिनेताओं की आवाज बन गए थे। सभी उनके स्वर को चाहते थे, और अपने गीतों में चाहते तो थे ही, बल्कि अपने आवाज में उनकी आवाज मिलाना चाहते थे। उनमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, सुनील दत्त, विनोद खन्ना बहुत प्रमुख थे। किशोर दा ने इनके लिए अत्यधिक गाने गाए, उनमें से एक गाना ये भी है।

संगीतकार एस डी बर्मन के साथ भी उनका जुड़ाव बहुत बन गया था। एस डी बर्मन ने उन्हें सैगल की नकल करने से मना किया और अपनी गायन शैली विकसित करने की सलाह दी थी। बर्मन जी ने जब किशोर को कहा कि तुम इस फिल्म यानी कि पेइंग गेस्ट के लिए गाना गाओ, तब उन्होंने उस गीत को गाया। जी हाँ, वो गाना जो बहुत ही हिट हुआ, 1957 में आई थी ये फिल्म पेइंग गेस्ट, माना जनाब ने पुकारा नहीं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है ये। फिर उसके बाद उन्होंने हम है राहे प्यार के 9-2-11 की ये फिल्म आई थी 1957 में ही, और हाल कैसा है जनाब का, चलती का नाम गाड़ी 1958 में आई थी, ऐसे सदाबहार रोमांटिक गीत। बाद में किशोर जी ने आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी, रवि और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर अविस्मरणीय धुनें बनाई। वाकई में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना चले जाए, हर एक क्षेत्र में अपने जीवन को निखारा और हम सबको सुकून दिया, क्योंकि इनके गाए हुए गीत, धुन, फिल्म सब के साथ हम लोगों ने अपने जीवन का एक अनमोल पल बिताया है। वाकई में उनका ये गीत आइए सुनते हैं फिल्म पेंगे से।

किशोर कुमार के निर्देशन में बनी फिल्में उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। चलती का नाम गाड़ी, दूर का राही, कई सारी फिल्में थी। उन्होंने नूतन, वैजयंतीमाला, मधुबाला जैसे अभिनेत्रियों के साथ अत्यधिक काम किया। हास्य के लिए जाने जाते थे और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। उनकी कॉमेडी कुछ अलग ही तरीके की होती थी और सभी इन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि अपनी चीज़ों को बहुत हल्के से, आराम से कह जाते थे और सब लोग सुनते भी थे। अलग सा इमेज, अलग सी बात। किशोरदा के अंदर हर चीज़ का हुनर था। उनके निर्देशन में बनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी, आइए सुनते हैं उसका ये गीत।

किशोरदा के प्रशंसकों के बीच में एक कहानी बहुत ही लोकप्रिय है। 80 के दशक के शुरुआत में अमेरिका में एक वीडियो की दुकान पर जब गए, वहाँ से लगातार कैसेट खरीदते रहे। दरअसल वे रुकने ही वाले नहीं थे, यहाँ तक कि वे और कैसेट लेने के लिए गोदाम भी गए। खरीदारी के अंत में पता चला कि किशोरदा ने $8,000 मूल्य की VCD खरीदी है। तब तक दुकान का मालिक उन्हें पहचान चुका था। एक दिलचस्प संयोग से जब किशोरदा दुकान से निकलने वाले थे, तभी मशहूर संगीतकार और फिल्मी हस्ती एडी मर्फी दुकान के पास आए। दुकान के मालिक ने किशोर कुमार का परिचय उनसे भारत का फ्रैंक सिनात्रा के रूप में कराया और सभी मुस्कुराने लग गए। किशोर कुमार ने अपने दोस्तों को भी कभी निराश नहीं किया। जब उन्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ी, तब किशोरदा उनके साथ थे। ऐसा कहा जाता है कि किशोर ने सत्यजीत रे को ₹5,000 उधार दिए थे जब वे पाथार पंचाली, जो 1955 में आई थी, बनाने के समय आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। किशोर कुमार अपने डॉक्यूमेंट्री जिंदगी एक सफर में ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता ने बताया कि किशोर कुमार ने चारुलता में टैगोर का गीत गाने और 20 साल बाद घरे बायरे 1984 में दो अन्य गीत गाने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया था। काफ़ी लोगों की मदद करते थे, पैसे नहीं लेते थे या जहां देने हो वहां देते थे। व्यक्ति चाहे कितने भी किसी भी मुकाम पे क्यों ना पहुंचे, दोस्तों का साथ अपनों का साथ निभाता है। उनमें से एक किशोरदा भी थे।

किशोर कुमार के बारे में बात हो रही है तो ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि किशोर कुमार को अपने जीवन में आर्थिक और अन्य कई झटकों का सामना करना पड़ा था। अमित उनके भाई बताते हैं कि अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म दूर गगन की छाव की शूटिंग के दौरान के उतार चढ़ाव उस समय के बारे में जो 1960 से 1964 तक ये उतार चढ़ाव चलता रहा। इस फिल्म में उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म आचल की तुझे मैं लेके चलूं गाने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने करीबियों और प्रियजनों से बहुत सारी आलोचनाएं सहनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद इसे पूरा किया। फिल्म बनाने से पहले उन्होंने रेकी पथेर पांचाली कम से कम 13 बार देखी। ये फिल्म हॉलीवुड द प्राउड रेबल से प्रेरित थी। किशोर कुमार का निजी जीवन भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। किशोर कुमार को जब अक्टूबर 1987 में अपने पिता को आखिरी बार देखने की याद आती है, जब वे अमेरिका में एक कॉन्सर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तो उनके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। किशोर कुमार की तबीयत ठीक नहीं थी, वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनके भाई अमित को याद है उस रात उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुछ दिनों बाद 13 अक्टूबर को किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। केवल 58 वर्ष के थे। देश भर में उनके प्रशंसक आज भी उन्हें उतना ही प्यार देते हैं, उनके गीत सुनना चाहते हैं, उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। ऐसी प्रसिद्धि कम ही लोगों को नसीब होता है। किशोरदा के बारे में यही कहेंगे, आज भी लोगों के दिलों में वैसे ही उनके गीत तरोताज़ा हैं। फिलहाल सुरों का सफरनामा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक आखिरी नगमा किशोरदा की आवाज़ में आपके लिए, मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हाँ
1: क्या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है
1: कह

0: AIR लाइव न्यूज 24x7 से आप जुड़े हैं। एक बजने को है, अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है।

0: शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. People, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, Uttar Pradesh government has ordered a high-level inquiry into the incident. After

तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म बाबुल से। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

दिले नादान तुझे हुआ क्या है। फिल्म मिर्ज़ा गालिब से आपने सुना इस गीत को सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ में। और अगर बात करें पुराने गोल्डन एरा की फिल्म संगीत की, कुछ गीत ऐसे हैं जो हम सब अभी भी गुनगुना रहे हैं। और अभी आपने जिन भी गीतों को सुना वो वाकई बहुत ही खूबसूरत थे। इन्हीं खूबसूरती में एक और गीत ने चार चांद लगा दी, वो ये है।

शमशाद बेगम की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को फिल्म आर पार से। फिल्मों में गीतों में एक अलग सी कशिश है क्योंकि ये है गोल्डन एरा के फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे पूजा भारती के साथ।

गीतों में हर एक बात को बता दिया गया। और ये देखिए ना, गीतों का जब सफ़र ये शुरू होता है, तब हर एक गीत अलग है। हर एक गीत का जो उसकी कहानी है वो अलग है। उसके बोल, उसकी म्यूज़िक, धुन, सब कुछ अलग है। और सारे के सारे गाने कर्णप्रिय हैं। अभी आपने जिस गीत को सुना वो लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में सुना, अजीब लड़की से। सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे, गोल्डन एरा की फिल्म संगीत, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। आई श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत।

गीतों का सिलसिला चलता जा रहा है और वक्त भी बढ़ता जा रहा है। अभी आपने जिस गीत को सुना वो छैया फिल्म से था, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। आइए अगला गीत सुनते हैं, कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा के फिल्म संगीत।

0: जाए।
1: सुरैया के स्वर में आपने सुना इस गीत को फिल्म दिल लगे से। आयुष होता हूँ, जब पुराने गीत छिड़ ही गए हैं तो कुछ वो भी गीत सुने जो तैयब मोहम्मद और सुरैया ने साथ में गुनगुनाए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

मन धीरे धीरे गाए रे। आपने सुना इस गीत को सुरैया और तलत महमूद की आवाज़ में। सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत सुनहरे में अगला गीत।

आपने सुना लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में इस गीत को सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गोल्डन एरा गीत गीत सुनहरे पूजा भारती के साथ। आइए श्रोताओं सुनते हैं अगला गीत, पुराने लेकिन तरोताजा।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बरसात से आपने सुना इस गीत को। गीतों का ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि गोल्डन इरा के गीत है जिसमें शब्द का चयन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है, जिसके धुन बिल्कुल आराम से बनाए गए हैं और जिन्होंने अपने स्वर दिए उसकी खूबसूरती एक अलग ही है। आइए गोल्डन एरा फिल्म संगीत का अगला सुनहरा गीत कौन सा है सुनते हैं।

मदर इंडिया से आपने सुना इस गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुनहरे गीत गोल्डन एरा के गीत संगीत आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत संगीत का ये सफ़र जहां धुन स्वर और बोल तीनों का संगम लाजवाब हो तो फिर गीत क्यों ना खूबसूरत लगे। तो गोल्डन एरा के गीत के यही तो कमाल है। अगला गीत आपके लिए इसी एरा के

मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को। लाजवाब थे ना ये गीत। ऐसे ही तो कितने सारे गीत हैं उस जमाने के। आप किसी भी गीत को सुन लीजिए, सारे के सारे लाजवाब, क्योंकि तभी तो उन्हें गोल्डन एरा कहा गया था, क्योंकि वहाँ गीतों का जो सफ़र शुरू हुआ वैसा सफ़र न कभी आया और ना ही कभी आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग भी तो बहुत गोल्डन थे, जिन्होंने खूबसूरत धुन बनाए, खूबसूरत स्वर दिए और बोल अति खूबसूरत। उसी जमाने के इस गीत को आइए सुनते हैं।

फिल्म ताजमहल से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को। पाँव छू लेने दो फूलों की इनायत होगी। क्या वर्ड है, क्या शब्द हैं, शब्दों का चयन कितना सोच समझ कर किया गया है। एक एक शब्द, शर्म हमसे जो करोगी तो मुसीबत होगी। इतने खूबसूरत शब्द, सारी अदा, सारे वक्त का तकाजा, सब कुछ बयां करते हैं ये गीत। धुन ऐसे जो कानों को सहला कर चले जाए। इसके गीतों के खूबसूरती का क्या कहना। गोल्डन एरा के गीत तो सुन रहे हैं आप गीत सुनहरे में, मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

गोल्डन एरा के गीत आप सुन रहे थे मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। जी हाँ, वक्त ख़त्म हो चला है, आखिरी नगमा आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है। अब हिंदी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। SIT को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना

0: सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्रुप जे के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा जो भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। People, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, CM Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting the report within 7 days. On the other hand, taking swift action

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 2:10 हो चुके हैं। सुनिए कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

0: अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप गीत संगीत। 3 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। SIT को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है।

0: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. CM Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary, Home, will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. On the other hand, taking swift action after the tragic fire incident, the police have registered the case against 6 people and arrested 4 of them yesterday night. 4 officials of Lucknow Development Authority, Fire Department and Electricity Department have also been suspended after directions of Chief Minister Yogi Adityanath. PM Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized that the nation first spirit has guided India.

0: श्रोताओं, AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर गीत और गजल का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हो चला है 4:20 और 15 सेकेंड। ये वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए SR जानकी रमन की प्रस्तुति।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने एस आर जानकी रमन की प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में जानेंगे। 5:20 का वक्त होगा देशभक्ति गीतों का।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार और 6:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का।

0: 6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, वहीं 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, और इसमें आज आप सुन पाएंगे भगवान महावीर के उपदेश। रामचरितमानस का वक्त होगा 6:45 का। छह पचपन पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का, जबकि 7:05 का वक्त होगा अंग्रेजी में समाचार का। 6:10, जी हाँ, इससे कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं 7:10 पर। और अब आपको बता दें सुबह के 5:00 को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी विद्यार्थी द्वारा

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इम्पैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने भद्रासन और अश्वथासन के बारे में जाना, किससे क्या क्या लाभ हैं और किन किन लोगों को इनसे फायदा मिल सकता है। हमने जाना कि इसके अंतर्गत जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, जिनका देर तक बैठने का काम हो, या इसके अलावा महिलाएं जो किचन में काफी लंबे वक्त

योग कितना लाभप्रद है हमारे लिए ये हम जानते हैं, और एक दो दिन पहले ही योग दिवस भी मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और ये हमारे जीवन का अगर हम इसको अहम हिस्सा बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी भी साबित हो सकता है, इसलिए हमें योग अवश्य करना चाहिए। बहरहाल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है 5:19:40 और ये वक्त है देशभक्ति गीत का, तो आइए आनंद लेते हैं देशभक्ति गीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए वरुण कुमार पाल द्वारा बजाए गिटार पर राग नट भैरव।